0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
3: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे आशिता, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार, शुक्रवार 19 जून के इस प्रातकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले हम स्थानीय स्तर के बारे में बात करते हैं। आज संसद में बजट 2026 पेश किया जाएगा, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। बढ़ती महंगाई और आर्थिक चुनौतियों के बीच सरकार से जनता को बड़े फैसलों की उम्मीद है। बजट 2026-2027 का सीधा प्रसारण आज शाम 5 बजे से एमबीसी चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। बजट भाषण के बाद विशेष कार्यक्रमों में विशेषज्ञ और हितधारक का महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। महंगाई, आवास, रोजगार और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों को लेकर जनता की उम्मीदें काफी बढ़ी हुई हैं। बजट से लोगों को अपने दैनिक जीवन में सुधार और आर्थिक मजबूती की ठोस उम्मीद है। और वहीं पर पुलिस बल से जुड़े मुद्दों पर पुलिस फाइटर्स यूनियन ने वेतन, पेमेंट और प्रमोशन से जुड़ी घोषणाओं की उम्मीद जताई है। साथ ही यूनियन ने पूर्व बजट परामर्श में शामिल न किए जाने पर असंतोष भी व्यक्त किया है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों पर आर्थिक क्षेत्र की नजर टिकी हुई है। वहीं एनजीओ और सामाजिक संगठनों को उम्मीद है कि बजट में जमीनी हकीकत से जुड़े ठोस सामाजिक फैसले किए जाएंगे। मॉरिशस फाइनेंस ने सरकार से वैश्विक आर्थिक बदलावों के बीच महत्वाकांक्षी कदम उठाने की अपील की है। संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करने के लिए 3 प्रमुख प्राथमिकताएं भी सुझाई हैं। मॉरिशस में उपभोक्ता संरक्षण के नए नियम 1 जुलाई से लागू होंगे, जिनमें कीमतों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने सब्सिडी और अधिकतम मूल्य को दर्शाने के लिए नई लेबलिंग प्रणाली भी अनिवार्य की है। और लाग्रिमे सैंपिया में के इलाके में कल गुरुवार तड़के आतसू द्वारा चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान कथित तौर पर गांजे की खेती का पता चला है। सुबह लगभग 6:30 बजे की गई इस कार्रवाई में 2 कमरों में उगाए जा रहे संदिग्ध पौधे बरामद किए गए। मौके से पुलिस ने 36 ऐसे पौधे जब्त किए हैं जिनके गांजा होने का संदेह है। इनकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर से लेकर 2 मीटर 10 सेंटीमीटर तक बताई गई है। पौधों को मिट्टी और खाद से भरे प्लास्टिक के कंटेनरों तथा थैलों में उगाया जा रहा था। आपको बता देते हैं कि बरामद संदिग्ध मादक पदार्थों का कुल अनुमानित मूल्य 32,41,635 रुपये आंका गया है। लाग्रिमे सैंपिया के मॉकेट लेन के निवासी 40 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया। मामले की जांच जारी है। और साथ में आपको हम बता देते हैं कुछ मैचों के बारे में। विश्व फुटबॉल कप 2026 के कुछ मैच जो खेले गए उनके स्कोर इस प्रकार हैं। कनाडा के साथ का आमना सामना हुआ कतर के साथ और स्कोर रहा कनाडा 6 और कतर जो है वो 0। और साथ में कल के खेले गए मैचों के स्कोर इस प्रकार हैं। चेक रिपब्लिक 1, साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका 1 और उज्बेकिस्तान का आमना सामना हुआ कोलंबिया के साथ और कोलंबियन खिलाड़ियों ने स्कोर दागे 3, उज्बेकिस्तान 1। गाना ने खेला पानामा के साथ, गाना 1 और पानामा 0। और एक बहुत ही दिलचस्प मैच रहा इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच। इंग्लैंड वर्सेस क्रोएशिया के जो स्कोर है वो है 4-2, इंग्लैंड 4 क्रोएशिया 2। और हमारे अगले बुलेटिनों में हम अगले मैचों के बारे में इसको लेकर आएंगे। फिलहाल एक मैच अभी जारी है। और साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बारे में बात करते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को के आसपास बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले के बाद तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचने की खबर है। इस घटना में धुआं और काले तेल की बारिश जैसी स्थिति बनी।

0: जबकि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और बढ़ गया है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला, बढ़ते हैं हम मौसम के हाल की ओर। मौसम का हाल, आम हालत हमारे इलाके पर हल्की हवा का बहाव है, अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है। सुबह के समय दक्षिण और ऊंचाइयों पर रहकर बारिश होगी तथा बाद में मौसम सुहाना हो जाएगा। दोपहर बाद उत्तर उत्तर पश्चिम में कुछ बादल विकसित होंगे और थोड़ी देर के लिए बारिश होगी। अन्य इलाकों में धूप खिली रहेगी। रात के दौरान आसमान साफ रहेगा। हवा सुबह के समय हल्की बहेगी तथा दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पास सामान्य रहेगा तथा दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर के ज्वार उठेंगे। तापमान अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लाटो 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सामान्य से कम यानी सेंट्रल प्लाटो पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:44 पर और सूर्यास्त शाम 5:38 पर। तो इसके साथ ये पहला फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। हमारी रॉब की मुलाकात पुनः होगी ठीक 6:30।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस। 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस।
3: प्रणाम श्रोताओं, सुप्रभात। घड़ी मिलाते चलिए, इस समय 6:06 हो चुके हैं। इस शुक्रवार 19 जून 2024 को साथ निभा रही है पूजा। श्रोताओं, कहा जाता है कि कल से सीखना चाहिए, आज के लिए जिएं और कल के लिए उम्मीद करें, क्योंकि आज में जो हैं वही सच हैं, कल जो होगा वो उम्मीद होगी। तो चलिए इसी सुविचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं सुधा वृष्टि से। आइए इसे श्रवण करते हैं हिंदू महासभा की ओर से।
4: हिंदू महासभा द्वारा आइए सुनिए सुधा वृष्टि।

वंशनाथम कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं आरुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्रीरामदूताय नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। हिंदू महासभा की ओर से आज फ्राइडे 19 जून 2026 के सुधा वृष्टि कार्यक्रम में मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे दो अत्यंत पावन एवं आध्यात्मिक महत्व वाले पर्वों की, जो आगामी गुरुवार 25 जून को थर्सडे 25 जून 2026 को एक साथ मनाए जाएंगे। उस दिन गायत्री जयंती का शुभ अवसर है तथा उसी दिन निर्जला एकादशी व्रत का पावन व्रत रखा जाएगा। सनातन धर्म में ये दोनों पर्व साधना, आत्मशुद्धि, तप, संयम और ईश्वर भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। गायत्री जयंती हमें ज्ञान, सद्बुद्धि और आध्यात्मिक जागरण का संदेश देती है, जबकि निर्जला एकादशी

भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने तथा समस्त एकादशियों के पुण्य फल को प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर मानी जाती है। श्रोताओं, हमारे सनातन धर्म के सभी पर्व और त्योहार अपने अपने विशेष उद्देश्य और महत्व रखते हैं। कुछ पर्व हम अपनी सांस्कृतिक उन्नति एवं सुख समृद्धि के लिए मनाते हैं, कुछ आध्यात्मिक प्रगति के लिए, कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण हेतु, तथा कुछ पर्व हम परमात्मा, प्रकृति और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता एवं आभार व्यक्त करने के लिए मनाते हैं। गायत्री जयंती जैसे पावन पर्व विशेष रूप से हमारे आध्यात्मिक जीवन को सुदृढ़ करने वाले हैं। इसका प्रभाव केवल इस लोक तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि परलोक तक हमारा कल्याण करने वाला माना गया है। गायत्री माता को ज्ञान, सद्बुद्धि और आध्यात्मिक प्रकाश की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। गायत्री मंत्र हमारी बुद्धि और अंतःकरण को निर्मल बनाता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने गायत्री उपासना को मानव जीवन के सर्वोच्च साधनों में स्थान दिया है। श्रोताओं, यद्यपि अधिकांश स्थानों पर गायत्री जयंती ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन मनाई जाती है, तथापि भारत के कुछ क्षेत्रों में इसे श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर भी मनाने की परंपरा प्रचलित है। गायत्री माता को समस्त वेदों की जननी कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि चारों वेदों का सार गायत्री मंत्र में निहित है। यदि कोई साधक गायत्री मंत्र के वास्तविक अर्थ, भाव और महत्व को समझ लें, तो वह मानो वेदों के मूल संदेश को भी समझ लेता है। इसी कारण गायत्री माता को वेद माता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान ब्रह्मा जी, भगवान श्री हरि विष्णु तथा भगवान शिव भी गायत्री की महिमा का गुणगान करते हैं। इसलिए गायत्री माता को देव माता भी कहा जाता है। वे केवल एक देवी ही नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक और आध्यात्मिक प्रकाश की शक्ति है। समस्त ज्ञान का स्रोत होने के कारण उन्हें ज्ञान गंगा भी कहा जाता है। जिस प्रकार गंगा शरीर और मन को पवित्र करती है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र मनुष्य की बुद्धि को शुद्ध कर उसे सत्य और धर्म के मार्ग पर अग्रसर करता है। श्रोताओं, परंपरागत रूप से गुरु दीक्षा के समय गुरु अपने शिष्य को गुरुमुख से जो दिव्य मंत्र प्रदान करते हैं, वह गायत्री मंत्र ही होता है। यद्यपि आज लगभग सभी लोगों को गायत्री मंत्र ज्ञात है, तथापि शास्त्र के अनुसार इस मंत्र का विधिवत जप गुरु दीक्षा प्राप्त करने के बाद ही करना चाहिए। गुरु के मुख से प्राप्त मंत्र साधक के जीवन में विशेष आध्यात्मिक शक्ति और संस्कार का संचार करता है। गायत्री जयंती के दिन माँ गायत्री की विशेष पूजा अर्चना करें, गायत्री मंत्र का जाप करें तथा यथाशक्ति गायत्री यज्ञ का आयोजन करें। जिन्होंने अभी तक गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं की है, उनके लिए यह अत्यंत शुभ अवसर है कि वे किसी योग्य गुरु को स्वीकार कर उनसे गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त करने का निवेदन करें। गायत्री जयंती के दिन आपको गुरु दीक्षा प्राप्त हो जाए तो यह आपके जीवन का महान सौभाग्य माना जाएगा। मैं विशेष रूप से सभी माता पिता से निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपने बच्च,

क्योंकि केवल शिक्षा की ही नहीं बल्कि उनकी दीक्षा की भी व्यवस्था करें। शिक्षा मनुष्य जीवन को जीविका प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है, जबकि दीक्षा उसे जीवन का उद्देश्य और सही दिशा प्रदान करती है। जिस बालक को समय पर शिक्षा और दीक्षा दोनों प्राप्त हो जाती है, वह जीवन में भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति अवश्य करता है। श्रोताओं, उसी दिन यानी गुरुवार 25 जून को, थर्सडे 25 जून को, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है। अन्य महीनों की एकादशी को फलाहार किया जा सकता है, परंतु इस एकादशी को फल तो क्या, जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। यह एकादशी बड़े कष्ट और तपस्या से की जाती है, अतः अन्य एकादशियों से इसका महत्व सर्वोपरि है। इस एकादशी के कारण से आयु और आरोग्य की वृद्धि तथा उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। महाभारत के अनुसार अधिक मास सहित एक वर्ष की 24 एकादशियों ना की जा सके तो केवल निर्जला एकादशी ही व्रत कर लेने से पूरा फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी व्रत करने वाले को आचमन के सिवा बिंदु मात्र भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि किसी प्रकार जल उपयोग में लिया जाए तो व्रत भंग हो जाते हैं। निर्जला एकादशी को संपूर्ण दिन व रात निर्जल व्रत रहकर द्वादशी को प्रातः स्नान करना चाहिए तथा श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशाधारण भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन में वेगशाली भगवान विष्णु के दूत आकर ऐसे वैष्णव पुरुष को भगवान श्री हरि विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यंत करके उपवास करना चाहिए। पांडवों में भीमसेन शारीरिक शक्ति में से बढ़कर थे। उनके उदर में वृक नाम की अग्नि थी, इसीलिए उन्हें विक्रोधर भी कहा जाता था। वे जन्मजात शक्तिशाली तो थे ही, नाग लोक में जाकर वहां से 10 कुंडों का रस पी लेने से उनमें 10,000 हाथियों के समान शक्ति हो गई थी। इस रसपान के प्रभाव से उनकी भोजन पचाने की क्षमता और भूख भी बढ़ गई थी। सभी पांडव तथा द्रौपदी जी एकादशी का व्रत कर लेते थे, परंतु भीमसेन के लिए एकादशी व्रत दुष्कर थे। अतः व्यास जी ने उनसे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत निर्जल रहते हुए करने को कहा था और बताया कि इसके प्रभाव से तुम्हें वर्ष भर की एकादशियों के बराबर फल प्राप्त होगा। व्यास जी के आदेश अनुसार भीमसेन ने इस एकादशी का व्रत किया, इसलिए यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। निर्जला एकादशी का जो पूजा विधि है अत्यंत सरल एवं फलदायी है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा करें। श्रद्धापूर्वक निर्जला एकादशी व्रत कथा या तो पढ़ें या फिर उसका श्रवण करें। इसके पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती करें तथा दिन भर यथाशक्ति नाम जप, भजन और भगवान के स्मरण में व्यतीत करें। द्वादशी तिथि में विधिपूर्वक अपने व्रत का पारण करें। स्मरण रहे कि निर्जला एकादशी में परंपरा अनुसार अन्न एवं जल दोनों का त्याग किया जाता है, परंतु जिन भक्तों के लिए पूर्ण निर्जल व्रत करना संभव ना हो वे अपनी आयु, स्वास्थ्य एवं सामर्थ्य के अनुसार व्रत का पालन करें।
भगवान भाव के

0: भूखे हैं और श्रद्धा से किया गया व्रत सर्वाधिक फलदायी माना जाता है। हिंदू महासभा की ओर से तथा अपनी ओर से भी आप सभी को गायत्री जयंती एवं निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु तथा माँ गायत्री की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आपका जीवन धर्म, ज्ञान, भक्ति एवं सदाचार से पूर्ण रहे। इस प्रार्थना के साथ आज के इस कार्यक्रम को मैं विराम देता हूँ। आपकी ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति ओम। श्री श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदू महासभा द्वारा सुधा वरिष्ठी।

0: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी श्रोताओं को सादर नमन। सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में मॉरिशस आर्य रवि वेद प्रचारिणी सभा की ओर से प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास में गृहस्थ के सामान्य कर्तव्य बताते हुए प्रातः काल जागने का निर्देश दिया है। उन्होंने मनुस्मृति का एक प्रसिद्ध श्लोक प्रस्तुत किया है, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत काय क्लेशांश्च तन्मूलान वेद तत्त्वार्थमेव च। मनुष्य को सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, निद्रा त्याग कर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। अर्थ अर्थात जीविका, धन उपार्जन का चिंतन। कहते हैं कि प्रथम महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, बुद्धेत का अर्थ होता है जागना। बुद्धिमान मनुष्य को सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त एक बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। श्लोक का दूसरी महत्वपूर्ण बात, धर्मार्थौ च अनुचिन्तयेत, जागने के बाद धर्म अर्थात ईश्वर उपासना, सदाचार, स्वकर्तव्य का चिंतन करना चाहिए। तदुपरांत अर्थ का चिंतन करें, अर्थ अर्थात ईमानदारी से धन कमाने के उपाय के बारे में चिंतन करना चाहिए। तीसरी बात, काय क्लेशांश तन्मूलान, शरीर के कष्टों और उनके मूल कारणों पर विचार करना चाहिए ताकि शरीर निरोग रहें, शरीर स्वस्थ रहें, शरीर में रोग प्रवेश न करें। वेद तत्त्वार्थम एव च, हमेशा वेदों के अनुसार ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और वेदों के वास्तविक ज्ञान एवं परम सत्य का विचार करना चाहिए। महर्षि जी ने ब्रह्म मुहूर्त में जागने का उपदेश दिया। ब्रह्म मुहूर्त धर्म और आयुर्वेद की दृष्टि से भोर का एक अत्यंत पवित्र और शुभ समय है जो सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले शुरू होता है। आमतौर पर यह समय सुबह 4 बजे से 5:30 बजे के बीच का होता है। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा, ब्रह्म का अर्थ है अत्यंत दिव्य, सबसे बड़ा, और मुहूर्त का अर्थ है समय। सीधे तौर पर ब्रह्म मुहूर्त को दिव्य समय या भगवान का समय माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी सबसे अधिक होती है।

0: जो ध्यान, प्राणायाम और आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, ईश्वर उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह समय स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। विज्ञान भी मानता है कि समय वायु अत्यंत शुद्ध, प्रदूषण मुक्त और ऑक्सीजन से भरपूर होता है, प्राणवायु से भरपूर होता है। यह फेफड़ों और मस्तिष्क के लिए लाभकारी होता है। महर्षि दयानंद का दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ होता था। वे ब्रह्म मुहूर्त की विशेषता और लाभ को भली भांति समझते थे, जानते भी थे, अनुभव भी करते थे। इसलिए उन्होंने इसका उल्लेख सत्यार प्रकाश के चौथे समुल्लास में किया है। ब्रह्म मुहूर्त का अनुसंधान करने से पता चलता है कि यह समय अत्यंत ही लाभकारी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभ क्या लाभ हो सकते हैं? प्रथम, मानसिक शांति की प्राप्ति। इस दौरान प्रकृति और मन दोनों शांत होते हैं, जिससे तनाव कम होता है। दूसरा, उत्तम स्वास्थ्य। आयुर्वेद के अनुसार इस समय उठने से शरीर का वात, पित्त, कफ संतुलित रहते हैं। यह मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान बनाए रखने में सहायता करता है। तीसरा है, ब्रह्म मुहूर्त तेज बुद्धि और एकाग्रता दिलाता है। यह समय पढ़ाई, धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय और महत्वपूर्ण कार्यों की योजना बनाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का सेवन करने से प्राणों का संरक्षण, पोषण और संवर्धन होता है। प्राणों का पोषण न करने से शरीर रोगों से घिर जाता है। इसलिए कहा गया है, प्रातः काल सूर्योदय से देर घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध वायु का सेवन करें, योगाभ्यास व्यायाम करें, पर्याप्त मात्रा में जल ग्रहण करें। प्राणायाम द्वारा हम अपने प्राणों की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करें। ऐसा नित्य करने से शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा स्वस्थ अवस्था में रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त अपने आप में परम औषधि है। ब्रह्म मुहूर्त अमृत के समान अत्यंत कल्याणकारी है। ब्रह्म मुहूर्त में वीर वायु और अमृत का सार तत्व स्वाभाविक रूप से बहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से, अमृत का सेवन करने से, ब्रह्म मुहूर्त में विचरण करने से प्रत्येक व्यक्ति को लाभ अवश्य पहुंचता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बेला कहा गया है। एक प्रसिद्ध भजन के माध्यम से समझाया गया है कि बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन न भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। महर्षि दयानंद ने अपने सत्यार प्रकाश के माध्यम से सबको जगाने का कार्य किया। उनके प्रति हम सदैव आभारी रहेंगे। आज की वार्ता यहाँ विराम लेता है। अब आचार्य सुनील को अनुमति दीजिए। ओम शांति शांति शांति।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घरे मिला लीजिए, सुबह के ठीक 6:30 हुए हैं। शुक्रवार 19 जून 2026 के प्रातकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। आज संसद में बजट 2026 पेश किया जाएगा, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। बढ़ती महंगाई और आर्थिक चुनौतियों के बीच सरकार से जनता को बड़े फैसलों की उम्मीद है। बजट 2026-2027 का सीधा प्रसारण आज शाम 5 बजे से MBC चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। बजट भाषण के बाद विशेष कार्यक्रमों में विशेषज्ञ और हितधारक महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। महंगाई, आवास, रोजगार और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों को लेकर जनता की उम्मीदें काफी बड़ी हुई हैं। बजट से लोगों को अपने दैनिक जीवन में सुधार और आर्थिक मजबूती की ठोस उम्मीद है। पुलिस बल से जुड़े मुद्दों पर पुलिस फाइटर्स यूनियन ने वेतन पेमेंट और प्रमोशन से जुड़ी घोषणाओं की उम्मीद जताई है। साथ ही यूनियन ने पूर्व बजट परामर्श में शामिल न किए जाने पर असंतोष भी व्यक्त किया है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों पर आर्थिक क्षेत्र की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं NGO और सामाजिक संगठनों को उम्मीद की है कि बजट में जमीनी हकीकत से जुड़े ठोस सामाजिक फैसले किए जाएंगे। लागरमो सैपिया में आजसू की एक बड़ी कार्रवाई में कथित तौर पर गांजे की खेती का एक बड़ा पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 35 लाख रुपए से अधिक कीमत के संदिग्ध मादक पदार्थ बरामद किए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 15 मई से अब तक 875 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 202 लोगों की मौत हो चुकी है। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। आज शुक्रवार 19 जून 2026 को सभी की निगाहें राष्ट्रीय सभा पर टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम आज शाम 5 बजे अलियंस डी शांजमों का दूसरा बजट पेश करेंगे। कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बीच घोषित होने वाले उपायों का जनता और आर्थिक क्षेत्र के हितधारक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अधिक जानकारी राजमिला स्तमोनी की रिपोर्ट पर रजनी बेकर के विवरण के साथ।
2: इट इज बजट डे, आखिरकार बजट प्रस्तुत करने का दिन आ ही गया। देश भर में कई क्षेत्रों में उम्मीदें तो बहुत हैं, चाहे घर के लिए हो, कामगारों के लिए, ठेकेदारों के लिए और अवकाश प्राप्त लोगों के लिए भी। यही उम्मीद बंधी हुई है कि जीवन खर्च में वृद्धि का सामना कर पाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। असल में पिछले 29 अप्रैल से 6 मई के बीच वित्त मंत्रालय की ओर से आयोजित बजट पूर्व परामर्श बातचीत के दौरान इसी बात पर चर्चा की गई, लेकिन पहले मई से प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम संबंधित तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग सार्वजनिक वक्तव्यों के दौरान उन्होंने नियमित रूप से पूर्व सरकार की ओर से प्राप्त कमजोर विरासत का उल्लेख किया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताएं हैं, जो ईंधन के दामों, समुद्री फ्रेट के खर्च और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को प्रभावित करते हैं और जिनका सीधा असर उपभोक्ताओं को झेल

0: करना पड़ता है। पिछले 7 जून को कांचाबल में गन्ने की कटनी की शुरुआत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सावधानी पूर्वक काम करना है। फिर भी उन्होंने उन 5 सिद्धांतों का उल्लेख किया जिन पर बजट टिका हुआ है, जिम्मेदारी, हमदर्दी, आर्थिक कारगरता, सामाजिक न्याय और कमजोर वर्ग के लोगों की सुरक्षा। इसके अलावा वित्तीय आंकड़ों से उन चुनौतियों के बारे में भी पता चलता है जिनका हमें सामना करना है। 2026 के मार्च महीने के अंत में 675.4 बिलियन रुपए था, यानी जीडीपी का 89.5%। आंकड़ों के अलावा इस बजट का इंतजार इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि ये आने वाले वर्षों के लिए एक रोडमैप के समान होगा। मकसद यही, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, खरीद शक्ति संरक्षित करना और ह्यूमन कैपिटल पर भी ध्यान केंद्रित, जिसे देश की प्रमुख समृद्धि की तरह देखा जाता है। क्या प्रधानमंत्री बजट संतुलन के साथ जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर पाएंगे? इसका जवाब शाम 5 बजे।
1: आज बजट 2026-2027 के भाषण का सीधा प्रसारण आज शाम 5 बजे से MBC 1, MBC 7 और MBC Play पर देख सकेंगे। क्रेओल मॉरिशियन में समकालीन अनुवाद MBC 2 और M1 और AM1 पर उपलब्ध होगा, जबकि भोजपुरी अनुवाद MBC 3, RM2 और RM3 पर प्रसारित किया जाएगा। शाम 7:30 बजे से MBC 1, MBC 7 और RM1 पर एक विशेष संस्करण प्रसारित किया जाएगा। इसमें विदेश मंत्री रितेश रामफल, सांसद रोशन जमन, पूर्व गुड गवर्नेंस मंत्री महेंद्र सिंह रतन, ओनावा मोरिस के पैट्रिक बेलकोर तथा अर्थशास्त्री इब्राहिम मलिक बजट 2026-2027 के प्रमुख उपायों का विश्लेषण और चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रितेश रामफल एक अन्य विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे जो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के हितधारकों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित होगा। इसमें वे एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट मैन्युफैक्चरर्स के डेप्यूटी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सामियल मुजों, एसोसिएशन ऑफ सीजनल रेंटल एक्टर्स के महानिदेशक डारेन मुदेली, मॉरिशस कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल फेडरेशन लिमिटेड के CEO सचिन सुकना तथा सतत विकास सलाहकार सुनील दाउका सिंह के साथ विचार विमर्श करेंगे। बजट के सिलसिले में ही रहते हैं, उम्मीदें काफी अधिक हैं। जीवन यापन की लागत, आवास क्रय शक्ति, युवाओं का भविष्य और स्थानीय कृषि जैसे कई मुद्दे लोगों की चिंता का कारण बने हुए हैं मॉरिशस के नागरिकों के लिए। इस बड़े बजट आयोजन से पहले हमने कुछ लोगों से बातचीत कर उनके विचार जुटाए हैं। जनता की अपेक्षा है कि ऐसे ठोस उपाय किए जाएं जो उनके दैनिक जीवन में सुधार लाएं और देश की आर्थिक संभावनाओं को मजबूत करें। इस रिपोर्ट में एक विस्तृत अवलोकन शैली निर्बन के साथ।
2: मुख्य चिंताओं में जीवन यापन की लागत में वृद्धि शामिल है। कई नागरिक घरेलू खर्चों को कम करने के लिए उपायों की मांग कर रहे हैं, विशेष रूप से ईंधन, बिजली और कुछ करों को लेकर।
3: J'ai envie d'une baisse d'essence et aussi pour un businessman facilité, le SME, une baisse de taxes aussi parce que toujours fait même monter cher.
2: कई बुजुर्गों का ये मानना है कि भोजन और किराए के बीच तथा दवाइयों के बीच अब दैनिक जीवन को संभालना और भी ज्यादा कठिन होता जा रहा है।
4: Pour le moment, la vie est très dure, surtout pour les personnes âgées qui doivent trouver les médicaments et la nourriture et quelquefois le loyer. Franchement dire, ben on n'arrive pas à trouver les deux bouts.
5: En tant que pensionnaire, je suis content que le gouvernement n'ait pas taxé nos pensions, qu'on ajoute nos pensions qui nous gagnent dans le travail. Pension vieillesse, parce que je n'ai pas 65 ans, mais là, nous avons payé taxes et la vie chère. Et nous pensons un peu à un jeune professionnel qui peut commencer dans notre carrière. Comment je peux faire pour acheter une case, un terrain pour construire la maison? Trouve quelque chose pour qu'il soit un jeune là. Capable de commencer dans la vie sans qu'ils se tentent d'être à outrance, payer un home loan, après paraître n'en rien pour vivre.
2: युवाओं की ओर से आवास तक पहुंच एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जमीन और किराए की कीमतों में वृद्धि के कारण घर का मालिक बनना लगातार मुश्किल होता जा रहा है।
6: En tant que jeune, j'espère que le gouvernement contient le soin de mesures qui peut prendre pour être un low income earners, comme si pour un meilleur style de vie, parce que le salaire n'est pas trop élevé.
2: रोजगार और व्यक्तिगत विकास के अधिक अवसरों की उम्मीद लोग कर रहे हैं।
7: मैं तो बन मांगो जी, इंसान को तो मैंने कहने रहती है इंसुलाजमेंट। अप्रे

0: On les signe le tout. On s'entend les retourner pareil à la même base.
1: Déjà, tout qui se dit monter, travail, pas besoin de débout, ben voilà, hein. Ne pas perdre quelque chose de meilleur. Vous pensez pour plus pire.
2: बुजुर्गों के पेंशन को लेकर भी कुछ प्रतिक्रियाएं दी गईं.
3: De nos jours, ben jeune, tu as tout. Vous êtes pas capable, c'est plus ça. Pour 100 roupies, vous avez fini chez ou la vie.
4: Même aux étudiants, même aux pas de travail, avec, bon, normalement, il y a casse gâteau, tu vois là. La vie n'augmentait. Même côté gâteau, moi, déjà, on a fait basique, net. Même des formes racines, l'aise, tout ça. Mais, je trouve, il me peut être ici, carbone, bien baissé, inflation, tout ça. Et, on trouve, il y a un gros manque, mon côté sport, tout ça. Un sponsor, je sais plus ça. Pour valoriser le sport, aller nourrir. Il y en a beaucoup, jeunes qui, il y a un talent, mais ils ont pas réussi l'exploit de talent parce qu'il y a un workshop, une facilité. Pas besoin de loin. Tu peux connaître qu'il a droppé, il faut une baiser à l'île Maurice. Tu peux essayer si le gouvernement donne une chance à l'Anzen, faire sport.
2: एक और प्रमुख अपेक्षा स्थानीय कृषि को अधिक समर्थन देना है.
5: Si nous pas mettre l'emphase l'eau agriculture, tout nous devise pour continuer quitte pays aller.
2: आयात पर निर्भरता कम करने, खाद्य कीमतों पर बेहतर नियंत्रण मिलने और देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होने की उम्मीद भी जताई गई है.
6: विवरण अभी याचना मिश्रा का रहा. 2026-2027 के राष्ट्रीय बजट के नज़दीक आने के साथ ही इन अपेक्षाओं से बहसों को और बल मिलने की संभावना है. ये अपेक्षाएं ऐसे समय में सामने आई हैं जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में 2026 में लगभग 2.8% की वृद्धि का अनुमान है और मुद्रास्फीति कई परिवारों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है. पुलिस बल की ओर से पुलिस फाइटर्स यूनियन के अध्यक्ष सब इंस्पेक्टर सतीश बलजीवन ने उम्मीद जताई है कि पुलिस कर्मियों को पेंडिंग अलाउंस और लंबित प्रमोशन पर प्रगति की घोषणा की जाएगी. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस के यूनियन प्रतिनिधियों को पूर्व बजट परामर्श में शामिल नहीं किया गया, जिस पर उन्होंने खेद व्यक्त किया है. याचना मिश्रा का विवरण.
2: फरवरी से संडे अलाउंस नहीं दिया गया है या आंशिक रूप से इसका भुगतान किया गया है. संडे अलाउंस की रकम आधे से ज्यादा कम हुई है. एक साल से पैसेज बेनिफिट की रकम भी नहीं दी गई है. पुलिस उपकरण जैसे बॉडी कैम टेजर प्राप्त करने की आशा है ताकि हम अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएं. पीआरबी रिपोर्ट में मौजूद अलाउंस भी अभी तक नहीं दिया गया है. अभी के लिए जरूरी है जल्द से जल्द कम से कम 200 पुलिस अफसरों की भर्ती करना, क्योंकि सभी इकाइयों में आधे से कम कर्मचारी मौजूद हैं, जबकि काम और कार्रवाइयां दुगनी हो गए हैं.
6: जहां आर्थिक क्षेत्र के हितधारक ऐसे उपायों पर नजर रखे हुए हैं जो आर्थिक वृद्धि को गति दे सकें, वहीं एनजीओ और विभिन्न संगठनों को उम्मीद है कि ऐसी घोषणाएं की जाएंगी जिनका सामाजिक प्रभाव व्यापक हो और जो जमीनी स्तर की वास्तविकताओं का समाधान कर सकें. एक बार फिर आशी बाचू की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा का विवरण.
2: देश के बजट संबंधी प्राथमिकताएं तय होने के समय कुछ लोग आर्थिक संकेतों से आगे देखने की अपील कर रहे हैं. उनकी अपेक्षाओं में देखभाल कार्य, सहयोग और पारिवारिक जिम्मेदारियों की बेहतर मान्यता शामिल हैं, जो अभी भी बड़े पैमाने पर महिलाओं द्वारा निभाई जाती हैं. जेंडलिक्स मॉरिशस की निदेशक अनुष्का वीरासोमी का मानना है कि इन वास्तविकताओं को बजटीय निर्णयों में अधिक स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए. आज की परिस्थितियों में देखें तो डे केयर ही उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है. आर्थिक मूल ढांचे पर भी ध्यान देना इतना ही जरूरी है. काम पर महिलाओं से ज्यादा पुरुषों के हित पर गौर किया जाता है, जो दुर्भाग्य की बात है. सामाजिक क्षेत्र के अन्य साझेदार भी गंभीर चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं. कलेक्टिव एजेंस टुक्सिडा के अध्यक्ष जोआन आशिल नशीली दवाओं की समस्या के बेहतर समाधान और देखभाल की मांग कर रहे हैं.
7: Quand on parle de problématiques liées à la drogue, on parle surtout de la prise en charge et non pas des systèmes répressifs. Donc,
2: drugs के मामलों में देखभाल पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए. इन मरीजों की मदद के लिए ज्यादा बजट की जरूरत है.
7: Les patients, les bénéficiaires qui en ont besoin.
2: इन्हीं सामाजिक मुद्दों की निरंतरता में कमजोर वर्ग की सुरक्षा का प्रश्न भी अपेक्षाओं

0: में प्रमुख रूप से सामने आ रहा है। आउट मोरिस की निदेशक सौंद्रिन जुलियन संकट की स्थिति में LGBTQIA+ व्यक्तियों के लिए विशेष आश्रय केंद्रों की मांग कर रही है।
1: Nous espérons que le budget cette année-là y accorde une attention particulière à protection des citoyens mauriciens qui font partie de la communauté LGBTQ+.
0: यही आशा है कि इस साल के बजट में LGBTQ+ के सदस्यों की सुरक्षा का भी प्रावधान हो और साथ में ऐसे दलों में मौजूद उन लोगों की मदद के लिए भी मूल ढांचों की व्यवस्था की जाए जो परेशानियों का सामना करते हैं। ये बहुत जरूरी है और अभी तक ऐसा कुछ भी मॉरिशस में नहीं किया गया है। ये सभी अपेक्षाएं भले ही अलग अलग हों पर ये एक ही विजन को दर्शाती हैं, एक ऐसा बजट जो देश की सामाजिक वास्तविकताओं के अधिक करीब हो। अब ये दिशा सरकार की घोषणाओं में सम्मिलित होंगी या नहीं ये देखना बाकी है।
2: अपनी ओर से मॉरिशस फाइनेंस ने सरकार से अपील की है कि वह ऐसे महत्वाकांक्षी उपाय अपनाएं जिससे बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में मॉरिशस नए अवसरों का लाभ उठा सके। संस्था का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी भू राजनीतिक तनावों और वैश्विक वित्तीय केंद्रों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद देश के पास अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण क्षमताएं मौजूद हैं। बजट से पहले मॉरिशस फाइनेंस ने तीन प्रमुख प्राथमिकताएं तय की हैं: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की दृश्यता बढ़ाना, कर स्थिरता सुनिश्चित करना और सुधारों के कार्यान्वयन में तेजी लाना। मॉरिशस फाइनेंस की चेयरमैन रूबीना तोजू को सुनते हैं याचना मिश्रा के विवरण के साथ।
0: पहली प्राथमिकता है मॉरिशस के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र रानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर की छवि में अधिक निवेश करना। मॉरिशस फाइनेंस का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए समर्पित संसाधनों और अधिक महत्वाकांक्षी प्रचार रणनीतियों की आवश्यकता है।
3: Nous avons besoin d'une stratégie autour de nos points forts, donc gestion de patrimoine.
0: हमें अपनी शक्तियों के आधार पर नीतियों की जरूरत है। फैमिली ऑफिसेस, एशिया अफ्रीका के बीच सहयोग, निजी विरासत, व्यवसाय, पर्यावरण और उनसे जुड़ी गतिविधियों का सहयोग देना जरूरी है।
3: Et finalement, l'écosystème réglementaire complet qui soutient ces activités.
0: दूसरी प्राथमिकता है टैक्स व्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करना। ऐसे समय में जब दुबई, सिंगापुर, डबलिन और GIFT सिटी जैसे वित्तीय अधिकार क्षेत्र लगातार अपनी नीतियों में बदलाव कर रही हैं, किसी भी प्रकार की अनिश्चितता निवेशकों और प्रतिभाओं को अन्य गंतव्यों की ओर मोड़ सकती है। हमारे कंपेटिटर्स चुप नहीं बैठते हैं, उनकी नज़र हमेशा वित्तीय परिस्थितियों पर होती है। जब कोई समस्या या बाधा हो तो वे सारी रकम, सारा आय अन्य देशों की ओर, अन्य दिशाओं की ओर भेजते हैं। हमें स्थिरता की जरूरत है। तीसरी प्राथमिकता अधिक चुस्त और त्वरित कार्य प्रणाली अपनाना यानी सर्कुलर इकोनॉमी अपनाना। मॉरिशस फाइनेंस चाहता है कि निर्णय लेने और उन्हें लागू करने के बीच का समय कम किया जाए ताकि मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उभरने वाले अवसरों का जल्द से जल्द लाभ उठा सके। मॉरिशस फाइनेंस के अनुसार वित्तीय साल 2026-2027 का बजट केवल एक वित्तीय अभ्यास नहीं होना चाहिए बल्कि ये एक मजबूत रणनीतिक संकेत होना चाहिए जिससे मॉरिशस नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रख सके। अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के सामने मॉरिशस को तेजी से कदम उठाने होंगे ताकि इस अवसर की खिड़की को आर्थिक विकास के एक शक्तिशाली इंजन के रूप में बदला जा सके।
2: और अन्य खबरों में लांगरेमो सैंपिया इलाके में कल गुरुवार तड़के आत्सू द्वारा चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान कथित तौर पर गांजे की खेती का पता चला है। सुबह लगभग 6:30 बजे की गई इस कार्रवाई में दो कमरों में उगाए जा रहे संदिग्ध पौधे बरामद किए गए। मौके से पुलिस ने 36 ऐसे पौधे जब्त किए हैं जिनके गांजा होने का संदेह है। इनकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर से लेकर 2 मीटर 10 सेंटीमीटर तक बताई गई है। पौधों को मिट्टी और खाद से भरे प्लास्टिक कंटेनरों तथा थैलों में उगाया जा रहा था। इसके अलावा लगभग 2 किलोग्राम संदिग्ध गांजे की पत्तियों से भरा एक बैग भी बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार इन कमरों में हवा निकालने की व्यवस्था के साथ साथ 3 LED लाइट पैनल लगाए गए थे।

जिनका उपयोग कथित तौर पर पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा था। बरामद संदिग्ध मादक पदार्थों का कुल अनुमानित मूल्य 32,41,635 रुपए आंका गया है। लगे मौसेपिया के मार्केट लेन की निवासी 40 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया। मामले की जांच फिलहाल जारी है। बात करें फिलहाल विश्व फुटबॉल कप 2026 के बारे में। विश्व फुटबॉल कप की कल के खेले गए मैचों के स्कोर इस प्रकार है। कल रात 8 बजे चेक रिपब्लिक वर्सेस दक्षिण अफ्रीका का स्कोर रहा 1-1, और कल रात 11 बजे स्विट्जरलैंड का सामना हुआ बोस्निया हर्ज़ेगोविना के साथ और स्कोर रहा 4-0, स्विट्जरलैंड 4 बोस्निया हर्ज़ेगोविना 0। और आज सुबह 2 बजे खेले गए मैच ग्रुप बी में कनाडा वर्सेस कतर, कनाडा 6-0, और ग्रुप ए में मेक्सिको वर्सेस साउथ कोरिया, यानी कि फिलहाल जो मैच अभी खेल जा रहा है मेक्सिको का सामना हो रहा है दक्षिण कोरिया के साथ, और मेक्सिको के लिए पहला गोल दागने वाला लुई रोमो है। सो फिलहाल सेकेंड हाफ में जो स्कोर है अभी के लिए 1-0 है। आपको आज रात तक के खेले गए मैचों के बारे में, आज रात तक खेले जा रहे मैच के बारे में भी बता देते हैं। आज रात ग्रुप बी में रात 11 बजे यूएसए खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला के बढ़ते प्रकोप को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है। लैबोरेटरी परीक्षणों में पुष्टि हुई है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला वायरस से 875 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 15 मई को महामारी घोषित किए जाने के बाद से इस बीमारी के कारण 202 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य अधिकारी स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। बढ़ते हम मौसम के हाल की ओर। आम हालत हमारे इलाके पर हल्की हवा का बहाव है अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है। सुबह के समय दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर थोड़ी देर के लिए हल्की बारिश होगी, अन्य इलाकों में बाद में आसमान साफ हो जाएगा, मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर बाद उत्तर पश्चिम में बादल विकसित होंगे और बारिश होने की संभावना है, अन्य इलाकों में धूप खिलेगी। रात के दौरान आसमान साफ रहेगा, हवा सुबह के समय हल्की बहेगी तथा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहेगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पास सामान्य रहेगा और दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर के ज्वार उठेंगे। तापमान अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच, न्यूनतम तापमान सामान्य से कम यानी सेंट्रल प्लेटू पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:44 पर और सूर्यास्त शाम 5:38 पर।

0: इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है और कंसल पर हमारे सहयोगी कादर का, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहे, कुछ ही देर में बढ़ते हैं हम शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। नंबर 111 एवेन्यू नेहरू फिनिक्स में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री ज्ञानदेव जानकी, जिन्हें सुनील के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आली ब्रियॉक शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM बैतुलेन रॉबिन्सन क्यूपिप में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री सिपरसाद रामबन, जिन्हें हेम के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाक शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM नंबर 14 चर्च एवेन्यू तमारे में

83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जयवंती दाजी पैदाश्रीराम राव जी और जिन्हें एला के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज 2 बजे उनके घर तमागा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिवियनवा शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। हुसैन लेन यूनियन पार्क में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के जनाब मोहम्मद मुस्लिम रोशन जिन्हें मुस्लिम के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज सुबह 10 बजे इनके बेटे रियाज रोशन के मकान यूनियन पार्क से उठाकर दफनाने के लिए यूनियन पार्क का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। ग्रांपो रोड नोवेल फ्रांस में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड की रसूल बी इमाम बख्श जिन्हें रसूल बी के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज सुबह 11 बजे इनके भाई मोहम्मद शरीफ इमाम बख्श के मकान नोवेल फ्रांस से उठाकर दफनाने के लिए यूनियन पार्क का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। गांधी रोड सेंट जूलियन दुतमो में 50 साल की 50 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रंजना मानिक पैदाश्रम बिकन और जिन्हें माया के नाम से लोग ज़्यादा जानती थी और जो पहले ग्रांड रिट्रीट की रहने वाली थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2:30 बजे उनके पति तोरीजी सिमाद्री के घर सेंट जूलियन दुतमो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन गांधीमास की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। मिकाएलिल सेमोटे में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती अंतमा दालेवादू पैदाश्रम अचादू और जिन्हें सूर्या के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर सेमोटे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेमोटे बेलोम की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। पोंकोलविल सावन रोड नोवेल फ्रांस में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री दुष्यंद सुकन जिन्हें विनोद के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके बेटे कुनाल कुमार सुकन के घर नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रामजी नोवेल फ्रांस की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। राय रोड पच्चीत रिविया में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री सुरेंद्र आपादू जिन्हें बेबी के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो पहले कैपुसिन स्ट्रीट को मॉडल के रहने वाली थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे मुगा फ्यूनरल पुचित रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शेबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: सत्यार्थ प्रकाश मास के संदर्भ में मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में प्लेंडे पपाय आर्य रविवेद सभा शाखा नंबर 18 शुक्रवार 19 जून को रात्रि के 7 से 8 बजे तक भारतेंदु इंस्टीट्यूट रॉयल रोड प्लेंडे पपाय में यज और सत्संग का आयोजन कर रहा है। सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस शुक्रवार 19 जून ख्वाब बुचिक यूनियन वेल आर्य समाज में 4 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन देंगे।
0: ये है रेडियो मॉरिशस।

सभी सुनने वालों को स्पोर्ट्स न्यूज़। सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेक्सिको के स्टाडियो ग्वादालाहारा में इसी समय जश्न का माहौल है। क्यों न हो, अपने वर्ल्ड कप में अपने फैंस के सामने मेक्सिको की टीम नॉकआउट राउंड में जाने वाली पहली टीम बनी, दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर। फर्स्ट हाफ में 0-0, सेकंड हाफ में साउथ कोरिया के गोलकीपर की गलती पर रोमो ने मैच का मात्र गोल स्कोर किया और मेक्सिको की टीम क्वालिफाई हो गई बेस्ट ऑफ 32 के लिए। उधर वर्ल्ड कप फाइनल्स में कनाडा की पहली जीत, वो भी स्टाइल में। वैंकूवर में गोलों की कतार लगी, 6-0 से कनाडा ने कतार को मसल डाला। कतार के दो खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिए गए, एक फर्स्ट हाफ में दूसरा सेकंड हाफ में। 9 खिलाड़ियों की टीम के खिलाफ कनाडा ने गोलों की होली खेली, पर इस बीच इस्माइल कुने को गंभीर चोट लगी, शायद वो आगे इस वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाएगा। काइल लागिन ने कनाडा का पहला गोल स्कोर किया, जोनाथन डेविड का हैट्रिक, फिर नाथन सालिबा एक ऑन गोल भी रहा। 6-0 के इस भारी जीत के साथ कनाडा नॉकआउट राउंड में बेस्ट ऑफ 32 में लगभग पहुंच गया। कनाडा के पास 4 अंक है गोल डिफरेंस प्लस 6, स्विट्जरलैंड के पास 4 अंक है गोल डिफरेंस प्लस 3, बोस्निया और कतार के पास 1-1 अंक है। स्विट्जरलैंड ने इस बार गलती नहीं की, 4-1 की जीत बोस्निया पर। मंजाम्बी का डबल, वॉगास और जाका का 1-1 गोल। इस मैच में भी रेड कार्ड बोस्निया के खिलाड़ी मोहाम्रेमोविच को। स्विट्जरलैंड अब 4 अंक लिए प्लस 3 गोल डिफरेंस के साथ लगभग क्वालिफाई है। ग्रुप का टॉपर कौन बनेगा, फैसला जब कनाडा खेलेगा स्विट्जरलैंड के खिलाफ अगले हफ्ते। कल का पहला मैच ड्रो गया 1-1, चेक रिपब्लिक 1 साउथ अफ्रीका 1। पहले चेक रिपब्लिक के लिए फर्स्ट हाफ में सादिलेक ने स्कोर किया, फिर सेकंड हाफ में पेनाल्टी पर मुकुएना ने इक्वलाइज किया। दोनों टीमों के पास 1-1 अंक है। अपने अगले मैच की तैयारी के लिए इंग्लैंड की टीम ने कांजा सिटी के खिलाफ एक फ्रेंडली प्रैक्टिस मैच खेला। इवन टोनी का हैट्रिक और रोजर्स वाटकिंस का 1-1 गोल, 5-1 की जीत। ये मैच उन खिलाड़ियों के लिए था जो क्रोएशिया के खिलाफ नहीं खेल पाए थे या कम खेले थे। अब अगले मंगलवार को इंग्लैंड का मुकाबला मिडनाइट किक ऑफ गाना के खिलाफ होगा। आज के फिक्चर्स ग्रुप डी में 11 बजे यूएसए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया रात्रि के 11 बजे, जो जीतेगा सीधे नॉकआउट राउंड में। ड्रो भी काफी हो सकता है क्योंकि पहले मैच में दोनों की जीत हुई थी। यूएसए ने पाराग्वे को 3-0 से हराया था और ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से। ये मैच एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले पर लाइव। ग्रुप सी में सुबह 2 बजे स्कॉटलैंड वर्सेस मोरक्को, स्कॉटलैंड के पास 3 अंक है आईटी को हराकर, जबकि मोरक्को ने ब्राजील को रोका था, मोरक्को के पास 1 अंक है। ब्राजील के फैंस को कल सुबह 4:30 बजे उठकर मैच देखना होगा। ब्राजील का मुकाबला आईटी

से होगा और ग्रुप डी में सुबह 7 बजे चाय के साथ तुर्की वर्सेस पैराग्वे, फिर कल रात के 9 बजे नेदरलैंड्स स्वीडन और कल ही मिडफील्ड धमाल जर्मनी वर्सेस आइवरी कोस्ट। ये मैच लाइव एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले पर, आपको बता दें कि एमबीसी प्ले पर सभी मैच लाइव दिखाए जा रहे हैं। ट्रांसफर न्यूज, आर्सेनल ने लेस्टर सिटी से अंडर 19 विंगर जेरेमी मोंगा के लिए पहला ऑफर भेजा जिसे ठुकरा दिया गया है। आर्सेनल की नजर फ्रांस के इंटरनेशनल खिलाड़ी ब्राडले बाकोला पर भी है। टोटनहम हॉटस्पर और मैनचेस्टर यूनाइटेड इस बार बेल्जियम के मिडफील्डर नाथान डेकट को टारगेट कर रहे हैं। ट्रांसफर बाजार में टोटनहम हॉटस्पर और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। लिवरपूल इस बार यूवेंटुस के मिडफील्डर के फ्रेंड चुराम को टारगेट कर रहा है। इराओला एक सेंट्रल मिडफील्डर, एक सेंटर बैक और एक राइट बैक की तलाश में है। So, खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, मेक्सिको की टीम पहुंची नॉकआउट राउंड में। कल आज सुबह उसकी जीत हुई 1-0 से साउथ कोरिया पर। और उधर स्विट्जरलैंड की टीम भी, कनाडा की टीम भी लगभग क्वालिफाई हो गए हैं, कल दोनों की जीत हुई। नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।

0: नमस्कार श्रोतागण, घर ही मिलाते चलिए। इस समय इस सुबह के 7:12 हो चुके हैं और शुक्रवार 19 जून 2026 को सात नवारी है पूजा। वैसे कहा जाता है कि हर सुबह अपने साथ एक नया संदेश अवश्य लेकर आती है। बीते हुए कल की चिंताओं को पीछे छोड़कर आने वाले कल की उम्मीदों को गले लगाने का नाम ही है जिंदगी। तो श्रोताओं, चाय की प्याली हो या काम की तैयारी, घर की रसोई हो या सफर की शुरुआत, हम आपके साथ हैं। लेकर आए हैं सुबह का नजराना कार्यक्रम, जहां पर होंगे पुराने दौर के सुरीली नगमे, 90s के दशक की सुनहरी यादें, बॉलीवुड की अनसुनी अनकहीं किस्से आपके साथ। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। वैसे ये भी कहा जाता है कि सूरज हर रोज इसलिए नहीं निकलता कि दिन बदल जाए, बल्कि इसलिए निकलता है कि आपकी हिम्मत फिर से जाग जाए। तो चलिए इसी सकारात्मक सोच के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं चिंतन से। आइए इसे सुनते हैं श्रीमती डॉक्टर शांति मोहाबियर जी की प्रस्तुति में।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: असली सुख धन में नहीं बल्कि मन की शांति में छिपा होता है। जिस दिन हम अपेक्षाओं से ऊपर उठ जाते हैं, उसी दिन हम सच्ची खुशी को महसूस करते हैं। संसार में मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं। अगर आपके जीवन में शांति है तो आप जैसा धनवान और कोई नहीं। प्रभु की कृपा मानिए और उसे धन्य।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चंद विज्ञप्तियां सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले सायद हुसैन गोद फिनिक्स के रहने वाले निवासियों को खासतौर पर इन गलियों में एपरियाल गार्डन, कॉन्डोस लेजर पार्क एवेन्यू, फिनिक्स हाइट अपार्टमेंट्स, हिलक्रेस अपार्टमेंट, फिनिक्स रेजिडेंस अपार्टमेंट, मोसलमा सोसाइटी पार्कलैन, GNG Auditorium, Pet Concern GIBBS, Auto City Car Showroom, Premium Care Clinic, Jason Network Limited, Skoda Phoenixia, कावेंडिश इंस्टीट्यूट और आसपास के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 21 जून 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और फिर है बिल्टिया विलेज के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 20 जून 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और फिर है वाकवा के रहने वाले निवासियों को खासतौर पर उलीगुदनिमगुआ और रगुत कैंस कौतों के कुछ हिस्सों में और रगुत कैंस कौतों निमगुदे के कुछ हिस्सों में और रगुत दिव्यागु के कुछ हिस्सों में और रगुत लामारी, रगुत ब्यागु, रगुत बनफा, शुमा रिजर्वोर, डंडी लेन और शुमा लासोस मुटो लेन के आसपास के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 28 जून 2026 को सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी।

0: सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी। श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चंद विज्ञप्तियां सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

वैसे श्रोताओं, कहा जाता है कि पुराने गीत केवल धुन नहीं होते थे, वे हमारी यादों की अलमारी में रखी हुई वो खुशबू होते थे जो बरसों बाद भी दिल को महक देती है। और हमारे बॉलीवुड के वो दौर, गोल्डन ईरा जिसे हम कहते हैं, उसमें ऐसे ऐसे गायक आए थे जिनके गीत आज भी उतने ही सुनहरे हैं, उतने ही प्यारे हैं। जब भी हम सुनते हैं ऐसा लगता है कि हम उस दौर में चले गए हैं जहाँ पर किसी की यादें, किसी का जो है बचपन या बीता हुआ का एक कल जो याद आ जाता है। और बॉलीवुड सिनेमा ने हमें एक ऐसा गायक दिया था

जिनका जो गीत है अगर आज भी हम सुने तो मुस्कुराते भी हैं, रोते भी हैं और खुलकर हंसते भी हैं, और वो हैं किशोरदा। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुबह का नजराना कार्यक्रम में। सूरज शर्मा सजादा जी हैं त्रियोले से, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ में हैं गायत्री जी नुवेल फ्रांस से, लीला जी हैं बॉशेरी से, और साथ में हैं माला सुमारू जी, श्यामा रघुनंदन जी हैं, और साथ में हैं वीना रामफुल जी, मौदालबिया से अनीता जी हैं, और जो भी लोग अभी काम के लिए निकले हैं कहेंगे बॉन कुराज। सादेरी हैं मुंजे ख्वायो से, और गीता जी हैं पोफे से।

भाई बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं और साथ दे रही हैं अभी उषा ब्रह्मस्थान से और अपने पति राज और अपने पूरे परिवार के साथ सुन रहे हैं हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हैं गीता बाई जी निवेलफॉन से, नीता खेडनी जी हैं सैन जुलियन विलार से, उषा जी हैं हाईलैंड से, देवी जी हैं हाईलैंड से।

0: अरे जा जा जा जा
1: अरे सुन सुन सुन सुन जा जा
2: भाई, किसी ने सच ही कहा है कि प्यार बिना जिंदगी नहीं। जहाँ प्यार वहाँ सबका अपनापन मिलता है। भाई, इंडियन सिनेमा के एक ऐसे एक्ट्रेस ने कहा है कि दोस्तों जिंदगी हसीन है, मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले ही जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं। भाई, ये एक्ट्रेस जब भी गाती हैं, जब भी आती हैं बड़े पर्दे पर, तो धूम मच ही जाता है ना। चलिए, उनके नाम आशा भोसले और परवीन बाबी जी की आवाज़ों में आइए सुनते हैं प्यार करने वाले, फिल्म है शान। सादेरी है कमला जी और साथ में है अंगिरा दुबलाल जी, आपका स्वागत है।

0: झलकियां
1: झलकियां चलिए मैं शान से भी कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इतने प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप नज़र डालते हैं आज के रेडियो कार्यक्रमों पर। अभी आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना कार्यक्रम। 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार गर्मा गर्म नाश्ता और 8:50 पर हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी द्वारा आप सुन पाएंगे।

0: फिर आप सभी के नाम एक भोजपुरी गीत चलाएंगे और फिर से समाचार आप सुन पाएंगे 9 बजे 9:10 पर आज की चर्चा कार्यक्रम वेदिता की ओर से, और 10 बजे समाचार होंगे समाचारों के उस पार भक्ति धारा कार्यक्रम रोशनी द्वारा, शास्त्र नवनीतम कार्यक्रम 10:15 आप सुन पाएंगे इस कार्यक्रम को, और 10:50 पर भक्ति धारा कार्यक्रम जारी रहेगा। 11 बजे समाचार सुन पाएंगे 11:03 पर शमी फरोजा सायदा की तरफ से। 12 बजे आप तेलुगु भाषा में कृतिका द्वारा कार्यक्रम सुन पाएंगे। दिन के 1 बजे आरसी द्वारा तमिल भाषा में कार्यक्रम सुनेंगे। रंगारंग कार्यक्रम गुजराती भाषा में रत्ना द्वारा। दिन के 1:45 पर 2 बजे आप चाइनीज कार्यक्रम सुन पाएंगे हॉन्ग हॉन्ग के साथ। आपकी पसंद कार्यक्रम आपके ही पसंद के गीत 4028085 पर आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और दोपहर के 3 बजे आप समाचार सुन पाएंगे समाचारों के उस पार 3:10 पर आपकी पसंद कार्यक्रम जारी रहेगा। 3:45 से लेकर शाम के 4:40 तक अनवर की ओर से आप उर्दू कार्यक्रम सुन पाएंगे। गीत और गजल कार्यक्रम परवेजा की तरफ से शाम के 5 बजे। 6 बजे आप पूरा समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे समाचारों के उस पार 6:20 पर चंद प्यारे फिल्मी गीत आप सभी के नाम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। और 6:30 चाइनीज कार्यक्रम जिन के तरफ से। रात के 7 बजे तमिल भाषा में आप कार्यक्रम सुन पाएंगे। 7:30 आप तेलुगु भाषा में विश्वा द्वारा आप कार्यक्रम सुनेंगे। 7:50 पर गीत गंगा कार्यक्रम मराठी भाषा में बापू की ओर से। भजले प्रभु का नाम भक्ति कार्यक्रम अलका जी की ओर से आप सुन पाएंगे रात के 8:10 पर। महफिल शब कार्यक्रम परविजा की तरफ से 8:40 पर। रात के 9 बजे भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुरेखा जी की ओर से। और रात के 11 बजे सुनहरे पल कार्यक्रम कुछ पुराने दौर के गीत लेकर आएगी प्यारी गिनेशा। और रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक चंद प्यारे फिल्मी गीत आप सभी के नाम।
1: रेडियो मॉरिशस
2: झलकियां।

प्रभा जी हैं, सादे रही हैं। साथ में हैं सुदेवी जी।

भाई, जो भी लोग हमारे साथ बड़े प्यार से जुड़े हुए हैं, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। और जो भी लोग अभी भी ट्यून किए हैं, सुबह का नजराना कार्यक्रम आप सुन रही हैं, सादिरी हैं, पूजा कहते हैं, जिंदगी में कभी किसी से मुकाबला मत कीजिए, बस कल के अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। जो इंसान गिरने के बाद भी उठना जानता है, वही जीवन का असली विजेता कहलाता है, वैसे सोल्डियर कहलाता है। और हमेशा अपनी जो मुस्कान है बनाए रखिए, कोई साथ दे या ना दे, आप स्वयं का साथ दीजिए। और कभी रुकिएगा मत, गिर गया भी तो उठ जाइए, क्योंकि आपको संभालने वाला कोई नहीं, आप स्वयं ही होंगे। जीवन में हर चीज को पाना

महाराजरी जी हैं पेशी थ्रेट से आपका स्वागत है। हर्षा दे रही हैं इंदिरा लौटन जी लंदन से, सोनपाल सिंह जी साथ में हैं, दीक्षा कृष्णा गोपी और उनके पूरे परिवार। सरिता जी हैं काठोबोन से। मैं ठीक हूँ सरिता जी, आप कैसी हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आप साथ दे रही हैं। भाई श्रोताओं, कहा जाता है कि दुनिया और संसार और खास तौर हमारे जीवन के भाग दौड़ में हम हमेशा भागते हैं जल्दी जल्दी कुछ पाने के लिए, और जो धीरे धीरे चलता है उसको भी कामयाबी मिलता है। इसीलिए एज चाहे जो भी हो, आपका उम्र चाहे जो भी हो, कामयाबी मिल सकता है, बस आप अपने मेहनत पर विश्वास रखें। मेहनत जो करता है वो स्वयं भगवान ही उसको कामयाबी देता है, और वही सिकंदर कहलाता है। एक दिन तो सब कुछ छोड़कर यहाँ जाना है, तो आप अपने

ये जीवन को इस प्रकार जिए जैसे आखिरी हो, और सब कुछ मिलेगा समय के अनुसार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं और साथ दे रहे हैं। साथ रहिए, 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार फिर से मिलेंगे गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में, जहाँ पर कुछ दिमागी कसरत होंगे, तो तैयार रहें। गर्मा गर्म नाश्ते के लिए तो चलिए, मेरी ओर से सभी को शुभ दिन।

घरी मिला ले जा फजीर के 8 बजता। आठ बजे की भोजपुरी समाचार में आप सब लोग की स्वागत करल जाता। सब लोग की नमस्ते या प्रणाम। सबसे आगे देश के बारे में बतियाओ अब जा। आज संसद में बजट 2026 पेश करल जाए, जिकर पर देश के जनता के नज़र टिकल बटे। बढ़त महंगाई और आर्थिक चुनौती के

बीच जनता सरकार से बड़ा फैसला के उम्मीद करता। बजट 2026-2027 की सीधा प्रसारण आज सांझ के 5 बजे से एमबीसी के सब चैनल पर होए। आप लोगन के बता देवी लाजा कि एमबीसी 1, एमबीसी 7, एमबीसी प्ले पर ई सकब देखे। क्रियोल मोरिशियन में समकालीन अनुवाद।

0: अनुवाद रही UMBC 2 MBC RM 1 और AM 1 पर उपलब्ध हुई, जबकि भोजपुरी भाषा में MBC 3 RM 2 और RM 3 पर एक प्रसारण हुई। सांझ के 7:00 से MBC 1 MBC 7 और RM 1 पर एगो विशेष संस्करण के प्रसारण हो, जेकर में विदेश मंत्री रितेश रामफल, सांसद रोशन जमन, पूर्व गुड गवर्नेंस आगे के जो गुड गवर्नेंस के मंत्री रलन महीन सिरतन, ऑनावा मोरिस के पैट्रिक बेलकू और अर्थशास्त्री इब्राहिम मालिक बजट 2026-2027 के प्रमुख उपाय के विश्लेषण और चर्चा करिय जा। विदेश मंत्री रितेश रामफल एगो दूसर विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होयन, जोन सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के हितधारक लोगन के प्रतिक्रिया पर आधारित रही। इमें एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट मैन्युफैक्चरर्स के डिप्टी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सैमुअल मोजन, एसोसिएशन ऑफ सीजनल रेंटल एक्टर्स के महानिदेशक डारेन मुदली, मॉरिशस कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल फेडरेशन लिमिटेड के सीईओ सचिन सुखना और सतत विकास सलाहकार सुनील दावका सिंह भी संगे विचार विमर्श करियन जा। और मॉरिशस फाइनेंस सरकार से वैश्विक आर्थिक बदलाव के बीच महत्वाकांक्षी कदम उठाए की अपील कर ली बाटे। संस्था अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करे खातिर 3 प्रमुख प्राथमिकता भी सुझाईली बाटे। और लाग्रेमा सैपिया दूसर बारे में बतियाई ला जा, लाग्रेमा सैपिया में आजसु के एगो बड़ा कार्रवाई भैल, जेकर में कथित तौर पर गांजा के खेती के एगो बड़ा पर्दाफाश करल गल। हुआ परी से पुलिस 32 लाख रुपया से जस्ती कीमत के संदिग्ध मादक पदार्थ बरामद कर ली बाटे। और इस सिलसिला में मार्केट लेन लाग्रेमा सैपिया के एगो 40 बरिस के आदमी के पकड़ल गल बाटे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करी ला जा, सबसे आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन एबोला के बढ़त प्रकोप के देखत अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य चेतावनी जारी कर ली बाटी। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 15 मई से अभी ले हुआ परी 875 आदमी संक्रमित होल हवन जा, जबकि 202 जना के मौत हो गल बाटी। और फुटबॉल के बारे में बताया ला जा, विश्व फुटबॉल कप जो 2026 बा ओकर अंतर्गत खेलल गल मैच के स्कोर ई प्रकार बाटे। काल रात 8 बजे चेक रिपब्लिक खेल रहल दक्षिण अफ्रीका संगे और एकर स्कोर रहल 1-1, नतीजा 1-1 रहल। और कल रात के ही 11 बजे स्विट्जरलैंड खेलक बोस्निया एजोगोविनिया के संगे और एक स्कोर रहल 4-0, यानी कि स्विट्जरलैंड 4 गोल दरलक। और आज फजीर के 2 बजे खेल गल मैच ग्रुप बी में कनाडा खेलक कतो संगे और हुआ परी कनाडा 6 गोल दरलक और कतो 0। ग्रुप ए में मेक्सिको फजीर के खेलक और उ खेलक दक्षिण कोरिया संगे, हुआ परी स्कोर रहल 1-0। लुई होमो मेक्सिको खातिर गोल दलक। और आई होला जो मैच बाटे आज रात के ग्रुप डी में 11 बजे यूएसए खेली ऑस्ट्रेलिया के संगे। और यही संगे ई भोजपुरी के समाचार समाप्त भइल। ध्यान से साथ देलक कथिन, धन्यवाद। संगे रह सुनब अभी मरनी के समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

मंडे के समाचार सुना। रॉयल रोड इक्वायो में, रॉयल रोड इक्वायो में 74 बरिस के 3 करोड़ 14 बरिस के श्रीमती दुलारी नाबेला, श्रीमती दुलारी नाबेला पैदाश नाम गुलाबा जिनकरा अम्बित के नाम से भी अदमी जिस जान थलंजा की मृत्यु होकर बटेन कर अर्थी आज दिन के 2 बजे इनका घर इक्वायो से उठाकर अंतिम संस्कार कर दिए बोशों के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टू डी एट 2 PM। पोंकुलवील सामान रोड नोवेल फ्रांस में 69 साल के 3 करोड़ 9 बरिस के श्री दुष्यंत सुकन जिनकरा विनोद के नाम से भी अदमी जिसे जानथन जाके मृत्यु होकर बैठी इनकर अर्थी आज फजिल के 11 बजे इनकर बेटा कुणाल कुमार सुकन के घर नोवेल फ्रांस से उठा के अंतिम संस्कार का तीर गामजी नोवेल फ्रांस के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टूडे एट 11 AM।

0: Mikhailil Saint-Martin, Mikhailil Saint-Martin, 79 साल की, तीन कोड़ी 19 बरिस की, श्रीमती अंतामा दालीवादू, श्रीमती अंतामा दालीवादू, पैदाश नाम अचादू, और जिनका सूर्या के नाम से भी आदमी जैसे जान थे जाके मृत्यु हो गई बाटी। इनकर अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकर घरे सैमौते से उठा के अंतिम संस्कार खाती सैमौते बैलों की शमशान भूमि ले चावल जाए क्रिमेशन टूरी एट 1 PM। गांधी रोड सेंट जूलियन दुतमा में, गांधी रोड सेंट जूलियन दुतमा में 50 बरिस के, दुकोरी 10 बरिस के श्रीमती रंजना मानिक, श्रीमती रंजना मानिक पैदाश नाम बिकन, और जिनकरा माया के नाम से भी आदमी जिस जहाँ थलन जा और जो आगे गौनगोत है रहा थलन के मृत्यु हो गल बाटे। इनकर अर्थी आज दिन के 2 बज के आधा इनकर पति तोरुजी सीमाद्री के घर सेंट जूलियन दुतमा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मेजिन कौदेमास के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टूरी एट 2:30 PM। ग्रांपोरो नोवेल फ्रांस में 79 बरिस के, तीन कोड़ी 19 बरिस के रसूल बी इमाम बख्स जिनकरा रसूल बी के नाम से भी आदमी जैसी जान थल जा इंतकाल कर गवन। उनकर अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकर भाई मोहम्मद शरीफ इमाम बख्स के घरे नोवेल फ्रांस से उठा के दफनाए खाती यूनियन पार्क के कब्रस्तान ने जावल जाए फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। रोशन लेन यूनियन पार्क में 77 बरिस के, तीन कोड़ी 17 बरिस के जनाब मोहम्मद मुस्लिम रोशन जिनकरा मुस्लिम के नाम से भी आदमी जिस जहाँ तन जा इंतकाल कर गलवन। इनका जनाजा आज जब फजीर की 10 बजे इनकर बेटा रियाज रोशन के घरे नोवेल यूनियन पार्क से उठा के दफनाए खाती यूनियन पार्क के ही कब्रस्तान ले जावा जाए फ्यूनरल टुडे एट टेन ए एम। आवेन्यू नेहरू फिनिक्स में 60 बरिस के, तीन कोड़ी बरिस के श्री ज्ञानदेव जानकी जिनकरा सुनील के नाम से भी अदमी जैसे जहाँ थे जाके मृत्यु होगा बटे। इनकर अर्थी आज दिन के 2 बजे इनका घर ही फिनिक्स से उठा के अंतिम संस्कार खातिर आलिब्रियों के शमशान भूमि ले जावा जाए क्रिमेशन टूरी एट 2 PM। बैतुलेन रॉबिन्सन क्यूपिप में 69 साल के, तीन कोड़ी 9 बरिस के श्री सिप्रसाद रामबन जिनकरा हेम के नाम से भी आदमी जैसे जाते हैं जाकर मृत्यु होकर बाटे। इनकर अर्थी आज दिन के 2 बजे इनका घरे क्यूपिप से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बिगा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टूडे एट 2 PM। चर्च एवेन्यू तमारे में 83 बरिस के, 4 कोड़ी 3 बरिस के श्रीमती जयवंती दाजी पैदाश नाम राव जी, और जिनकरा एला के नाम से भी आदमी जिस जहाँ थे जाके मृत्यु हो गल बाटी। इनकर अर्थी आज 2 बजे इनका घर तमागा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर रिवियनवा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टूडे 2 PM। रॉयल रोड शोक समाचार एक बार फिर सुन लो। कैपुसिन स्ट्रीट कोरोमोडेल में 65 बरिस के, 3 कोड़ी 5 बरिस के श्री सुरेंद्र अपादू जिनकरा बेबी के नाम से भी आदमी जैसे जहाँ तन जा के मृत्यु होगा बाटे। इनकर अर्थी आज दिन के 1 बजे मुगा फ्यूनरल रॉयल रोड पुचित रिविया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर शिबेल के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टूडी एट 1 PM। शोक में डूबल इस सब परिवार के संगे हमने के दिली हमदर्दी बाटी।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

नमस्कार श्रोतागण, घर मिलाते चलिए। सारे 8 बज चुके हैं। गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं पूजा। तो श्रोताओं, आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुने। कहां पर असली ताकत दिखती है? कहां पर असली ताकत दिखती है? 4028085 पर आप इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, या फिर 5251705 पर आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं। कहां पर असली ताकत दिखती है? 4028085 पर।

0: ये लाइन पर एक श्रोता है, उनको सुनते हैं कि उनके पास क्या जवाब है। हेलो
1: हेलो, नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते धनेश्वर जी, कैसे हैं आप?
1: तो मैं ठीक हूँ बहन जी, और मेरा जवाब है अपना परिवार में।
0: परिवार में, परिवार में क्या होना चाहिए जहाँ पर असली ताकत हो सकता है?
1: परिवार में एकता होना चाहिए,
0: जहाँ पर एकता। जी हाँ, सही जवाब दिया है आपने धनेश्वर जी, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाग लेने के लिए।
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद जी, और शुभ दिन।

0: माला जी जो है वो बासे से हैं और उन्होंने भी कहा है सब साथ हो। जी हाँ, जहाँ पर एकता।
1: मदहोश दिल की धड़कन।
0: साधना जी ने भी यही जवाब दिया है। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा शब्द बताइए, एक ऐसा शब्द बनाइए जिस

का सीधा या उल्टा पढ़ने पर अर्थ नहीं बदलता। एक ऐसा शब्द बनाइए जिसका सीधा या फिर उल्टा पढ़ने पर भी उसका अर्थ नहीं बदलता। एक ऐसा शब्द बनाइए जिसका सीधा या उल्टा पढ़ने पर अर्थ नहीं बदलता। 4028085

0: हाँ जी, बूम बूम, जब भी हम मिलते हैं गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में तो दिल बोल ही जाती है, बूम बूम। चलिए, बहुत सारे ऐसे फोन कॉल्स आ रहे हैं, लाइन पर एक श्रोता है, चलिए उनको सुनते हैं कि उनके पास क्या जवाब है। हेलो
1: हेलो, नमस्कार पूजा जी।
0: नमस्कार बसंती जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ पूजा जी।
0: नाश्ता कर लिया आपने?
1: जी कर लिया।
0: क्या खाया आपने?
1: चाय बिस्किट।
0: चाय और बिस्किट, पेट भर गया?
1: और एक टुकड़ा केक।
0: एक टुकड़ा केक, चलिए कोई बात नहीं, ये इससे तो ही सुबह सुबह यही चलता है ना, चाय के बिना नहीं चलती ये सुबह। तो चलिए, अभी हाल में हमने एक जो है प्रश्न पूछा है कि कौन सा एक जो शब्द आप बनाइए जिसका सीधा या फिर उल्टा पढ़ने पर उसका अर्थ नहीं बदलता।
1: जी, हो सकेगा जहाज।
0: हो सकेगा, फिर से बोलिए।
1: जहाज।
0: जहाज, और आपने सही जवाब दिया है बसंती जी, क्या बात है, और कहेंगे शुभ दिन आपको, भाग लेने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर।

सेवन क्यों रोक देना चाहिए? लोगों को नीम का सेवन क्यों रोक देना चाहिए? नीम तो करवाहट का जो है कर देती है। अब आप इस पहेली को आप बुझाइए कि लोगों को नीम का सेवन क्यों रोक देना चाहिए। नीम में तो करवाहट है, क्यों? इसमें तो दिमाग लगानी ही है।

0: आज का नाश्ता तो बड़े हल्ले हल्ले चल रहा है यहाँ पर, क्या बात है? बताइए मुझे, लोगों को नीम का सेवन क्यों रोक देनी चाहिए?
1: हम भी पीछे हैं,
0: हम भी तो पीछे हैं आप लोगों के। जवाब

0: चलिए हल्ले हल्ले हम तो चल रहे हैं। नाइन पर एक श्रोता है, आइए उनको सुनते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते जी, नाम तो बताइए। आपका स्वागत है गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में।
1: आपका भी स्वागत है स्टूडियो में।
0: देवी जी आपका स्वागत है। और देवी जी कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: कहाँ से जानती ही है,
0: हाईलैंड से बोल रही हैं आप। और वहाँ पर मौसम कैसा है बताइए तो?
1: सुहाना है।
0: और घर का काम हो गया आपका?
1: हो रहा है, कुछ अधूरा पर रहा है।
0: हाँ, अधूरा पर है, फिर भी गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में आप भाग ले रही हैं, क्या बात है। चलिए बताइए आपके पास क्या जवाब है?
1: तो मेरा जवाब है ताकि हम कड़वी बोली ना बोले,
0: कड़वी बोली ना बोले। चलिए ये भी एक है, पर ये सही जवाब नहीं है। करवाहट क्यों करवाहट? ये तो करवाहट ही है ना, वो नीम का पत्ता जो है वो करवाहट का जो है वो अर्थ देती है। तो इसके इसका क्या मतलब है, क्यों खाना बंद कर देना चाहिए? आजकल क्या चल रहा है? बताइए तो।
1: पता नहीं,
0: कोई बात नहीं। भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कोशिश की, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: शुभ दिन आपको भी।
1: मुझे मेरा प्यार दो।
0: पर नीम का पत्ता करवाहट को दर्शाता है। आपको मुझे बताना है कि क्यों हमें उसका सेवन बंद कर देनी चाहिए। आजकल क्या हो रहा है हमारे इर्गिर्द में।
1: जीवन नैया किनारे जरा हल्ले हल्ले चलो।
0: किसी ने कहा आईज डिफेक्ट, आंखों का ज्योति कमजोर करती है। नहीं, त्रियोले से शिमला बोल रही है। आंसर इज लॉस ऑफ टाइम। नहीं, गलत जवाब। चलिए लाइन पर एक और श्रोता है, आइए उनको सुनते हैं। हल्ले हल्ले हेलो, नमस्कार।
2: नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते आशा जी, कैसी हैं आप?
2: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बढ़िया। और आप सुनाइए, तो कितने दिनों के बाद आप ऑनलाइन आप जो है लाइन पर आई हैं, और अभी आप ले रही हैं भाग गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में।
2: हाँ जी।
0: और अभी जो सवाल, जो प्रश्न मैंने अभी हाल में पूछा है, वो हमें नीम का पत्ता क्यों, उसका सेवन जो है क्यों बंद कर देनी चाहिए।
2: लड़ाई को रोकने के लिए नीम का सेवन देना चाहिए।
0: हाँ।
2: क्योंकि क्लेश को बढ़ाता है यह नीम का, क्योंकि
0: आजकल
2: क्लेश बढ़ रहा है। और कहते हैं ना, मीठी वाणी बोलने के लिए नीम का सेवन रोक देना चाहिए।
0: मैं आपको दे ही देती हूँ, क्योंकि आपने बातों बातों में सही जवाब दे दिया। आजकल करवाहट बहुत है रिश्तों में हमारे इर्द गिर्द, इसलिए ये तो एक पहेली जैसा है, क्यों नीम का पत्ता खाना बंद कर देना चाहिए, है ना? तो आपको बधाई हो आशा जी, और मैं कहूँगी शुभ दिन आपको, और भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, और सभी श्रोताओं को पहले से ही बोल देती हूँ वेरी हैप्पी म्यूजिक डे।
0: आपको भी, आपको भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: ये हंसता हुआ कारवां जिंदगी,
0: कारवां तो अभी भी है। जुड़ रही है हमारे साथ एक और प्रश्न के लिए।

0: चलिए आप सभी के लिए एक और प्रश्न है। पियर को, ये जो फल है ना पियर, उसे हिंदी में क्या कहते हैं? चलिए बताइए 4028085 पर पियर को हिंदी में क्या कहते हैं? 4028085 पर
1: क्या बात है?

0: चलिए लाइन पर एक श्रोता है, उनको सुनते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: नमस्ते जी।
1: नमस्ते,
0: कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ।
0: आपका नाम तो बताइए।
1: मैं दीपा बोल रही हूँ कांतुगल से।
0: दीपा
1: जी,
0: दीपा जी कांतुगल से आपका स्वागत है। और आपके पास क्या जवाब है?
1: नाशपति।
0: सही जवाब दिया है और आपको कहेंगे बधाई हो। और भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी।
1: थैंक यू।
0: तो चलिए श्रोताओं, इसी के साथ हम गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं।
2: गर्मा गर्म नाश्ता।
0: तो चलिए अब हम बढ़ेंगे हमारी धरोहर कार्यक्रम की ओर और आप सभी के नाम एक भोजपुरी गीत चलाएंगे। जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिए उस सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। व्हाट्सएप के जरिए भी बहुत बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ रहिए, 9 बजे आप समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार आज की चर्चा कार्यक्रम। पूजा की ओर से आप सभी को नमस्ते। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।
3: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
4: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। जैसे कि आप सबको जानत हवा जा कि 21 जून जोन की सप्ताहांत के दौरान गिरी ई एगो विशेष दिन है। भारत में योग दिवस मनावल जला ई दिन पर। और काहे 31 जून ही आज योग जोन बा, वो भारत द्वारा यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हो गल बा। तो चलो देखी जा कि भारत यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज अमूर्त विरासत में कौन कौन अमूर्त विरासत के शामिल कर लेबा, ओके अंकित करवा लेबा। 2008 में 3 गो अलग अलग राज्य द्वारा 3 गो धरोहर शामिल करावा कर रहा, जैसे कि वैदिक चैंटिंग, रामलीला और संस्कृत थिएटर। और 2009 में यहाँ पर रिचुअल थिएटर और हिमालय के जो गढ़वाल इलाका बा ओके शामिल करा गल। 2010 में केरल के डांस ड्रामा मुदियुट्टू और राजस्थान के कलबेलिया नृत्य जो फोल्क डांस बा, फिर छाओ डांस भी। 2012 में जम्मू कश्मीर के लद्दाख इलाका में बुद्धिस्ट चैंटिंग, 2013 में मणिपुर के संकीर्तन, 2014 के पंजाब के थथेरस, 2016 में योग और नवरोज, 2017 में कुंभ मेला। योग एगो ऐसन फिलोसॉफी है जहां मन और आत्मा के संगम होवेला। दुनिया में जितना भी व्यायाम, जितना भी एग्जरसाइज बा, उ में फिजिकल एक्सरसाइज के बात करल जाला और मन के भी। ये दोनों के संगे चर्चा खाली योग में होवेला। योग एगो अनोखा, एगो यूनिक व्यायाम है जेकर में शरीर और आत्मा दोनों के एगो होवे के बात करल जाला। और यही खातिर एकर विशेषता बढ़ जाला। योग हिंदुइज्म के 6 गो फिलोसॉफी में से एगो है और योग के गुरु हवन महर्षि पतंजलि। गुरु पतंजलि गुरु और शिष्य प्रणाली के तहत योग सिखावे के शुरू कर ले रहलन। आज भी बाबा रामदेव जैसन साधु ई प्रथा के आगे ले जात हवन जा। योग भारत के एगो पुराना धरोहर है। योग के अर्थ संगम, विचार भावना और कर्म के संगम। योग के यूनेस्को लिस्ट में शामिल होइला से दुनिया भर में एके और भी विजिबिलिटी मिलता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एके बढ़ावा देवल जाता। अब जब योग के चर्चा करते ही है जा, तो सबसे खुशी के बात अब ई बा कि गल बरिस यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में दीपावली भी शामिल हो गल बा। कार्यक्रम के ध्यान से सुन लो, बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलब जा। नमस्ते।

0: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के 9 बजे हैं। आइए मिलते हैं अशिता रघु से, सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार अशिता।
2: नमस्कार वीरी दा, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। आज संसद में बजट 2026 पेश किया जाएगा, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। बढ़ती महंगाई और आर्थिक चुनौतियों के बीच सरकार से जनता को बड़े फैसलों की उम्मीद है और बजट 2026-2027 का सीधा प्रसारण आज शाम 5 बजे से MBC 1, MBC 7 और MBC Play पर आप देख पाएंगे। क्रियोल मोरिशिया में समकालीन अनुवाद MBC 2 और M1 और AM 1 पर उपलब्ध होगा, जबकि भोजपुरी अनुवाद MBC 3 और RM 3 पर प्रसारित किया जाएगा, जबकि हिंदी अनुवाद RM 2 पर होगा। शाम 7:30 बजे से MBC 1, MBC 7 और RM 1 पर एक विशेष संस्करण प्रसारित किया जाएगा। इसमें विदेश मंत्री रितेश रामफल, सांसद रोशन जमन, पूर्व गुड गवर्नेंस मंत्री महेंद्र सिरतन, ओनावो मोरिस के पैट्रिक बेलकूर तथा अर्थशास्त्री इब्राहिम मलिक बजट 2026-2027 के प्रमुख

0: की प्रतिक्रियाओं पर आधारित होगा। इसमें एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट मैन्युफैक्चरर्स के डेप्यूटी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सैमुएल मोजॉन, एसोसिएशन ऑफ सीजनल रेंटल एक्टर्स के महानिदेशक डारेन मुदली और मॉरिशस कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल फेडरेशन लिमिटेड के सीईओ सचिन सुकना तथा सतत विकास सलाहकार सुनील दाउका सिंह के साथ विचार विमर्श करेंगे। अन्य खबरों में हम बजट के सिलसिले में ही रहते हैं। मॉरिशस फाइनेंस ने सरकार से वैश्विक आर्थिक बदलावों के बीच महत्वाकांक्षी कदम उठाने की अपील की है। संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करने के लिए तीन प्रमुख प्राथमिकताएं भी सुझाई हैं। ऑल अग्रेम सैम्पियर में आजसू की एक बड़ी कार्रवाई में कथित तौर पर गांजे की खेती का एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 32 लाख रुपये से अधिक की के संदिग्ध मादक पदार्थ बरामद कर एक 40 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एबोला के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 15 मई से अब तक 875 लोग संक्रमित हुए हैं और जबकि 202 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं रूस के बारे में बात करें, रूस की राजधानी मॉस्को के आसपास बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले के बाद तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचने की खबर है। इस घटना में धुआं और काले तेल की बारिश जैसी स्थिति बनी हुई है। अंत में बढ़ते हम फुटबॉल की ओर। विश्व फुटबॉल कप के कल खेले गए मैच के स्कोर इस प्रकार है। कल रात 8 बजे चेक रिपब्लिक वर्सेस दक्षिण अफ्रीका, ये स्कोर रहा 1-1। और कल रात 11 बजे स्विट्जरलैंड ने खेला बोस्निया अर्जगोविना के खिलाफ और स्कोर रहा 4-0। आज सुबह 2 बजे खेले गए मैच ग्रुप बी में कनाडा वर्सेस कतर 6-0 कनाडा 6। और ग्रुप ए में मेक्सिको का सामना हुआ दक्षिण कोरिया के साथ और मेक्सिको के लिए गोल डाला लुई रोमो ने, यानी कि स्कोर रहा 1-0। आज रात आपको हम याद दिला देते हैं, ग्रुप डी में रात 11 बजे यूएसए खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो।

0: आज की चर्चा।
1: सभी श्रोताओं को एक बार फिर से विविधता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज की चर्चा कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं। जहां श्रोताओं, हमारा जो कार्यक्रम है, अगर इसमें आप भाग लेना चाहते हैं तो नंबर है 4028085, इस पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। बाद में आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने जो पिछले हफ्ते जो शीर्षक रखा था, हमने के जो नाम बा द यूज ऑफ नेम, हम उसी शीर्षक के साथ आज हमने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कार्यक्रम आप MBC TV 3 पर लाइव देख रहे हैं, साथ में हमारा जो प्रोग्राम है वो फेसबुक पर भी लाइव है और रेडियो मनोरंजन पर यही कार्यक्रम आप शाम के 3 बजे सुन पाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ समय हो गया है आज के हमारे जो मेहमान हैं उनसे मिलने का और उनके साथ हमारा जो आज का विषय है उसको आगे बढ़ाने का। तो चलिए हम लोग मिलकर स्वागत करते हैं कपिल देव रघुनंदन जी का, जो हमारे वकील हैं, हमारे आज के कार्यक्रम में हमारे मेहमान।
2: नमस्ते
1: जी, कैसे वा समाचार?
2: सब भगवान की कृपा से।
1: हाँ, बाहर के मौसम जन बात अनिकुन हमने की जन सेहत बाकर पर असर करता, लेकिन हमने की जन कार्यक्रम बा, इतना गर्म कार्यक्रम बा कि सबके जन तबियत बा ठीक हो जाए कर सके। कहे कि ढेर कोई के पास ऐसा ऐसा सवाल रहेला जेकर जवाब लोग के कहूँ नहीं मिलेला। हमने की एगो ऐसा कार्यक्रम लेकर आयला जा यहाँ पर, जहाँ पर वो लोग जब हमने के कार्यक्रम सुने लन जा तो कहीं ना कहीं किसी पर उम्मीद के एगो जन किरण बा लोग के जरूर मिलेला।
2: हमने के कैसे दिखेला तीन कार हमने के भाई बहन लोग जो हमने के रास्ता में ज्वाइन कर लन सन, बोले लन सन कि ये छोटा छोटा चीज जो बोले से वो कोसे ही नहीं अदेला सर,
1: फिर कोई नहीं जाने ला।
2: हाँ, और लोग के बहुत मजे, लोग के मजे कर कपार कर बुद्धि खोल लेला कि ये ऐसा ऐसा नहीं करे। और एगो बोली कि कैसे एगो है, एगो मैडम है गल है नोतिर हिया, बोले हुआ गल, बोले भैया जाने ला हम का सीए कर ली, हम ही तो नहीं जानत हई, हमके खाली बोलन सन हिया एगो सिया चिया डाल दे कौन ची लिखल बा उमे है के। तो अब का उमेल उमे पढ़लक कि देखलक कि ओकर घर वे बेच देलक। तो हमने आनब सब पितार पोगाम देखे के चाहला बहुत लिमन से कोनो चीज कर बस समझला नहीं,

0: कोई से पूछा कि का लिखल बा ऊ में ताकि सीए कर बा।
1: कबो भी कुछ सीए कर बा, कबो भी कोनो कुछ सीए करे से आगे जरा पहला तोहरा तोहर कागज देखे के कर में लिखल को छिपा।
0: हाँ जी।
1: तो आज के जो हमने के शीर्षक बा हमने जैसे द यूज ऑफ नेम हमने के जो नाम बा पिछला हफ्ता हमने एक पर बात कर रही जा वकील जी और एगो छोटा कुन रिकाप कर देला जा।
0: अरे हाँ, पहला हमने देखत ले सके हमने कि एगो नाम कौन चीज है, जैसे बोले सब आदमी के एगो एकदम चीते होला ताकि ऊ नमो से जानेला भगवाने की पूजा करबत हो करता नाम धर ले के चाहे तो इंसान के काकू मजे। तो हमने देखी ना सा एगो नाम सिग्निफाई करेला एगो आदमी के ओकर पिताशु ये कौन कालिते अजमे है, जैसे देख ले रही से ना एगो छित कोई के मिलेला क्यूसी हो एससी हो कि बड़का बड़का नाम फिक जैसे मैंने बोले सर एगो चीत ओके मिले बा ये रे ओसे ओकर वलेरुए ओमे नहीं बा मैं ओ का करेला रे ओसे करेला ओ आदमिया के नाम और ओकर पिता छु एगो आदमिया के नहीं सकबा बोले ओकर एति नमो बोलबा तब न ओके आई। जैसे कि हमने बोलतली सा होला एगो अबुका हो एगो डॉक्टर हो एगो प्राइम मिनिस्टर हो मैं ये ओ लोग के आदमी बोला कौन डॉक्टर है कौन अबुका के बड़ा थे ये तो कौन प्रीमियर मिनिस्टर की मैं ये देखिला सर वो आके वो करकुमा जे है नमुआ वो के पहचान करेला कि वो आदमिया के आले। तो अब देख ले रही सर हमने के एगो नाम काहे चाहेला है। हाँ, एगो नाम एगो कुमा जे एगो है कुमा एगो एगो दुआ एडमिनिस्ट्रेटिव है। एडमिनिस्ट्रेटिव एगो कॉम्बिने करेला जोड़ेला दूगो एलिमेंट से जैसे देख ले रही सर एगो नाम सियनो जैसे बोला सा और एगो प्रेनो। तो है दूगोवा चीजवा बड़ी चीज एपोत हाँ जो एदम चिफिए करेला एगो दुआ सिविल एगो आदमी के हर आदमी के चाहेला एगो प्रेनो आर एगो सियनो तब ओके जन्म वो आदमिया के है। तो ये हमने के देख ले रही सर पोतंस कौन चीज हर नाम के हर इंसान के चाहेला कहूँ जैब कोनो पापी रही फॉर्म भरे के चाहेला चारों बगल देखल जाए तोहर नाम का है। नाम नहीं रही तो आदमी बोले ये कैसे नहीं दिखला रहे कर ले हुए माँ बाप नहीं दिखला रहे कर ले बात तू के को नाम नहीं दे ले बा अभी तो हम आप सब पितार आग देने सांस में कैसे सुसंजू चाहेला चाहना दिखला रहे कर दे के को लड़का के मैं अब एगो नाम के इम्पोर्टेंस दुनिया में जैब नाम नहीं रही तो कुछ नहीं सकब करे कैसे एगो पासपोर्ट सकब निकाले तोरा मन हो जाए के कैसे जैब एगो हई में एगो हई खते दाँचीते हई निकाले यहाँ तक नमो नहीं बा लाग देने सांस नहीं बा मैं नाम बड़ी बड़ी एगो चीज तीन कार्ड हमने जाने सब भाई लोग बहन लोग कैसे लड़का होला तो उजाला दिखला रे करे ले
1: माँ बाप नहीं रही तो लड़का कैसे कैसे चाचा कोई रही उसके दिखला रे करे और कौन नाम से दिखला करे करी जगह जा कैसे करी जा। तो आज के हमने के जो विषय बा एकर पर जब हमने आगे बढ़ब जा एगो रिकाप तो होगा हमने के।
0: हाँ जी
1: होगा हमने के रिकाप तो चला अभी जोन बा बतियाब जा हमने पिछले हफ्ते बतिया तली जा लेकिन समय ने रहल कार्यक्रम जोन रहल हमने के परल रोके के कहे कि हमने के पास समय उतना नहीं रहल। तो अभी जोन बा हवे कार्यक्रम में अब हमने बात करब जा अब जोन हमने के विषय बा एकर में आगे कौन कौन कौन सीजे
0: अरे पहला चीज हमने देखे सर आज है के लिए कैसे एगो है मैडम जब शादी करेला तो कैसे ओके एगो नाम सियनो मिलेला। एक बार मामसिल रही था तो कर मामसिल के नाम कर माँ बाप के नमो सा सिर्वी करी ना तो अब शादी कर ले बा आलू जोन दिन पहला चीज एगो है मादाम या मिशे ओके मन बा शादी करे की तो के जाई के चाहा लेता सिविल
1: हाँ।
0: लेता सिविल में तो हूँ मजे सदिया के कुमा जे फोमालिती हुआ भरे के चाहेला वही दिन हुआ ओके सुते करे के चाहेला को नाम से शादी के बाद वो आदमिया जनाई।
1: तो हमने जहाँ तक जानी ला जाए एगो महिला जब एगो छोकरी शादी करेला तब हमेशा अपन जो मेडन नेम बा ओके छोड़ के तब अपन पति के नाम अपनावेला ना
0: ई सुनी ला सर।
1: हाँ ई जहाँ तक हमने जानी ला जाए कि एगो छोकरा छोकरी शादी करे था तो जब छोकरिया शादी कर लेला तो जब ओकर शादी होगा तब ओकर जरा दूसर कच दर्शन निकाले के न मिसेज के तो जब देवा निकाली तो ओकर में ओकर पति के नाम रहला।
0: हाँ जी
1: ना
0: अली ई एगो एक्सेप्शन
1: ई हमने जानी ला
0: नहीं अभी एक बार हाँ ये नॉर्मल

0: सब कोई जाने रहा है आली तो पहला चीज है जब एगो मैडम शादी करेला तो ओकर नाम लेवेला ओकर मिस सेवा के पति के नाम लेवेला जब शादी करेला सिबोजो सिविल कुमार जे पहला ऊ जाला ऊ दिनवा बोलेला कि जानेला हमर मिशे के नाम ऐतेल है हम चाहत हैं हमर मिशेवा के नाम से कुमार जे हमर सियनो जाने के पहले तो कर नाम रखे हौ समय में बोतली सा तो हर नाम है कब शादी कर ले रहा तब स्वाजगी कर ले तो हर पति के नाम अब तब सूचित हुआ कि अरे काहे नहीं हम आईला अपन है राम खिलावन के कुमार जे हई में अपन नाम अपन बाप के नाम अब तू ने करबा ई तारे लभी देख जीवोस के विषय तो हिया कब गईला शादी करे तो हुआ लेता सिविल के ऑफिस सेवा के तोरा जनाई के चाहेला कि देखा हम चाहत हैं हमर मिशे के सियनो हमर में आज से हम के जाने के
1: हाँ, यानी कि जब गैला शादी के अप्लाई करे एप्लीकेशन कर बस शादी के अभी तो जब दोनों जना गैलन सा तो छोड़िया के जाना बोले के कि हम जब शादी कर लेवा तब अपन पति के नाम से हम चाहते हैं कि हम के सब कोई जनियन जा
0: हाँ,
1: यानी कि वो अपन सिनाचा छोड़ा था
0: हाँ,
1: अपन पति के सिनाचा अपना था हाँ,
0: अले एक है
1: एक
0: दूसरा हुआ सकी जाके लेता सिविलवा के बोले देख हम के नई मन बा हमर मिशे के नाम सियनो लेके हम चाहत हैं अपने नाम रखब समझला ना नाम कैसे थरवा तो नमो बोलवा थे हर भगत हाँ। नाम रहल मामजिल के काम खिलावन तो बोले हम शिवा के नमो नहीं चाहते हैं हम ओकर सियनो नहीं हमरे जोन बा हमर लाग देने सांस में हम चाहत हैं औसने लेके हमके मन नहीं बा कि हमर मिशे के ओकर कुमाजिया नाम है डाले के हमर नाम संगे और सकेला ओ मिशेवा कब जाय हुआ कब उपमा जे डिक्लारी करे कुमा जे सदिया के ऑफिस में तब पूछे ना ओकरो से पूछेला कुंज लेता सिविल के ऑफिस हुआ का करबे तू बोले अब ओकर इच्छा हो ओकर कुमा जे विश हो तो सकी बोले जानेला हमर मैडमवा के नाम है बांसी बुजो काम खिलावन हम चाहते हैं हमर नाम ओकर नाम में भी जोड़े के अब देखला का होल उ जनाई मिशेवा मदमुआ के नमुआ से एक बार आदमी नहीं जानेला लेता सिविल के कानून लिखल है तो देखला हिया सकी मिशेवा के नाम ले सकी मिशेवा के नाम नहीं ले सकी मिशेवा मदमुआ के नाम में आजूते करे
1: अच्छा अपन नाम में आजूते करे
0: हाँ आजूते करे कैसे तुम आगाम खिलावो न से बुझो माफ करियो जैसे हमने शादी कर लें तो हमर नाम रघुनंदन तो हम बोला हमर नाम चाहते तोहर नाम में तो तोहर नाम हमर नाम अब से रही रघुनंदन मजे से जाया राम खिलावन तब रघुनंदन नहीं ही खाली सिर्फ रघुनंदन देखेला ये एगो बड़ी एपोत है आली ये हमने जैसे बोली ला सकी ओकर नाम जो आगे रहल जैसे कैसे बोलते हैं राम खिलावन के ये चिलीजे करे जैसे ओके मन हुई जैसे मजे तुरा मन हुई वही नमुआ रखे के बोले हम नहीं सौसे करब तो लिखता सिविलवा हुआ है लिखेला कि ये आदमिया ओके मन नहीं बात सौसे करे के अपने नाम ई कानून देवेला हक ओकरे नाम रहे के एगो बड़ा चीज असर भी अच्छा रहल अपने नमुआ रहल तो देखत मिशेवा के नमुआ से बुझो साउंड नहीं करता लिमन से तब बता ए नहीं हमारा नाम तो बड़ी जोली रहल या एक बार अभी तारे देखब सर एक बार आदमी नहीं एगो इम्पोर्टेंट चीज है कोनो अपन आदमी अपन नाम तो ओकर लिए बड़ा बहुत बड़ा चीज है
1: देखो अपन नाम से एगो बड़ कैसे बोला बहुत बड़ा काम कर देवे लन जा और सब कोई उही नाम से लोग के जाने ला
0: अभी तारे ला सर
1: सौसे कर देबा नमुआ
0: जब एगो पति पत्नी शादी कर ले बा सिबुजो ओकर नाम रहल है मिशेवा के नाम में दिखलारे कर कब सदिया रहल मदमुआ कब मिशेवा मर जाला मिशेवा मर जाला तो मदमुआ सकी उही नमुआ रखे ओकर पति के नहीं रे तू ने होवेला ओकर होई ई जे ओके चाही त समझल ना तो सविजर नमुआ रखी अनमन मेम की पतिया है मर गल बा कुछ नहीं साझे करी ओकर नमुए ओके रखी मिसिल उरम नमुआ रखी पति पतिया के तब लेक नई से गे शादी करी गे मागिए जैसे हमने बोलना चाह जब शादी करी तब तब हुआ सांस में हो जाए ना तो अलग वेव जैसे हमने बोला सर जो वेव रही तब कुमा जया तो ओके मन बा नमुआ रखे के हमेशा के तब लेक मर जाए तो उसकी नमुआ रखे ओकर पतिया के नमुआ जो कब गरल शादी करे ओकर नाम में दिखला रे करे लो सदिया
1: अच्छा, यानी कि अजय पति के देहांत हो गल बा तो हो जन अजय पत्नीवा जन बा वो चाहे तो अपन पति के नाम सकी रखे
0: जरूर। हाँ, और कोई नहीं सकी हम पैसे करे। अरे दिखा कितना मजे ए पोता हो जाना है। अभी गोदमी के कब हो गल तारल

0: कब सलाक देने सौंस अब यहाँ ओके कुमा जे मिल गल ओकर नमुआ में ओके कुछ की तरह का नहीं बा वही नमुआ से ओके जानल करी चाहा ओके रही जैसी तरलवा बोल सिपोजो ओकर नाम ओ सौंजे नहीं कर रहल ममजिल के नाम ले ले रहल कब हुआ गरहल ओ आदमिया सकी एगो दुखतेर एगो बोली के हुई तो ओ एगो दुखतेर कब रही तो सब कोई ओके जाने ओ नमुआ से दुखतेर एतिल तो ओ सकी नहीं सौंजे करे बोली काहे ओकर प्रोफेशन से सब आदमी जानेला ओ नमुआ दुखते रो
1: के दुखते लोग के ज्यादातर जब बतियाई ला जाता सब के लोग के सियानो जस्ती रेवे लंजा
0: हां तो देखला हां अरे नो सियानो से ओके ज्यादा जाने अंसन में तीन कार तक जाला तो ओके बोलेला दुखते कैसे वकील ओके त नहीं बोले ओकर नमुआ तो बोलेला हई अब का कैसे बोला छ वकील तू का बोलत हो समझ लो कि नमुआ नहीं ली मैं ओकर नमुआ से ज्यादा जाने लंसन अब एगो लइका के ओकर माँ बा ओके ओकर पतिया के अब जीवोश हो गल अब ओके मन बार ओ नमुआ रखे के हाँ बिचारे देख जीवोश के बाद ओ भी सकी रखे सकी तो नहीं साझे करे पशु ओकर लइको के ओ नमुआ से जानल जाए अभी कोई तो बड़का एगो आदमी जो बड़का पोस्ट करा था मॉरिशस में भर दुनिया में सबको योग जाने ला तो नहीं बचा क्योंकि मन साझे करे कि ना पशु हाँ पत्नी रहल ऐतिल के समझ ले अब ओकर मजे ओकर वाले एगो अतासे होला ओकर कमुआ से ये ओकर नाम हो तो ओकर नाम से जनाई सब आदमी के जानी पहचान हुई ओ नमुआ से तो उतर नहीं जाके साझे करी ना वो चाहे कि वही नमुआ रखी आली ये तो बड़ी अच्छा बा जब एगो मा एगो मैडम बा ओके मन बा हई रखी के ओकर हई नमुआ मेम की जीवोश ओकर बूढ़ा के नमुआ कोई नहीं सकी पैसे करे और ओके जीवोश मिलल होई रिप्चियो दे ला वी कोमिन ये एगो रिप्चियो दे ला वी कोमिन हो मतलब ये तीन बरिस से कुमा जब से पारे हो गल रलनसन शादी तब जीवोश देल बा रिप्चियो दे ला वी कोमिन हमने के दिख सक जीवोश आप सब तब दूसर दूसर रीजन बा जीवोश जीवोश पैसे एगो आदमी के मिले ला फुट में जीवोश में मिले ला दोनों हई मजा म्यूचुअल हई के मजा अग्रीमेंट में एक मजा हई कर दे रलनसन कभी दिस ऑन सेपरेशन कभी सिंक ऑन सेपरेशन तो उस सब आदमी के लोग के मिले ला जीवोश तो हियां जब एगो जीवोश प्रोनोंसे होलबा लाकुर में रिप्चियो दे ला वी कोमिन तीन बरी से सेपारे होलबा ओ आदमीया सकी ओ नमुआ रखे जो नोकर मिशे हुए के रहल
1: अब आजे म्यूचुअल हो गल त
0: हाँ जी नहीं जी म्यूचुअल होल था अब तू दीपा कैसे ही करता ना नहीं ओके मन बा उन नमुआ रखे के जो रहल की कुमा जो ओकर पति के कोई नहीं सके ओके यहाँ पे से करे
1: अच्छा एक बारे में बतिया ले जाए एगो एगो कॉलर पकड़ से मिले ला जा हेलो
2: हेलो हेलो नमस्कार जी
1: नमस्कार जी आपका नाम
2: वेदिका जी नमस्कार मैं ध्यानी हूँ
1: हाँ जी ध्यानी जी बताइए कैसे हैं
2: परिस्थर जी आपको भी नमस्कार
0: आपको भी भैया
2: और आपको बहुत धन्यवाद परिस्थर जी एक प्रश्न आ रहा है मेरे दिमाग में
0: बोले
2: आप बोल रहे हैं जैसे बोल रहे हैं नाम के बारे में पहले जैसा अब मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ ये बंटवारा के बारे में ये क्या होगा अगर जीविया के बंटवारा होगा या किसी विषय पर भी तो ये कैसे होगा क्योंकि पहले जैसे शैंचय के नाम पर पत्नी जब विवाह कर लेती थी तो पति के नाम पर ये जीविया के बारे में क्या होगा
1: देखो अगर अगर हाँ मैं समझ रही हूँ मैं समझ रही हूँ आपकी बात मैं समझ रही हूँ आपकी बात तो अभी बोले ई बोले खोजत हमन कि मान ला एगो पत्नी शादी कर लन और अपन नाम जुनबा उ सौजे नहीं कर लन होवे नाम पर हवन अब पत्नी पति पत्नी संगे हवन जा सब कुछ संगे हवन जा मान ला काल पति के कुछ हो गल तब पत्नीवा जुनबा होकर सिनाचे पति के नाम पर नहीं बा
0: सिर्फ
1: हाँ
0: जैसे देख नहीं बोल देना हाँ ओकर लाख मयास यहाँ तो शादी कर ले बा सिविल हाँ हमने तो सबको ही जाने ला सा मयास सिविल वही रिकोनेट करेला कि एगो पति पत्नी होवन सन और दूसरा नहीं बा मयास गलीजिए हमने की तरह गलीजो नहीं बा हमने के कुमा रिकोनेट नहीं होगा हमने के कानून में तो हियाँ मेम की कुमा जे ओकर मिशेवा के नाम नहीं बा ओकर हई लाख देने सौसवा में और हियाँ मिशेवा सिबोजों गुजर गल बा अब एगो पताश करे खोजत हवन सन हाँ तो हियाँ मडमुआ रख ले रल ओकर मामजिल के नमोए तरलवा देख ले से ना जब एगो आदमी शादी करेला वो मडमुआ ओके मन नहीं बा मिशेवा के नाम लेके तो हियाँ रख ले बा ओकर अपने नमुआ में जब शादी कर लेला कपताज के विषय आई तो सैफ वो में तो मंगल जला लगते ने सांस कहाँ बा

0: जब लाफिदाविद दे सुक्सेशन करल जाला ते ही मांगल जाला सब जिगुचे के हो ते हम सब कोई त जैसे जानी ला सर जब पति मर गल त पत्नी आते गो पारवो के मिलबे करी और ओकर लड़का होई त ओकर लड़का के भी मिली संगे ते हिया दिखल कब लाग देने संसवा कब दिखलन सन त हुआ कब लाफिदाविदवा करी त बोली ना ओकर नमवा से भोसों ओकर वेदिता एतिल बाकु मजे ओकर नमवा तो ई ओकर जिगुचे गिरेला बड़का चीज नहीं खेली बस की दुआ लकेला उही नमुआ में ओके कुमाजिया रखी जो नुकर मामजिल के रहल मैं लेता सिविल के देखी ओकर लाग देने सांस लाख मोयास लाख देने सांस में तो भूल जा यहाँ देखी ना लाख मोयास तो हर चीज जोन अरे गो चीज भैया ये बोलते हो अंसन बोल दे से कुछ छोटा चीज जब एगो भाई शादी करेला उ नमुआ बा उखर कुमा जब ममजिलवा के या मिशेवा के कब ओके शादी करेला उसका शादी करी कोगे भी है या शादी करी सेपारेशन जी भी है जब मर जाला है पतिया या पत्निया जो कर धन दौलत हुई तो है ओके ओकर मादाम के मिलेला और मिशे के मिले तैया और मेम की सेपारेशन जी भी है एक बार भाई सोचेला हमने आप सब शादी के बाद जीवोस में कैसे पता चल जाला जब एगो आदमी शादी करेला मैम कि सेपारेशन जी भी है एक नाम कोमिनोते ते भी है कब शादी करेला सेपारेशन जी भी है जब मर जाला तो छोड़ के जाला के मिशेवा छोड़ के जाला उकर पत्नी के ना तो कर पत्नी तो कर जगीची है सब धन दौलत ई कुमा जे एगो कन्वीनियंस नियर है कि शादी कर लेबा सेपारेशन जी भी है नहीं सोचिए कि नहीं मिली जे नहीं लड़का रही सब उकरे मिली और जे लड़का मिली तो लड़का हुई तो बाँटल जला एक पार मदमुआ के मिली और हर लड़क वालों के एक एक पार मिली
1: बहुत बढ़िया चला भाई जी की जवाब मिल गल हुई और कोनो कॉल बा नहीं कोई नहीं बा कोई बात नहीं हमने के छोटा लोग सके हमने के फ़ोन करें 4020-8085 पर और चल एक साथ हमने आगे बढ़ब जा अब हमने के जो कार्यक्रम बाय कर में अभी हमने बतिया तली जाना कि कैसे एगो नाम जुन बा हम कौती दौची थे कैसे एगो पत्नी सके अपन अपन पति के नाम नहीं ले
0: हाँ जी
1: तो अभी पत्नी पति के बात करत है जा अब लड़का लोग के बात करी ला जा हमने के जो लड़का लोग बा मान ला माता जी जोन हवन एक मिनट है तो हाँ माता जी हवन वो पति के नाम नहीं ले ले हवन उनका नाम एक सा पति जोन बाव का नाम वाई है हम दोनों शादी कर ले हवन सा लड़का और बा अब लड़का के का नाम ले
0: हाँ लड़का हमेशा दिखलारे हुए लम के कानून में बगल बाप के नाम एक दिखले ली सर दूसरा जब बापुआ नई गल बात दिखलारे करे है है के ओकर ओकर लड़का है ओकर नाम हो लड़कवा के कभी नहीं जाला एक बार बाप मैं सिलमा का मऊआ गल हुई दिखलारे करे तो वहाँ लेता सिविलिया में पूछी ना बापुआ के है तो बोली ऐतिल ओकर बाप ऐतिल तो वहाँ डाली ओकर बाप मैं दिखलाशों होल बा मऊआ बगल से मैं बपुआ के नमुआ तो वहाँ लेबे करी और यहाँ तेल तो पूछे ना लेता सिविलिया के ऑफिस से वहाँ तो शादी कर लेबे कहाँ तो लाख मोयाज बा तो उतर ले जाइबे करी बस कि कब एगो लड़का नहीं हुएला या एगो आदमी गुजर भी जला तो चाहे ला कोई लाख मोयाज या लाख देने सौते जाए कि कहते दौची थे उस सब तो वहाँ बोली ना तो बोली हाँ ओकर बाप यहाँ शादी कर लेबे सिविल हाँ तो ओकर बपुए के नाम ले कानून हमने के जोन बा है कुछ सिविल मोशियाँ लिखल बा फ्रांसे में और हमने गुवेरने हो सर लालुआ फ्रांसे में वहाँ जहाँ बोलेला कुछ सिविल एलेता सिविल के कब सिविल से चस आदमी से हमने वैसा बोलेला एगो लड़का हमेशा दिखला रे होला अपन बाप के नाम में
1: अच्छा एक और कॉल बा ले राजा हेलो
2: हेलो विनीता जी नमस्ते
1: नमस्ते जी आपका नाम
2: मैं इंदिरा हूँ हम इंदिरा हैं
1: हाँ जी इंदिरा जी
0: नमस्ते नमस्ते
2: कपिल चाके भी नमस्ते
0: नमस्ते
2: हमारे को क्वेश्चन बात पूछे कि मैं जाना था कैसे रिपोर्ट दे पाऊँ
0: ना ही बोले
2: एगो कॉम्पमा मनाइबा तब कितना पेस आते हैं तुहर वाजन से चाहे छोड़ेगी
0: नहीं एगो कॉम्पमा के विषय बहुत चीज हमें हम बोली ना तुहरा कैसे माफ करिए हमारे तो एगो कॉम्पमा तो हमने जाने से कर कदन हुआ कैसे गुवेना जाने ला कभी एगो कॉम्पमा लेबा कोनो कॉम्पमा जोड़ल बा एगो दूगो तीन गो सब आ, आ, संगे बा एगो चीज है तब देखब नहीं सकब सही कुमार जे है ऊ कॉप मऊआ ओके कुमार जे को डिस्टेंस छोड़े बस ओकर मिराई के सट के बनावल जला एक दूसरा अब तुहर एगो कुमार जे बा एक जगह तुहरा मन बा हुआ एगो कॉप मऊ बनाए के जैसे हमने के कानून

0: बोलेला हमेशा दुगो आदमी का बेगो वाजन रहेला तो चाहेला तीन पीर छोड़ के मिशेवा बगल या हो बगल को मजे हो मदमुआ बगल
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बस ये तीन तीन पीर चाहेला छोड़ के तब बिछुआ में मिरयुआ होला तो जहाँ मतलब कि जहाँ मिरयुआ बा हुआ से छोड़ के तू भीतरे बनाई के तोरा चाहेला तीन पीर छोड़े के अनमन कंपमा के सब रही मिसलमा कंपमा जोड़ेला तब तब तब मिरयुए में बनावेला तब कुछ है नहीं बा
1: चला ये तो हमने विषय से बाहर रहा लेकिन फिर भी जवाब दे देना बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपन जो सब्जेक्ट बा एकर में आगे बढ़ जा
0: अली अब हमने बात तक कर दिली सर नाम नो शो सब बोल ली सर शादी कब हो जाला कैसे नाम समझेला जीवो सो जाला कैसे बे हमने देखब सर अभी बर्थ सर्टिफिकेट आग दे निशंस ये काहे हमने बताई सर ये तो नमो में आई
1: समझे
0: हाँ हमने देखा था एगो आग दे निशंस ये एगो आग दे निशंस बर्थ सर्टिफिकेट कौन ची है एक लोग सैंप सैंप कौन से ही कुमार जी बड़ी कभी इम्पोर्टेंट ये एगो डॉक्यूमेंट ऑफिशियल है जो आवेला हर सिटुआयन के वो जब नहीं होवेला ओकर नाम में आवेला
1: ओकर नाम आवेला हाँ। माँ बाप के नाम आवेला कौन समय में पैदा होलो अंजा कहाँ पैदा होलो अंजा लोपिताल में पैदा होलो अंजा कोनो गांव में घर में पैदा होलो अंजा जितना कोई और एक में विटनेस भी रहला
0: हाँ विटनेस भी रहला कब जब जाके लड़का के डिक्लेरे करे के चताहले गुते मो मैं हम देखते हैं इक मौत उली मन से कर दिवा देख ले ले कोई वो तो लग देने सांस हाँ लग देने सांस देख ले रहा कौन सी बाहु में तो हमने देख ला सा एगो आग देने सांस ये गवर्नमेंट बगल से मिलेला गवर्नमेंट बगल से मिलेला मिला जो सेक्शन है एक मजा रिस्पॉन्सिबल वो लेता सिविल है मैं बगल गवर्नमेंट बगल से है मिलेला ये एगो लेता है है लेता सिविल इशू करेला एगो को मजा लाग दे नेसेंस अरे आग दे नेसेंस जैसे बोल रहा बहुत सा इंफॉर्मेशन ओकर में मिलेला जैसे हमने से बोला है कंटेनी ओकर इंफॉर्मेशन बहुत सा एगो आदमी के जैसे कि पहला चीज बढ़ब एगो लाग देने सांस तो जनब वो आदमिया के एदा चीते का एगो बस सब देताई बा जैसे बोल ओकर पहनो रही ओकर नाम रही ओकर दात रही कब ने से प्लास कहाँ ने होल बा
1: पिटारा कई बजे
0: हाँ सब बा सब। हमने हमने आ आले एगो बोली कि तू तोरा मन बा शादी करे के एक मिनट की शादी नहीं कर लियो एगो शादी करे खोजत हुआ तो लाग देने संसवा से जान जाइबा वो पैदा ही कहाँ होल बा मॉरिशस में कि या दूसरे देश में उसकी की देखे में तरी वो तो अनमन मॉरिशिया लोग था मैं यहाँ कब ओकर लाग देने सांस देखा था तो देखा था कि नहीं सिर्फ उसे इंडिया से बा सिर्फ अकमा जंगली तेर हो या कुछ भी हुई ओकर लाग देने सांस से जान जाइब सिर्फ ही नहीं ओकर सेक्स जनब मेल है फीमेल है कौन सी है मैडम है या मिशे है बस वो में तो हुआ सब लिखा बा जैसे तू तब बोल देला ओकर नाम उम पहला चीज दूसरा को रेदा चीते के नाम जैसे देख ले रही सर एगो लड़का के मिले ला नाम ओकर बाप के तो यहाँ जान जाइब ओकर कब ओकर बपुआ के दिखला रे रहल तो ओकरो नाम गन जान ले ला कौन परिवार से वो आल बा बस एक बान आदमी तो इमें बहुत
1: ओकर में ई भी लिख रहा ना कि कौन काम करे ला
0: हाँ ई बोल ना मैं जाने ला बहुत सा परिवार बा वो देखे ला ई लड़कुआ की कर लड़का एक बान आदमी तो जाला अपन लड़का के शादी करे खोज ओकर परिवार के देखल करे ओकर नामे कौन काने को लव यू कौन मुआ ई के कर से मर लड़का देवत है बाप शादी करे के कौन परिवार से आवता तो हिया देख ल पहला चीज ओकर नमुआ से देख ले लग जान गल कौन आदमिया है आर जैसे बोला ओकर एगो दात देख कुमा जे देखलाशों कई बजे देखला रे हो रहा कई बजे कुमा जे ऊ नहीं हो रहा मैं सबसे और एगो एपो चीज एपोता एगो सर्टिफिकेट नंबर मिले लाओके कब सीजीएम पास हुई तो सिर्फ खाली थोड़ा नहीं मिला यहाँ आर पहला सर्टिफिकेट तुरा मिला था यहाँ जब तू कुमा जा वो लड़का देख तू देख ला रे हो लोग एगो सर्टिफिकेट नंबर डाले ला सिर्फ बोझ कट सी सैंक सिवा कुछ भी हुई तो वो देख ला एगो उन्नी में हुआ तुहरा कुमा जा बड़ी है पोत है वो चले ला जहाँ तू जाइब तो यहाँ देख ला सब चीज देख ला राश आज ओकर खिस्सा ओकर माँ बाप परिवार उठ के सब जाफे एगो लाग देने सांस उमे से कुमा है बोलेला वो आदमी कौन है खाली एगो लाग देने सांस कितना लंगाज में लिखल जाला
1: हमने तो जाइना सा उंगले में या फ्रांसे में उंगले में
0: हाँ तो मॉरिशस में पहले लिखत रहन सन सिपोज उंगले में अभी मॉरिशस के लाग देने सांस या जइब निकाले एगो नया तब तो देखब उंगले और फांसे में बा

0: पसीका है ये गुक मजे अबदमी के नहीं देवेला कुमा जे है इतरा का कि दूसर देश में अप्लीकेशन कब कर लग तसे बुजुन लिख दे ले भाई फ्रांसे में अब हुआ अंग्ले के एक मजे है करता तो एक चाइना के एक मजे ट्रांसलेट करे के भेजे के नहीं अब का हुएला ऑफिशियल लेटा सिविल देवेला एगो है लाग दे नेसांस जोन बा अंग्ले और फ्रांसे में बोलते हैं सही में लाग दे नेसांस में कुछ छोटा चीज बोल दे जाने ला अभी तोरा कोई कुमाजे चाहेला तोर एगो खत ए दं चीते कुमाजे है निकाली के तने पहिले त जातली स चाहेला कुमाजे एगो पपीवा मिली के न खत ए दं चीते वा के कुमाजे तब न तोर खत वा मिली सब मैं अब सब अब जब तोरा देवेला एगो लाग देने सांस लइको ए कैसे जन्म ले लेबा भूल ना भी अभी त कुमाजे कितना बरिस नहीं होल बा जिस बीता नहीं होल बा मासे कैसे ने होलबा अभी के लिए लेता सिविल दे तोरा एगो सर्टिफिका आग दे नेसांस जोन में अंगले बा फ्रांसे बा और तोहर आईडी नंबर उमे बा
1: लैकवा के
0: ना लैकवा के हर आदमी जोन इंसान अब ने होला उही बखतवा ओके कुमा जे एगो कहते दां चीते के नंबर मिलेला खाली खाल देख लिया अब
1: तू दर पर देखे के
0: देख हां देख लिया जो जो निगो निकलवा गो नया तो देखबा उमे बा कुमा जे सब बा है है दिलेबा आ जैसे बोली ना लिखल बा अंग्ले या फ्रांसे में और ये हमने देखिला स कि लेता सिविल में हर आदमी के कब ने हुए लंसन ते एगो रजिस्ट्री बा एगो पा है बा रजिस्ट ओ रजिस्ट्रोआ में लिखल बा सब डिटाई उ लोग रखे लंसन सब दोने एगो रिकॉर्ड उ है में इंपोर्टेंट है आलू तो हुआ एगो लड़का जैसे देख ले रही सर चाहे ला 60 जू के आगे 60 जू तक मिले ला मैं 60 जू के आगे ओके डिक्लेयरी कर दे के जाए के चाहे ला लेता सिविल एक बार आदमी का करेला वक्त नहीं मिले ला ओके नहीं गल बा कोनो तक कुमा जो आज ऐसा करेला कि कुमा जो के नहीं जान ले बाबू लड़को आके छोड़ दिल भाई मैं रजिस्ट्री करे कि एगो लड़का एगो नाम ऑफिशियल कुमा जो है जाए के लेता सिविल में दिखलारे करे क्योंकि दिखलाशो है करे नाम तो चाहे ला 60 जू में कुमा जे आगे पहले रहल कावन सैंक तो अब कुमा जे एक बार देखे लन सन आदमी के कुमा वर्क कुक नहीं मिलो या जाने का है लेता सिविल ऊ जाने गुवेन में जाने का है मिसिल में 60 जू के कुमा जे तोरा देवेला जाके हुआ लेता सिविल में डिक्लेयर करे के ऊ कुमा जे लइकवा कब कुमा जे
1: तो एगो लइका मान ले एगो लइका मिलल बा कोई के कहूं पर जंगल में फेंकल या कहूं पर एगो लड़का फेंकने लड़का बा अपने जाने से कहाँ पैदा होल बा ओकर माँ बाप के बा लड़का हुआ कैसे गल तो वो लड़का के लेके जयन से के एगो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेला
0: हाँ जैसे देख ली ना जब एगो लड़का नहीं हो रहा बोल जैसे बोतली मको है एगो बिस्तो भिया नहीं होल बा तो जो जे ओके देख ले बा मवा तसी बुझो लड़का हो के छोड़ के वहाँ बवा में चल गल बा सिपाही पहते हमें तो ऊ तो कुमा जे कोई नहीं जाने सको ही ना तो एगो आदमी आए सी बोझो हम ही एगो बोलियो कि जाके कुमा जे लौ गल लैकवा के अब हमके मन होई है बोलत हई तो हम साके सब लेता सिविल जाई ऊ लैकवा के दिखलारे करे मैं का करे लन तीन कार में पूछे ला ना हो लेता सिविल के कहाँ लैकवा होल ला पुलिस सी बोझो ऊ उठा के
1: सरकार के वती में चल जाला
0: तो हुआ सकेला कुमा जे है लेता सिविल वा एगो नाम दे एगो आदमी के कुमा जे जोन या कुमा जे एगो अब एगो एगो नाम दे के चल हर आदमी के ना तो कर ले जमे एदा चीते जानल जाई तो हियाँ देख ल हो के जोन आदमी गल बा दिखलारे करे नोमाल माँ हुई तो माँ के नाम में रही बाप हुई तो बाप के नाम हुई में हुई कभी तो दोनों के नमो में डाल
1: अच्छा। दे अब एगो सवाल और तोहर से हम करे खत है मान ले एगो पति पत्नी डिवोर्स ले लेलन जा हाँ। से पागे हो लन जा तब मान ल 40 बरिस के बाद काफी लंबा समय बा या 50 साल के बाद
0: हाँ।
1: ना डिवोर्स ले वत होन जा तो पत्नी जोन बा शादी करलन तो अपन पति के नाम लेलन अब शादी जब हो गल बा तब जब डिवोर्स हो गल तब पत्नीवा वो अपन पति के नाम सेवी करी या मान ला पति बोलक नहीं उकर दुआ नहीं है सेवी करे की
0: हाँ जैसे बोले रही तेरे लुआ सदिया के विषय में कब घर हल दिखलारे करे शादी तो बोले रल ओकर नमुआ कौन सी है ना तो ओकर नाम बोले हुई ओकरे मामजलोए के नाम रखे को जाता या पतिया के आजूते करी हाँ। या कौन सी अब यहाँ उतना बड़ी हो गल सिबुजों का आता हो गल अब जीवोस मजे हो गल है
1: सब कोई हुए नमुआ से महिला के जाना थोन जा अब महिला बोला तो हम नाम कैसे सौजे करो
0: हाँ सकी एगो मांग करी तेरे वा देख ली सब रिप्चुए दे ला वी कोमेन सेपारेशन और कुमार जी जाके बोली कि बा ऐसा का कि हम चाहते हैं हमारे मिशेवे के नाम रखे के हाँ मिशेवे के नाम मेम की जीवोस हो गल बा।

0: नमो रब नहीं मतलब कि तो अब जी वो सो गलबा तो तोरा चाहेला सांसे ही करके
1: वो चाहेला सांसे करके
0: हाँ जिस नहीं ये ना बोला था अब जी तोहर नाम शादी कर ले ममसिल वाय के नमो में अरे अब तक जी वो सो गई तू तक तो वह तो वही रही
1: हाँ।
0: जोन कुमार से पहला शुरू अब वो में डाल दे रहा तोहर मिशेवा के नमुआ से हाय कुमार जी चाल अब तोरा ऑप्शन बा थोड़ा मन बात सांसे करे कि सांसे कर बा अब नहीं मन हुई सांसे करे तो मिशे हुए के नमुआ में एक मजे जई बना किसे नहीं दिख रही सर एगो प्रोफेशन में हुई सी बोझो वो एगो दुखतेर हुई तो दुखतेर हुआ के नमुआ में वही शादी कर लेता इसने जीते रही
1: मान ला कि पति पत्नी म्यूचुअल एग्रीमेंट कर ले वंचा और पति बोल ले बा कि हम नहीं चाहते हैं कि वो हमार सिनाचिया सेवी करे हई नमुआ सेवी करे मदामा बोला हाँ ठीक बा सीए कर दिलक सब कुछ होकर अब वो अपन कौशदाची नहीं सौंझे करे खो जाता है तो उस सकी जब अपन कहूँ पर जब ओकर फॉर्म उभर के रही तो अपन मैडम ने मैडम मैडम नेम जो बा यानी कि जो माँ बाप दिल बा वो नमुआ सेवी करे मैं अपन कौशदाची से सकी नहीं सेवी करे
0: आई मीन
1: सेवी करे अपन कौशदाची से मैं ओकर नाम नहीं यूज करे
0: म्यूचुअल एग्रीमेंट कब कर ले बा तो उस सकी कुमार जो ऊ बखत हुआ कब मांग करे वो एक जाने ना कभी को डिवोर्स कर म्यूचुअल एग्रीमेंट में तो पहला चाहे वो प्लान उपलैत में रही तब सिगुआ तुहरा चाहे वो दिखलाशो करे कि कौन कौन पोताज हुई कि कितना पैसों देब के घर का होइला वो आता से होइला उपलैतवा से समझ ला ना दोनों संगे चलेला तो ऊ में नहीं हुई एगो बोली के ऊ में नहीं बा चेंज ऑफ नेम कि हम कैसा ही कब डिवोर्स कर ले म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं दिले रंसन की हमारे नमुआ सौंसे करब तक सिर्फ इस सके करे
1: आज पति दाल दिले बाकर में कि हमने जाते मर पत्नी हमार नाम से भी करी तब
0: सकी एक चीज करे कब केसवा कब लाकुर आई मांग करे कि उन नमुआ उही में उके हाई करे तो लाकू के दुआ बा से जीज जो सुना था वो आजूते करे कि या बोले कि नहीं सर्वी कर बे या से कॉन्स्टेंस दे के चाहे ला उस अगर वो डिसीडे करके एगो जीज आ शाम या जीज आ कब हाई कर बा जीवोसवा तब वो थोड़ा बोली सांझे कर या नहीं सांझे कर मिमिशेवा नहीं सकी फोसे करे कि जाने ले तू सांझे ही कर बे हम नहीं चाहते हैं हमारा नाम ये नहीं बा
1: कहूँ नहीं बा
0: नहीं बा जीज दे सीधे कर बा कभी गो एप्लीकेशन कर बा जीजुआ के कि हम चाहते हैं कि आई नमुआ किसी तरह लोग दिखली से ना एगो शादी का भूल था उसी बोझो वो मियाँ एगो दुखते रहल मदमुआ खूब जान सब कोई जाने रहा ओकर नमुआ ओकर बुढ़वा के नमुआ से
1: 40 बरिस 50 बरिस
0: अली हाँ अब का करी हुआ कब दुख मा बुगवा बोला था कि मजे ओकर पति नहीं अब हम नहीं चाहब तो जिजुआ के जाए ना कब हुआ एक्सप्लिके करी कि देख हम नमुआ जानी ला ये हमारे नाम से जेवा हम खुशी रहती है हमारे नाम हाँ तो जीज के बा उ दुआ हुआ कौन सी करे के ऊ दे मिमिशेवा नहीं करी वो एप्लीकेशन तो माचिक सिर भी करते जाता जो ओकर नाम कुमाजो के मन हुई
1: थी मसलमा जे पापिये में दला गल बा सीए हाँ। हो गल बा जीस बोल देला खा जीवोस हो गल अपने ओकर में डालर बा नाम नहीं सेवी करी त मतलब मौके दुआ लिया नाम सेवी करी की
0: ई त ला कानून है ना कानून कब देसी दे करेला एगो चीज त चाहला ओ बी करे
1: मसलमा कहूं पर नहीं दिखलवा की मदामा अपन कौचते चेहरा सेवी नहीं सेवी करे की यानी कि अगर जन कौचते में ओकर में ओकर ओकर नाम बा ओकर पति के नाम बा ओ त कौच ना लेकिन सबसे अभी अच्छा बात सांझे कर दे
0: हाँ जाने ला काहे काहे बोलती कि सांझे करे के तसी बुझो जैसे बता चवा हाँ कर उपशो माओ के मन नहीं बा वही करे तो अभी अभी तक कितना
1: तो बात जोली होई नहीं सांझे करे खोए
0: हाँ ना तो अब का करे
1: जवान होई नहीं सांझे
0: करे तो का करे रंसन उन नमुआ उके रखे ला नहीं सांझे करे खोजे ला बस कि जैसे बोली ना सब चीज में कुमा जे उन नमुआ से उके जोड़ल बा तो नहीं सांझे करे कोई उके फोसे नहीं सकी करेला मैं का करे रंसन सांझे करे लंसन अब सांझे करे कि ओकर कत ए दाँ चिते हुआ सैफ और ओकर ले के चाहे उजीज में हुआ जो मिलर रखल लकुआ में और दूसरा ओकर कुमार जो लाख देने सांसुआ जो कहाँ ओकर नम है लाखमा यजुआ जहाँ ले है शादी कर ले रहा वो भी लेके जाए के है लेता सिविल जहाँ मजा आइडेंटिटी कार्ड हुआ मिलेला तो वहाँ बोली देखो हमार नाम रहल मिशेवा के अब हम मिशेवा के नाम नहीं जानते हम चाहते हैं वो कते दाँ चीते हुआ निकाली के हमार नाम में हाँ तो लोग तुहरा आंपलास करके फोटोआ तो डिजिटल हो सब आंपलास वहाँ डाल के अब तुहरा दे दे ये देख ला ना अब एगो चीज देखते सर पहले चाहत कुमा जे एगो लाख देने सांस का मांग करता एगो आदमी के 20 बरिस एक दो बरिस नहीं 20 बरिस आतान करे के कब एगो ए पहले के बात बताइए कब एगो लाख देने सांस मिली आदमी आके मैं दिन दिन का होल चाहत सांझे हो गल 7 दिन अभी तुहरा

0: तब का होल 7 दिन चाँद अतान करे के तब एगो लाख देने सांस मिले मैं अब नहीं अब तक कैसे जब सब डिजिटल है अरे बाप ओकर पूछियो कर नमुआ है खाली एगो ताके पैसे के कंप्यूटरवा में तो देख ला आ प्लास लाख देने सांस वहाँ निकाल के मिल गल खाली थोड़ा बोलिए टैम लेके आइए बेन सैन कॉपी के टैम है लापूस से और नहीं बस लेके जाके वहाँ दे दिला आ प्लास तोरा मिली ये कुछ दूसरा चीज तोरा नहीं जाए के चाहे ला लेता सिविल के बिरोवा में ओ लाख देने सांस वहाँ के कुमा जे मांग करे घर ही से सबक लोड करे अपन कंप्यूटर में मन मन बैठ के तोर घर के आगे को माजा कम चुको दे तोर ला तबुआ में हिया कंप्यूटर बा हुआ तोर बा है प्रिंटर तो देख बा तोर मिल गल हिया तोरा नहीं जाई के चाहे ला
1: अब जरूरी नहीं बाप सब मिल जाता
0: सब मिल जाला पस जैसे ने बोले डिजिटल बा अब्बा उलो के वेबसाइट सब मिलेला तोरा घर घर जैसे ने बोला घर बैठ ले पपीवा जाए के चला नहीं चला जाए के लेता सिविल
1: तो बहुत बड़ा काम उगल बा
0: हाँ नहीं नहीं तो अभी
1: बस कहे ढेर कोई बोले लाना कि तोहर जो 3 महीना की मान कोनो कहूँ कोनो काम के जात हो कुछ चीज कीने जात हो तो तोहर जो कबू कबू मांगे लन जा ना तोहर लाख देनी सांस मांगे लन जा तो बोले लन जा नहीं जो रिसेंट बा हाउ चला लेके आई के
0: हाँ ना हाँ तो यहाँ प्लस निकाल के
1: घर में निकाल प्रिंट हुए तो घर में निकाल दे
0: बस निकाल के टेम डाल के कुमा जी चल गई ल सब कुमा जी तोहर ही हाथ में मिल गल
1: बहुत बढ़िया
0: बिना है जाए के नहीं अच्छा मैं देखा सही सिर्फ ही देशवा में नहीं दुनिया में अब सब चीज करल जाता कुमार जी जन है डिजिटल कुमार जी अभी तक
1: सबके काम आसान हो जाता नहीं तो कोई के पड़ेला काम छोड़ के जाके एगो दिन मिजूने डाले के हाँ सब करते करते तो समय निकल जाला लेकिन आज ऐसा काम हमने के हो गल बात तनी कुन किस वजह रहा तनी फासिल हो गल बात तो जस्ती अच्छा बार
0: हाँ आली अब देखब सामने एगो मवेशिया रहता एगो पे एतांजे में
1: हाँ
0: इतना हमने के बहुत भाई बहन के हुए रही समस्या अरे अब ओके मन बा एगो लाख देने सांस सिबुजो हुआ मंगले बा एगो लाख देने सांस
1: हाँ
0: और हुआ तो बेचारा होकर यहाँ नहीं बा
1: हम
0: ही तो कर रही यहाँ इस देश से अंगले तेरे तो हम तो खा पे बन लाख देने सांस तो नहीं लेके कर रही तो हमने सोच अब ओके हुआ मांगल था एगो लाख देने सांस ओकर कुमार जब मॉरिशस के जहाँ नहीं बोल बा वहाँ के सिबुजो एगो एगो एगो देपोत में मांगो तो या जहाँ काम कर तो बोले तो लाख देने सांस कहाँ बा हमने के चाहे ला तो वो आदमिया के वो पे एथा सेवा से चाहे ला एगो डिमांड करे के लेता कुमार जब सिविल डिविजन जो मॉरिशस में बाहिया सकिन कैसे मांग करे सके कुमार जब एगो ईमेल डाले एगो फैक्स करे एगो लापोस में कुमार जे हुआ डाले या एगो रिप्रेजेंटेंट जो हिया बा एगो भाई हो बहन हो या कोई भी हो वो एगो जाके मांग करे एगो लाख देने सांस तब भेज दे कुमार जे ओकर परिवार वाहिया जो हुआ कुमार जे बा बस वो तो आई नहीं दे वहाँ से करे एगो लाख देने सांस के ना तो देख लो ईमेल से तो वहाँ जी तेवा कब देखी सब मनसूद तब बा हमने के कानून में
1: तो अभी जैसे बोले सब डिजिटल हो गल बात मान ला कोई परदेश में बात हो कर लिया आसान हो जाए अपन लाख देने सांस कहीं ना कहीं प्रिंट करे के
0: हाँ बिल्कुल हुआ तो सब मिली ना तो हियाँ जो जिगते लेता सिविल है ओके से चाहे ओके मांग करे के जो आदमिया बा हुआ हियाँ तो हियाँ प्रोसेस करी ओकर एप्लीकेशन या देवेला तोरा एगो सांस कि सकब अपन एगो परिवार के एगो ले दे दे भेज दे सिर्फ जो भाई के एगो बहन के जो लेता सिविल में एगो
1: हमारे
0: हाँ कब हियाँ देखिए सन कि उपमा जो पोष बा ओकर हौ परिवार वा से तो सकी हुआ उपमा जे एगो लाख देने सांस ओके मिले तो देखे ला यही अभी तेये चीज तोरा बोलती लाख देने सांस में सब आदमी के ऑथोराइजेशन नहीं बा कि सके जाके एगो लाख देने सांस निकाले पहले कोई के लाख देने सांस काले एगो बोली ला पहले तोहरा मन बा हमर लाख देने सांस निकाले के अरे कोरे जाइते लेता सिविल ओके बोले पूछन से ना का कर गया हुआ बोले हम लेता से आले को लाख देने सांस मिश्रा गुंडन के लाख देने सांस निकाले हाँ फासिल रखल अन मन तोरा को मजे दे दे उमे भाई रही बहन रही सिपाका रही तो
1: कोई भी जाके कोई के निकाले
0: कोई भी जाक त रहल अरे एगो लेपो काल लेता सिविल गवर्नमेंट सांजे करलक ई पोसे जेवा बस की बहुत आदमी जब एगो आदमी के काले से बुझो हमरे जाने खोजत हुआ हम हमर बाप हमर माँ हमर सब कुमार जैसे देख ली सभी को लाख देने सांस में कौन कौन चीज एफ ओ माशुबा तो खाली जाके निकाल दिल हुआ तो गुबैन माँ बोले एगो का आ रहा तो कुमार जो एगो का पोल चिकन नहीं आनब से उमें केकर का

0: तो हुआ बुल्लब तो ये आदमी आके नहीं सकल लाइक कोनो आदमी के मन हुई आके से बुझो हमर बुढ़िया के लाग देने सांस मांग के सब जान दे यो कर हाल चाल कहाँ कौन कौन परिवार तो एगो चीज नहीं रहल तो अब का करलक लाइटा सिविल तोहरा नहीं दे तब ले तू ही जोड़ल नहीं हो वो आदमिया से कैसे देख अभी कभी वो आदमी लाफी दाफी दे सक्सेशन करता अरे बाप तो खाली चाहे ला दुखी माँ तो सी बुझो जो आदमी अमर गल बा बपुआ के ओकर लाग देने सांस नहीं बा सिवा लाग दे से नहीं बा गुजर गल बा तो वो तो मांग करी के चाहे तब न लाफी देवी दे सक्सेशन वहाँ बनाई बा तो हिया नहीं कुमार नहीं मिला था आवो का आवोए के भी नहीं मिलेगा कुमार ही कब हाइब करेगी इस आदमी आवो का लोग बोले लाभ हुई तो मर गल बा तो तू अपन दिमाग कर लाग देने से सांस सिपा लाग देने से ऊ परिवार के है तू लेटा सिविल में मांग कर तोरा दी अनसन तो देख ओके मिली ऊ कुमार जे है लाख देसे या लाख देने सांस हुई जब ओकर माँ बाप हुई या पन परिवार हुई और ओकर खत एकदम अच्छी ते देखी कि ई आदमिया औसन आदमिया है तब एगो बहन एगो भाई या एगो माँ रही ओकर कत एकदम अच्छी ते लेके जाए हुआ बताए तो सकेला ओके है लेटा सिविल के है उफ सेवा एगो है दे ओके एगो लाख देने सांस
1: तो आगे बहुत आसान रहल
0: बहुत आसान रहल अभी बहुत डिफिसिल डिफिसिल एंड हम बताइए आप
1: नहीं डिफिसिल नहीं जे गलत काम करे खो जाता ओकर लिए डिफिसिल बा
0: हाँ।
1: लेकिन जे अच्छा काम कर रहा था जैसे परिवार में कोई के निकाले के बा ओकर ओकर बर्थ सर्टिफिकेट तब बोल दे भाई हमर निकाल दे हम तो के दुआ देव थे जाके निकाल के लेके चलन
0: नहीं
1: नहीं
0: नहीं तोरा बोली अब वो का वो ही कितने नहीं मिला था
1: अच्छा
0: हाँ तो कैसे ओकर दूसरा छोड़ के ओकर भाई बहन कैसे बोल
1: हाँ भाई बहन वो के बोला था
0: हाँ भाई बहन के भाई बहन के ओकर खाते दांत से लेके जाए
1: भाई के बोली भाई देखता हमर तनी कौन दांत से दवा निकाल के लेके चलाओ
0: हाँ
1: तो के दवा देवत है जो लेके चलाओ तो जाके लेके चला
0: हाँ एगो पापी दे दे यार सब
1: हाँ बाकी कोई के दवा नहीं बा
0: दवा की कोई के दवा नहीं बा ये देख ला सिर मैं एक बार करे लनसन है मांग करे लनसन कब आप वो या वो का एगो ले देवेला एगो की कुमा एगो लाफी दाफी दे सक्सेशन से बुझो बनाई एतेल एतेल आपके लाग देने सांस होके चाहे ला तो वो तब कौन कौन सी देख करके सकेलन सन दे अली हमने अब देखब सर कौन लैपोटेंस है ये एगो लाग देने सांस ओकर लैपोटेंस है अभी तो सब चीज वो देख ले ली सर
1: हाँ तो जल्दी जल्दी कर देला सर कहीं कार्यक्रम थोड़ा कहीं में समाप्त हो जाएगी वाह
0: तो पाफ है ना ये हमने आप सब को मजे बस ये तो अब शुरू कर थे सर ये गो है आग देने सांस ओकर लैपोटेंस ये गो लाग बस ये गो लंबा चीज है ये गो लाग देने सांस ये एम्पोर्टेंट है बस कि ये गो डॉक्यूमेंट ऑफिशियल है ऑफिशियल मतलब
1: सरकार बगल
0: सरकार बगल से ये आतेस्ते करेला ये बतावेला कि इस सिचुएशन वा कहाँ से आवेला
1: कहाँ से आलबा यानी कि केकर बेटा हा ओकर माँ के हा ओकर बाप के हा कौन काम करेलन जा माँ हाउस वाइफ हा कि दुखतेर हा बाप कहाँ काम करेला साथ में कौन लुपिथार में कई बजे पैदा होल बा ये सब रहला ओकर में
0: सब तो ऊ जान जी बा ऊ आदमिया के अच्छी ओकर एकदम अच्छी ते भी आर जाने ला कहाँ से आलबा एक बही से एगो ओकर एगो लाख देने सांस एम्पोर्टेंट है अब हमने देख लिया सर ये लाग देने सांस हुआ ये का बतावेला एगो एदम चीते एगो आदमी के कैसे को लड़का है तो कर एदम चीते कर माँ बाप सब जैसे तू बोल रहा सब उमेल लिखल बा एगो चीज है अरे पहला चीज ए इम्पोर्टेंस एगो लाग देने सांस के तुहर एगो लड़का बा ओके तुहर आदमित करत हुआ लिकोल में तो हुआ गैला जो आदमित करेला कुमार जे है रजिस्ट्री में लिखी तो तू लालिन दे ले बतवा ला हमर लड़का के कुमार जे डाले हियाँ है आदमित करे के आदमिशियों जैसे हमने बोला सर ई ले कुलवा में तो पहला चीज पूरी ना एक लाख दे सांस वहाँ कहाँ बा तो अब तोरा बोलब हम के ओकर तो लाख दे सांस नहीं बा तो फिर नहीं लाके में रह पुनारी एक दिन हुआ लाके दे ले हुआ तो बोली लाख देने सांस नहीं रही तो हमने तो नहीं सकब से डाले आलो देखबा आदमित करे के एगो लड़का के चाहे ओकर लाग देने सांस अब देखिला सांस सिर्फ नहीं वैक्सीन करे के
1: हाँ
0: कब वैक्सीन करबा कुमा जे एगो लड़का के या हुई आदमिया के कब कुमा जे फेक कुमा जे है जन्म लेलक तो लाग देने सांस मांगेलन सन देखला ओकर लैपोटेंस एगो छोटा सन पापिए में कितना ओकर बड़ा चीज अब ये नहीं डिस्पेंसर में जइबा
1: हाँ
0: अभी तो हया बता कुमार जे पहुँचों के विषय में कब जाइबा तो आदमी के बोले भैया हम जाना थे सुसौता में तो पहुँचों मिले मिले बतुआ तो बोले कहाँ तुर लग देने सांस पा कि तू सोचा हाँ हुई तो वो देख लो कब जिस बांसे वाक्स

0: वैक्सीन लेकुल या कुछ के अब पहला देखी ला सोकर पासपोर्ट पासपोर्ट के पासपोर्ट के तरने मजे का एप्लीकेशन करब तो हुआ तो मांगेला
1: सब
0: तो हर एगो लाख देने सांस दिक्कत कितना ऊपर ले पोटेंस अब सिर्फ या नहीं अब तोरा मन बहुत वायाजे करे के पासपोर्ट देख ले ला बस की कुमार जो दूसर देश में कब तू जानत हो जात हो तो हुआ तो तोरा दे के चला किसी को पासपोर्ट निकल ब वो तो पहला चीज हुआ तोरा ये बोले ला सब चीज नाम को
1: मांगेला
0: हाय तो हिया लाख देने सांस देख ला कौन चीज हई हुएला अब मैंने कहा जानिए देखा था वहाँ बक का हुआ था एक आदमी के लाग देने सांस नहीं रही तो किसी को बंक ला बंक को मेसाल में जाके गो कोंत खोली हूँ ना मांगे लंसन बोले तोर नाम का है तो बोली तेल कते दा चीते द राहे रह लादगेस कोने बा कहाँ कुमा जे रहेला तो ई सब एपोर्टा
1: यूटिलिटी बिल भी मांगे लंस की कहाँ कौन रहेला कौन लोन उले बता सब चीज मांगे लंस
0: आवेला लाग देने सांस ओकर लैपोटेंस अब फिनी करे के देखे ला सा लाग देने सांस के लैपोटेंस से तब जन्म ऊ अदमिया एगो मिने है या एगो माजे है
1: ये भी बा
0: पशुकर मिने अवा से दान आजूते कर बार माइनस कर बा कब नहीं होल बा कब कर ली हो रहा तो जान गए एगो मिने है या एगो कुमा जे है माजे है तो ये देख ला अभी ये अभी फिर नहीं हो रहा हमने आपसे कुमार जी को बस के में लाख देशे लाख मयास और हमने आपसे अफिडाफिट सिक्सेशन में काही सब चीज बहुत इम्पोर्टेंट है
1: चला तो हमने के जो आज के कार्यक्रम बा आज की चर्चा यहाँ पर समाप्त हो जाता हमने के वकील जी कपिल देव रघुनंदन जी के बहुत बहुत धन्यवाद हमने के कार्यक्रम में जब भी आवेला हमने के इतना कुछ समझावेला सिखावेला बहुत कुछ बात जो हमने नहीं जानी ला जा बहुत चीज़ से हमने अनजान है जा तो हमने के ये सब सिखावे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद और चला तो प्रिय श्रोताओं हमारा जो कार्यक्रम है आज की चर्चा यहाँ पर समाप्त होता है आपने हमारे कार्यक्रम को सुना पसंद किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे अभी के लिए आज्ञा दीजिए नमस्ते।

0: के लिए सुंदर संक्षिप्त समाचार आपसे अशिता नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। आज बजट डे है और पूरे देश में उम्मीदों का माहौल है। घर परिवार, कामकाजी लोग, उद्यमी और सेवानिवृत्त नागरिक यानी कि रिटायर्ड जो लोग हैं, सभी बढ़ती जीवन यापन लागत से निपटने के लिए ठोस उपायों की उम्मीद कर रहे हैं। ये बात वित्त मंत्रालय द्वारा 29 अप्रैल से 6 मई तक आयोजित पूर्व बजट परामर्शों में भी सामने आई है। पहली मई के बाद से प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम लगातार विभिन्न सार्वजनिक बयानों में पिछली सरकार से विरासत में मिली कमजोर आर्थिक स्थिति का उल्लेख कर रही हैं। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक अनिश्चितताओं

असर भी बना हुआ है, जिससे ईंधन की कीमतें, समुद्री फ्रेट और आयातित मुद्रास्फीति प्रभावित हो रही है, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है।

0: समकालीन अनुवाद MBC2 और M1 और AM1 पर उपलब्ध होगा, जबकि भोजपुरी अनुवाद MBC3 और M3 पर प्रसारित किया जाएगा, जबकि हिंदी अनुवाद और M2 पर। शाम 7:30 बजे से MBC1, MBC7 और M1 पर एक विशेष संस्करण प्रसारित किया जाएगा। इसमें विदेश मंत्री रितेश रामफल, सांसद रोशन जमन, पूर्व गुड गवर्नेंस मंत्री महेंद्र सिरतन, ओनावो मोरिस के पैट्रिक बेलकूर तथा अर्थशास्त्री इब्राहिम मालिक का बजट 2026-2027 के प्रमुख उपायों का विश्लेषण और चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रितेश रामफल एक अन्य विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के हितधारकों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित होगा। पुलिस बल की ओर से पुलिस फाइटर्स यूनियन के अध्यक्ष सब इंस्पेक्टर सतीश बलजीवन ने उम्मीद जताई है कि पुलिस कर्मियों को पेंडिंग अलाउंस और लंबित प्रमोशन पर प्रगति की घोषणा की जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस के यूनियन प्रतिनिधियों को पूर्व बजट परामर्श में शामिल नहीं किया गया, जिस पर उन्होंने खेद व्यक्त किया है। जहां आर्थिक क्षेत्र के हितधारक ऐसे उपायों पर नजर रखे हुए हैं जो आर्थिक वृद्धि को गति दे सके, वहीं गैर सरकारी संगठन और विभिन्न संगठनों को उम्मीद है कि ऐसे घोषणाएं की जाएंगी जिनका सामाजिक प्रभाव व्यापक हो और जो जमीनी स्तर की वास्तविकताओं का समाधान कर सके। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीर की राजधानी नियामे में स्थित देश के सबसे बड़े हवाई अड्डे दियोरी हमानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कल गुरुवार को हुए सशस्त्र हमले में 35 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय निवासियों के अनुसार सुबह की नमाज के तुरंत बाद हवाई अड्डे के क्षेत्र में विस्फोटों और गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी। नाइजीर के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मृतकों में 22 हमलावर, 11 सैनिक और 2 नागरिक शामिल हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रही सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। पुची विलाज रोड गुडलैंड्स में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के जनाब मोहम्मद सलीम नूरानी गुजू, जिन्हें सलीम गुजू के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज 12 बजे इनके बेटे मोहम्मद रहमत नदीम गुजू के मकान गुडलैंड से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजा के लिए जुमा मस्क गुडलैंड्स ले जाया जाएगी। फिर दफनाने के लिए बेलमो का कब्रस्तान, फ्यूनरल टुडे एट नून। 86 साल की 86 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रेणुका बिनिश्री सिंह, जिन्हें रेणुका के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे लाशापेल एलियनसन बुबासा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शेबेल की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv. NBC Radio.tv. 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस।

चलिए श्रोताओ, 10:06 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। आप सभी सुनने वालों को हमारा सादर प्रणाम। कार्यक्रम है भक्ति धारा। तो चलिए इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं और इस कार्यक्रम के अंतर्गत चन्न भक्ति गीत आपकी सेवा में। साथ ही साथ आपके लिए शास्त्र नवनीतम, ये कार्यक्रम डॉक्टर आचार्य सुनील जी की प्रस्तुति में इस कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे। तो चलिए श्रोताओ, ज़्यादा देर न करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ हम करेंगे भगवान गणेश जी का नाम लेकर। और आपको पता है कि भगवान गणेश जो है विघ्नहर्ता है, बुद्धि और सफलता के देवता माने जाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे।

0: चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भक्ति धारा कार्यक्रम को जारी रखेंगे। आइए सुनते हैं शास्त्र नवनीतम कार्यक्रम। ये कार्यक्रम जो है आप डॉक्टर आचार्य सुनील जी की प्रस्तुति में सुन पाएंगे।
1: वेद दर्शन

ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी श्रोताओं को सादर सप्रेम नमस्ते। आज के वक्तव्य का विषय है सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित पाखंडियों के लक्षण। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में पाखंडियों के लक्षणों को उजागर किया गया है। पाखंड व ढोंग धर्म का हिस्सा नहीं है। पाखंड को मान्यता प्रदान करने एवं अपनी धार्मिक व सामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित करने से अंधविश्वास उत्पन्न होता है। जिस क्रिया व बात का कोई संबंध वेद, सत्य, विज्ञान, प्रकृति तथा धर्म से न हो, जो वेद तर्क एवं आप्त पुरुषों के अनुकूल न हो, उसी को ढोंग और पाखंड कहते हैं। महर्षि दयानंद जी ने पाखंड को धार्मिकता की कमजोरी और छल कपट का माध्यम बताया। पाखंड वह व्यवहार है जो व्यक्ति के विश्वास या भावना के विपरीत होता है। पाखंड वह विशेष दिखावा है जो वास्तविकता के विपरीत होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति धर्म की दुहाई देता है, धर्म के बारे में बहुत कुछ कहता है परंतु धर्म के सिद्धांतों के अनुसार नहीं जीता, वह पाखंडी कहलाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में अर्थात चौथे समुल्लास में पाखंडियों के संदर्भ में मनुस्मृति के प्रमाण देते हुए सबको सावधान कराया है कि पाखंडियों से अवश्य बचें, और पाखंडियों से बचने का मार्ग प्रशस्त किया है। ऐसा इसलिए कि भारत देश 19वीं शताब्दी के दौरान परतंत्र हो चुका था। परतंत्रता के साथ साथ अज्ञान, अन्याय, अभाव, अंधविश्वास, अंध परंपराएं, जाति भेद, संप्रदाय भेद, मत मतांतरों में कलह, कुप्रथाएं, पाखंड की वृद्धि इत्यादि बाधक तत्व उपस्थित हो चुके थे। इससे पूरा भारत देश कमजोर हो चुका था। स्मरण रहे कि घोर अविद्या अंधविश्वास को जन्म देती है। अंधविश्वास पाखंड को बढ़ावा देता है। पाखंड का प्रयोग स्वार्थ सिद्धि एवं जनता के शोषण के लिए किया जाता है। पाखंड समाज को कमजोर एवं खोखला बना देता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 19वीं शताब्दी के दौरान स्वामी जी के समय भी पाखंड, ढोंग, अंधविश्वास, कुप्रथाएं एवं अंध परंपराएं अपनी चरम सीमा पर थी। शूद्रों पर अत्याचार, धूर्तता पूर्वक धन का हरण, तथा कथित चमत्कारी बाबाओं एवं साधुओं द्वारा महिलाओं पर शोषण की बातें हमेशा से प्रकाश में आती रही। भटकी हुई जनता आडंबरों एवं धूर्तों के जाल में आसानी से फंस जाती थी। शिक्षा एवं सत्य ज्ञान के अभाव में भटका हुआ समाज पिछड़ता चला गया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इन सब बाधाओं को प्रत्यक्ष रूप से यत्र तत्र देखा और इन बाधाओं को हटाने के लिए एवं सामाजिक तथा धार्मिक समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षा का द्वार सभी के लिए खोल दिया। स्वामी जी के अनुसार उत्तम शिक्षा और सत्य ज्ञान से ही पाखंड, ढोंग, अंध परंपराएं और अंधविश्वास को हटाए जा सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समुल्लास के अंतर्गत महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मनुष्य

स्मृति के श्लोक को प्रस्तुत करते हुए पाखंडियों के संदर्भ में चर्चा की है। स्वामी जी ने चौथे समुल्लास में बिल्ली और बगुला पक्षी जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति से सावधानी बरतने की शिक्षा दी है। श्लोक में लिखा गया है, धर्म ध्वजी सदा लुब्धस छाजिको लोकदम्भक वैडाल व्रतिज्येयो हिंस्रह सर्वाभि संधक। अर्थात बिलाव जैसे प्रवृत्ति वाले व्यक्ति से हमेशा सतर्क रहें। बिलाव की प्रवृत्ति को वैडाल व्रति कहते हैं। वैडाल व्रति पाखंडी का पहला लक्षण है धर्मध्वजी, जो धर्म का कार्य कुछ भी न करें परंतु धर्म के नाम से लोगों को ठगें, या यूं कह सकते हैं कि धर्म का ध्वज लेकर लोगों को ठगना, धर्म का झांसा देकर लोगों के विश्वास को जीतना, इसी को धर्म ध्वजी पाखंडी कहते हैं। वैडाल व्रति पाखंडी का दूसरा लक्षण है सदा लुब्धः, जो हमेशा लोभ से जुड़ा रहें, अर्थात जिसमें लोभ की प्रवृत्ति हो, लोभ की भावना हो। वैडाल व्रति पाखंडी का तीसरा लक्षण है छाजिकः, छाजिकः अर्थात जो कपटी हो। वैडाल व्रति पाखंडी का चौथा लक्षण है लोकदम्भकः, अर्थात सांसारी मनुष्यों के सामने अपनी बड़ाई के गपोड़े मारा करें, हर समय अपनी ही प्रशंसा करें और करवावें। वैडाल व्रति पाखंडी का पांचवा लक्षण है हिंस्रः, अर्थात प्राणियों का घातक करने वाला, प्राणियों को मार देने वाला तथा अन्य से वैर बुद्धि रखने वाला। जो व्यक्ति हिंसक होकर एवं शत्रु बनकर लोक में व्यवहार करता है उसे हिंस्रः कहा गया है। वैडाल व्रति पाखंडी का छठा लक्षण है सर्वाभिसंधकः, अच्छे बुरे दोनों से मेल रखें, अच्छे लोगों एवं बुरे लोगों से संपर्क बनाए रखें, अच्छे के साथ रह के साधु जैसा व्यवहार करें और बुरे लोगों के साथ में रहकर डाकू जैसा व्यवहार करें। उक्त छह लक्षणों को वैडाल व्रति कहा गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे बिल्ली शांत स्थिर और मनमोहक प्रतीत होती है, वह आंख मूंद लेती है परंतु सही दाव देखकर अपने शिकार पर हिंसापूर्वक झपट पड़ती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, अपने शिकार को मार कर खा जाती है, ऐसी वृत्ति को वैडाल व्रतिक कहा गया है। सत्यार प्रकाश में पाखंडी के लक्षणों की व्याख्या करते हुए आगे महर्षि दयानंद लिखते हैं कि पाखंडी के लक्षणों को बताने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मनुस्मृति का प्रमाण प्रस्तुत किया है। प्रमाण प्रस्तुत करते हुए वक्रव्रती लोगों से बचने का उपदेश भी दिया है, अर्थात बगुला पक्षी जैसा व्यवहार करने वाले व्यक्ति से दूर रहने का संकेत किया गया है। श्लोक में आया है, अधो दृष्टिर नैष्कृतकः स्वार्थ साधन तत्परः शठो मिथ्या विनीतश्च वक व्रतचरो द्विजः। बगुला पक्षी के दृष्टिकोण से पाखंडी का पहला लक्षण है अधो दृष्टि ही। अधो दृष्टि ही का अभिप्राय है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बगुले के समान दृष्टि नीचे रखने वाला, अपने आंखों को और अपने मुख को नीचे रखने वाले को अधो दृष्टि कहा गया है। जो कीर्ति पाने के लिए एवं अपने लक्ष्य, अपने ध्येय व स्वार्थ की पूर्ति के लिए बगुले पक्षी के समान अपने लक्ष्य की ओर स्थिरता से देखता है,
ऐसे पाखंडी से सावधान

0: रहने का संकेत प्राप्त होता है। बगुला पक्षी की दृष्टि से पाखंडी का दूसरा लक्षण है नैष्कृतकः। नैष्कृतिकः का अभिप्राय है ईर्ष्या करने वाला, हिंसा तथा ईर्ष्या से बर्ताव करने वाले, जैसे कि किसी ने किसी का थोड़ा सा अपराध किया तो उसका बदला प्राण तक लेने को तत्पर रहे। बगुला पक्षी के दृष्टिकोण से पाखंडी का तीसरा लक्षण है स्वार्थ साधन तत्परः। स्वार्थ साधन तत्परः का अभिप्राय है जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने में हमेशा लगा रहता है, अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए कपट, अधर्म, छल या विश्वासघात करने से भी नहीं हिचकता है, अपना काम निकालने में अधिक चतुर होता है, ऐसे व्यक्ति से हमेशा सावधान रहना चाहिए। बगुला पक्षी के दृष्टिकोण से पाखंडी का चौथा लक्षण है शठः। शठः का अभिप्राय है ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात झूठी होने पर भी अपने जिद व हठ कभी नहीं छोड़ता, अपनी गलत या झूठी बातों को सही साबित करने के लिए अड़ा रहता है। हठ करने वाले ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाए रखना चाहिए। बगुला पक्षी के दृष्टिकोण से पाखंडी का पांचवा लक्षण है मिथ्या विनीतः। मिथ्या विनीतः का अभिप्राय है झूठा दिखावा करने वाला व्यक्ति, बाहरी व्यवहार में सीधा साधा या साधु जैसा दिखता है लेकिन अंदर से दुष्ट शैतान होता है। चरित्रवान, संतोष और सज्जन होने का ढोंग रचता है पर बगुले के समान कपट व्यवहार करता है, बाहर से सज्जन और अंदर से दुर्जन। महर्षि दयानंद जी ने ऐसे लक्षणों वाले पाखंडी लोगों से दूरी बनाने की शिक्षा दी है। स्वामी दयानंद जी के अनुसार ऐसे लक्षणों वाले पाखंडी लोगों से हमेशा दूर और सावधान रहना चाहिए। इस प्रकरण के अनुसार जो भी सामाजिक या धार्मिक क्रियाएं वेदों के सिद्धांतों, विज्ञान, प्रकृति, तर्क की कसौटी और महापुरुषों व आप्त पुरुषों के विचारों से मेल नहीं खाती, वे सब मान्यताएं ढोंग, अंधविश्वास एवं पाखंड की श्रेणी में आती हैं। आज का वक्तव्य यहाँ विराम लेता है। अब आचार्य सुनील को अनुमति दीजिए। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: अभी आप सुन रहे थे वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र निर्मितम, प्रस्तुत करता डॉक्टर आचार्य सुनील।

चलिए श्रोताओ, 10:25 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भक्ति धारा, चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में। शुक्रवार का पावन दिन है और आज का दिन जो है हम माँ की जय जयकार करते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं और इस कार्यक्रम में चंद भक्ति गीत माँ दुर्गा पर आधारित। और आपको पता है माँ जो है हमें यही संदेश देती है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है और इसी रास्ते पर हमें चलना चाहिए।

श्रोताओं, माँ दुर्गा जगत जननी और आदि शक्ति के रूप में पूजनीय है। माँ दुर्गा का प्राकट्य संसार से अधर्म और अन्याय का नाश करने के लिए हुआ है। उन्होंने महिषासुर नामक राक्षस का वध कर देवताओं और समस्त सृष्टि की रक्षा की है। तो चलिए श्रोताओं, 10:36 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे चैन्य प्यारे प्यारे भक्ति गान के साथ, माँ दुर्गा पर आधारित।

चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को जारी रखेंगे। वैसे धर्म का वास्तविक अर्थ केवल पूजा पाठ या रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है श्रोताओं, बल्कि मानवता, प्रेम, सेवा और नैतिक मूल्यों का पालन करना भी धर्म है। वही अध्यात्म हमें यह समझाने में सहायता करता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मिक संतोष में निहित है। तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। और इस समय आप हमारे सुन रहे हैं ये रेडियो मॉरिशस, मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है। तो चलिए भक्ति

श्रोताओं, जब हम धर्म की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, तो ये मानव जीवन के दो महत्वपूर्ण आधार हैं। धर्म हमें सत्य, सदाचार, करुणा और कर्तव्य का मार्ग दिखाता है, जबकि अध्यात्म जो है हमें अपने भीतर की शांति, आत्मज्ञान और ईश्वर से जुड़ने की प्रेरणा देता है।

चलिए ये श्रोताओ, 10:55 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। जाने से पहले आइए सेंट्रल एक्सेस बोर्ड की तरफ से चयनित विज्ञप्तियाँ सुनिए। रिशानो जिनमें है स्टाफ क्वार्टर्स बोजार्डें और रिशानो शुगर स्टेट के रहने वाले निवासों को सूचित किया जाता है कि मंगलवार 23 जून 2026 को सुबह 8:30 से लेकर दिन के 12 के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ में है बेजटोंगो के रहने वाले निवासियों को जिनमें है माओसेल माओफोंग सिंह, माओसेल माओस्वांग, डॉकर्स विलाज, स्कूल लेन और गुट कचिया के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 21 जून 2026 को सुबह 8:30 से लेकर सपहर के 3 के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और अंत में है प्रिंसेस अन रोड और संगावालिंगम रोड से चेम्मिल थ्रियोले के रहने वाले निवासों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 20 जून 2026 को सुबह 8:30 से लेकर दोपहर के 2 के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिस बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिस बोर्ड की तरफ से आप चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है, तो चलिए कार्यक्रम के अंत तक आप पहुँचे हैं। कार्यक्रम का समापन जो है हम एक आरती के साथ करेंगे। वैसे जाने से पहले हम आपसे यही कहेंगे कि जीवन में जो है बहुत सारी कठिनाई आती है, कठिन परिस्थितियों से हमें विश्वास और धैर्य से के साथ हमें बनाए रखना है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर जीवन को हमें सार्थक बनाना है। तो चलिए कार्यक्रम का समापन हम करेंगे। कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाले हैं, आप

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे अर्शिता नमस्कार।
1: नमस्कार निर्मनी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहली स्थानीय खबरें। उम्मीदें काफी अधिक हैं, जीवन यापन की लागत, आवास, क्रय शक्ति, युवाओं का भविष्य और स्थानीय कृषि जैसे कई मुद्दे लोगों की चिंता का कारण बने हुए हैं मॉरिशस के नागरिकों के लिए। इस बड़े बजट आयोजन से पहले हमने कुछ लोगों से बातचीत की और यही सुनने को मिला कि जनता सरकार से अपेक्षा कर रही है बहुत ठोस कदमों के लिए, जिससे देश की आर्थिक संभावनाओं को मजबूत किया जा सके। 2026-2027 के राष्ट्रीय बजट के नज़दीक आने के साथ इन अपेक्षाओं से बहसों को और बल मिलने की संभावना है। ये अपेक्षाएं ऐसे समय में सामने आई हैं जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में 2026 में लगभग 2.8% की वृद्धि का अनुमान है और मुद्रास्फीति कई परिवारों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। अपनी ओर से मॉरिशस फाइनेंस ने सरकार से अपील की है कि वह ऐसे महत्वाकांक्षी उपाय अपनाएं जिससे बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में मॉरिशस नए अवसरों का लाभ उठा सके। संस्था का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी भू राजनीतिक तनावों और वैश्विक वित्तीय केंद्रों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद देश के पास अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण क्षमताएं मौजूद हैं। बजट से पहले मॉरिशस फाइनेंस ने 3 प्रमुख प्राथमिकताएं तय की हैं: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की दृश्यता बढ़ाना, कर स्थिरता सुनिश्चित करना और सुधारों के कार्यान्वयन में तेजी लाना। अन्य खबरों में अलग अलग मौसम

शोपिया इलाके में कल गुरुवार तड़के आतसू द्वारा चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान कथित तौर पर गांजे की खेती का पता चला है। सुबह लगभग 6:30 बजे की गई इस कार्रवाई में 2 कमरों में उगाए जा रहे संदिग्ध पौधे बरामद किए गए। मौके से पुलिस ने 36 ऐसे पौधे जब्त किए हैं जिनके गांजा होने का संदेह है। इनकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर से लेकर 2 मीटर 10 सेंटीमीटर तक बताई गई है। पौधों को मिट्टी और खाद से

0: के साथ साथ 3 लेड लाइट पैनल लगाए गए थे, जिनका उपयोग कथित तौर पर पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा था। बरामद संदिग्ध मादक पदार्थों का कुल अनुमानित मूल्य 32,41,635 रुपए आंका गया है। लागरिमा सैपिया के मार्केट लेन के निवासी 40 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया। मामले की जांच जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मस्को के एक हिस्से में एक रिफाइनरी पर हमले के बाद काले तेल के कणों की बारिश जैसी स्थिति देखी गई, जो व्यापक ड्रोन हमले के बाद सामने आई। यह हमला रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक बताया जा रहा है, जिसमें लगभग 200 ड्रोन यूक्रेन की ओर से रशिया की राजधानी की ओर दागे गए। घने धुएं के विशाल गुब्बार आसमान में उठते दिखे गए और मॉस्को क्षेत्र में 17 लोग घायल हुए। ये जानकारी स्थानीय गवर्नर आंद्रे वोरोब्यो ने दी है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रहे, सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। Avenue de l'Ébénier, Beauvallon-Maybug में, Avenue de l'Ébénier, Beauvallon-Maybug में 65 साल के 65 years old के श्री लाचाना पुलिया, जिन्हें नंदा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 1:30 बजे उनके घर, उनके बेटे सर्विन पुलिया के घर मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोंबो मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। सर्कुंसेंस सैंपियर में 54 साल की 54 years old की बीबी अमीमा कोरिदन पैदाशाम गुलोब, जिन्हें अमीमा के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज 2:30 बजे इनके शौहर कोरिदन इम्तियाज सिद्दीक के मकान सैकोंसा सेपिया से उठाकर दफनाने के लिए सैकोंसा का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 1:30 PM। ब्रांचवुड न्यू ग्रोव में 75 साल की 75 years old की श्रीमती दाउमत ओगी, जिन्हें कुमारी के नाम से भी ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे विशाल ओगी के घर न्यूग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गोबियो ओगी लेन की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 10 AM। पृथ्वी विलाज रोड गुडलैंड में 62 साल के 62 years old के जनाब मोहम्मद सलीम नूरानी गुजू, जिन्हें सलीम गुजू के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज 12 बजे इनके बेटे मोहम्मद रहमत नदीम गुजू के मकान गुडलैंड से उठाकर नमाज जनाजा के लिए जुमा मस्जिद गुडलैंड ले जाया जाएगी। फिर दफनाने के लिए बेलमुका कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट नून। और श्रीमती रेणुका बिनिस्की सिंह 46 साल की 86 years old की, जिन्हें रेणुका के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे लाशापेल एलियन सनबो बासी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शेबैल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस।
2: शम्मे फरोजा

0: आमीन। उम्मीद है आप बफजल खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज 1448 सन हिजरी का पहला महीना है और पहले महीने मुहर्रमुल हराम का पहला जुम्मा है। आप तमाम सुनने वालों को हमारी जानिब से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको ऐसे हज़ारों जुम्मे नसीब फरमाए। हज़रत अबू सईद खत्री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कहफ़ पढ़ेगा तो उसके लिए दोनों जुम्मों के दरमियान एक नूर चमकता रहेगा। मौज़ सामीन, तो आइए आगाज़ करते हैं सूरह कहफ़ से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जुम्मे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो। इस रोज़ दुरूद में फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं और ये दुरूद मेरे हुजूर में पेश किया जाता है। मौज़ेस

सदकुल्लाह लज़ीम। ए पाक परवरदिगार, हमें कुरान शरीफ़ समझकर पढ़ने और उस पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जुम्मे का दिन होता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े हो जाते हैं और शुरू में आने वालों के नाम यक के बाद दीगरे लिखते हैं, और अव्वल वक्त दोपहर में आने वाले की मिसाल उस शख्स की सी है जो अल्लाह ताला के हुजूर में ऊँट की कुर्बानी पेश करता है। फिर उसके बाद दोम नंबर पर आने वाले की मिसाल उस शख्स की सी है जो गाय की कुर्बानी पेश करता है। फिर उसके बाद आने वाले की मिसाल मेंढा पेश करने वाले की है। फिर जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर की तरफ जाता है तो ये फरिश्ते अपने लिखने के दफ्तर लपेट लेते हैं और खुतबा सुनने में शरीक हो जाते हैं। बहावाला सही बुखारी सही मुस्लिम शरीफ।

0: मौजूद सामईन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:34 हो चुके हैं। आइए समाअत फरमाइए एक ऐलान। मंगल 23 जून, जी हाँ, मंगल 23 जून सुबह 10 बजे अब्दुलरज़ाक हॉल फिनिक्स में उस्तानी बेगम साजिदा रजब की सरपरस्ती में मुहर्रम के हवाले से एक नूरानी महफिल का एहतमाम किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। जुम्मे का मुबारक दिन है, जून की 19 तारीख है और मुहर्रमुल हराम का आज पहला जुम्मा है। ताख़ीर ना करते हुए अब आप समाअत फरमाएंगे खोजा शिया जामा मस्जिद मौलाना अली अकबर साहब की ज़ुबानी एक बयान। आइए समाअत फरमाइए।
1: ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयल अज़ीम, हसबनल्लाहु निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सकीना बिविलायति अमीरिल मुअ्मिनीन वलाइमतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। अलहम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिलहक सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला सैयद अस्लिमा फिल वजून सिर्रिल्लाहे फि कुल मौजून नुक्तति दायरतिल वजून साहिबे लिवाइल हमदे वल मकामिल महमून खातिमे लिमा सबक वल फातिहे लिमन गलक अल मौलन लहक बिलक मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद सुम्मा सलातु अला अहल बैतिहिन तय्यबीन ताहिरीन अम्मा बादु। फ़कद क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाते कुल ला अस्अलुकुम अलैह अजरन इल्लल मवद्दता फिल खुर्बा वमन यख्तरिफ हसनतन नज़िद लहु फीहा हुस्नन इन्नल्लाहा गफूरुन शकूर। बलन सलवात अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मदिन व औले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सामईन किराम, मैंने कुरान मजीद की सूरह शूरा 42 सूरा नंबर आयत नंबर 23, 42वां सूरा और 23वीं आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल

किया कि जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, ज़ालिकल लज़ी युबश्शिरुल्लाहु, यही तो वो चीज़ जिसकी खुशखबरी अल्लाह अपने उन बंदों को देता है जो अब्दी हकीकतों को दिल से मानते हैं और उसके नतीजे में अच्छे अच्छे काम करते हैं। यानी यहाँ बंदों को कोई अच्छी खुशखबरी का तस्करा करते हुए फिर अल्लाह ने कुल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कुल ला असअलुकुम अलैह अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, आप इन लोगों से कह दीजिए कि मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर या मुआवदे का सवाल नहीं करता सिवाय इसके कि मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो। अब जो भी कोई भी ये नेकी कमाएगा हम उसे उसमें और ज़्यादा भलाई और ख़ूबी का इजाफ़ा करेंगे, क्योंकि ये हकीकत है कि खुदा बड़ा माफ़ करने वाला और अपनी रहमत से ढक लेने वाला और उस अमल का क़दरदान है। इस पूरी आयत में बहुत सारे पैगामात हैं, बहुत सारी चीज़ें। एक तो ये कि खुशखबरी है, वो खुशखबरी क्या है? नबी कह दीजिए, क्या कहें? तुमसे कोई चीज़ नहीं मांगता। तो बहुत से लोग समझ गए कि इतनी मेहनतें जो रसूल ने हमारे लिए की हैं, काफिर थे मुसलमान बनाया, बेदीन थे दीनदार बनाया, झूठे थे सच्चाई की दावत दी और हमारे दीन को संवारा और हमें जन्नती बनाया, हमें कुछ अवैस देना चाहिए, हमें रसालत माप का कुछ ख्याल करना चाहिए। लोग गए अपने अपने एतबार से, सुनते कम थे करते ज़्यादा थे, सब अपने अपने इलाके से कुछ ले आने के लिए गए और लेकर आए और लाने के बाद इन्होंने क्या पेश किया? हीरे जवाहरात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे इन दौलतों की ज़रूरत नहीं है। कि क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने हमारे ठोकर से खाक को सोने के बना रखा है? हम एक मुश्त खाक भी अगर किसी के दामन में डाल दें तो वो भी हीरे जवाहरात हो जाती है। क्या तुमने नहीं देखा कि अगर कुछ खाक उठा लें तो वो ज़र्रात हमारे हाथ में कलमा पड़ते हैं? अल्लाह ने जब इतना सारा इख्तियार दिया तो फिर हम तुमसे ये दौलत ले के क्या करेंगे? हमें ये दौलत नहीं चाहिए, इससे बड़ी दौलत जो अल्लाह ने तुमसे चाहा है वो है मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो। फिल क़ुरबा मवद्दत का मुतालबा है, मोहब्बत का नहीं है। मैं यहाँ थोड़ा सा इसकी वजाहत करूँगा। मोहब्बत हो जाती है, मवद्दत की जाती है। मोहब्बत में और मवद्दत में बहुत बड़ा फ़र्क है। मोहब्बत में ख़ताओं का इम्कान है, मवद्दत में ख़ता नहीं होती। मवद्दत में इंसान जो है सर बुलंद होता है, मोहब्बत में दर तक आता है। अगर मवद्दत हासिल हो तो दर से वापस नहीं जाता, ज़रूरत पड़े तो दार तक भी जाता है। अज़ीज़ाने गिरामी, मोहब्बत में ख़ताओं का इम्कान है, मवद्दत क़ुरबानी के माने हैं। मवद्दत के लिए एक जो अल्लाह ने मुतालबा किया है कि मवद्दत, तो वो क्या चीज़ है? मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। जैसे अक्सर बच्चे स्कूल का होमवर्क करते हुए खाना भी भूल जाते हैं, नींद की भी परवाह नहीं करते। माँ जब देखती है कि वक्त खाने का हो गया है और साथ में बच्चे के आँखों से नींद महसूस हो रही है, तो माँ खुद किताब को बंद करके बच्चे को उठाती है, बोलो उठो, पहले खाना खाओ और उसके बाद आराम करो, कल सुबह तुम्हें उठाऊँगी। यह है माँ की मोहब्बत, इसको कहते ममता। माँ बच्चे के इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती, भूख बर्दाश्त नहीं करती, माँ बच्चे की नींद नहीं बर्दाश्त करती, यह है मोहब्बत। लेकिन अल्लाह ने मोहब्बत नहीं मांगा, मवद्दत। मवद्दत क्या है? बस उसको इतना समझें जिस माँ ने रात में सुलाया था, खिलाया था और आँखों में नींद देखकर सुलाया, सुलाते हुए एक चादर भी डाल दी कि ज़्यादा सर्दी ना लगे, और जब अजान सुबह हो तो वो माँ अपने बच्चे, सोए हुए बच्चे को

उठाती है। अब आप समझिए मोहब्बत और मवद्दत किसे कहते हैं। दीन हमसे मवद्दत चाहता है, माँ का सुला देना मोहब्बत है, उसी सोए हुए बच्चे को दीन के खातिर उठा देना मवद्दत है। इस मवद्दत को कुर्बानी कहते हैं, माँ अपनी चाहतों की कुर्बानी देती है और दीन में इसके बग़ैर कामयाबी नहीं है। और इमाम हुसैन ने दीन से मवद्दत का इजहार किया, यानी कुर्बानी दी, चाहा नहीं, ज़बानी खर्च नहीं की। ए नाना के दीन तेरे खातिर अगर मदीना छोड़ना है तो मैं राज़ी, मक्का छोड़ना है, हज को उम्रे में बदलना है तो मैं राज़ी, तेरे खातिर मुझे करबला में प्यासा रहना है तो मैं तेरे लिए हाजिर, अगर पूरा घर खानवादा लुटाना है ए दीन तेरे लिए मैं हाजिर। ये थे ज़ाते गिरामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अपने भरे घर को दीन के खातिर जो है कुर्बान किया। अल्लाह ताला हमसे इस खानवादे की मोहब्बत नहीं मवद्दत का मुतालबा कर रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला आपके और हम सब के तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। और ये दीन जो इतनी मेहनतों के साथ मेहनतों के बाद हम तक आया है, इसकी क़दरदानी करने की हमें तौफीक अता फरमाए। ये मोहब्बत को समझें दुनिया, मवद्दत को समझे दुनिया। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इसी मवद्दत के मातहत ये इरशाद फरमाया, मोहब्बत अलग चीज़ है, मवद्दत करनी पड़ती है। आपका दिल नहीं चाहता रोज़ा रखने को, रखना पड़ता है, नफ्स को कुचलना पड़ता है, रूह अपने नफ्स को मजबूर करना पड़ता है। नमाज़ के लिए दिल नहीं चाहता, उठो और जाओ और वज़ू करो, दिल नहीं चाहता अपने आप को बहुत पाक और साफ़ रखने का, उसको पाक और साफ़ रखो। इन कुर्बानियों के बाद ही मवद्दत की ये मंजिल हासिल होती है। कुर्बानी के बग़ैर जो है दीन में कामयाबी नहीं है। और अहले बैत से मवद्दत कहा है, मवद्दत यानी उन्होंने जो कह दिया उसके करने के लिए हमें सब कुछ मान जो है निछावर करना पड़ता है, अपनी अना को कुर्बान करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। अज़ीज़ान गिरामी, रिसालत मआब ने इस खुरबा का तारुफ कराया, किस से मवद्दत, हर गैर आयरे गैरे से नहीं, मेरा वो खानवादा जिसे अल्लाह ने लोगों की इस्लाह के लिए भेजा है। फिर हर एक का तारुफ अलग अलग मकाम पे किया। हज से वापसी के बाद आपने गदीर कुम में अली मुर्तज़ा के लिए फरमाया, मैं मन कुन तो मौला हो फ़ादा अली उन मौला, मैं जिसका मौला हैं या अली उसके मौला हैं। फिर वो वक्त भी आया कि आपने तारुफ कराया इमाम हुसैन का, ये कहते हुए हाजा हुसैनुन फ़ारिफ़ु, ये हुसैन है इसे पहचानो। अज़ीज़ान गिरामी, गदीर में कहा मन कुंत मौला फ़हाजा हाजा, ये अली मौला, यानि हर एक मौला नहीं जिसको आज मैं बता रहा हूँ, ये अली नाम रख लेने वाला जो भी रख ले अली, वो अली नहीं, ये शख्सियत, इशारा करके ये वाली ज़ात। और फिर यही मामला मदीने में मस्जिद नबवी में, अपनी मस्जिद में ये कहते हुए हाजा हुसैनुन, ये हुसैन है इसे पहचानो। मन अहब्बा हुसैना, जो अल्लाह उसे चाहता है जो हुसैन को चाहता है, जो अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस मरहले को समझ सकें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी को दीन के खातिर क़ुरबान किया। और अज़ीज़ान गिरामी, करबला हमारे लिए दर्सगाह है। करबला में किस किस तरह के वहब कल्बी का आना और जनाब हुर का आना, जनाब सईद का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पर अपनी जान का निसावर कर देना, करबला इबरतों से भरा हुआ है। और इमाम हुसैन ने शब आसूर चिराग बुझा कर कहा था, जिसे जाना हो चले जाएं,
इमाम ने बुलाया नहीं अल्लाह।

कि नुसरत भी आ रही थी। अल्लाह आजमाना चाहता था कि आज हुसैन मेरी मदद के यानी एजाज के साथ जंग को फतह करना चाहता है या कमाल के साथ, आज हुसैन इम्तिहान देता है या मौजज़ा दिखाता है। करबला मौजज़ा दिखाने की जगह नहीं थी, करबला कुर्बानी की जगह थी, इम्तिहान देने की जगह थी। सख्त तरीन इम्तिहान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिया, और ये वो करबला है जहाँ से अनबिया का गुज़र हुआ, और अनबिया भी यहाँ से गुज़रे हैं, और हर एक के अलग अलग अपने दौर के वाक़ियात हैं। मसलन जनाब ईसा का गुज़र कहीं के तरफ हो रहा था, रास्ते में करबला पड़ी, ज़मीन करबला के पास जब पहुँचे तो एक शेर रास्ते में हायल हो गया, वो आके रुक गया, आगे बढ़ने नहीं देता है। आपने उस शेर से कलाम किया, ऐ शेर तू हमारे साथ क्यों इस तरह का कर रहा है, हमसे क्या ऐसी गलती हुई जिसकी ये सज़ा हम समझें। कहा आपसे कोई गलती नहीं ऐ नबी अल्लाह, ये वो सरज़मीन है जिसे करबला कहते हैं, यहाँ आपके नबी का लवाथा हुसैन शहीद होगा, बस ये कहना था। नाम हुसैन की वो अज़मत आपने जैसा ही नाम सुना आंखें नम हो गई, आपने फरमाया ये हुसैन का नबी, ये नबी का नवासा हुसैन, इसे दुनिया क्यों इतने अजीम शख्सियत को कत्ल करेगी, और ये पूछते हुए पूछा इसको कत्ल कौन करेगा, तो आपको बताया उस शेर ने कि इस इन्हें कत्ल करने वाला यजीद मलऊन है, यहाँ से कोई शख्स नहीं गुज़रा जब तक कि उसने हुसैन पे आंसू ना बहाए हों और यजीद पे लानत ना की हो। जनाब ईसा ने हुसैन की शहादत पे आंसू बहाए और यजीद मलऊन पे लानत भेजी। यही यानी हमें इस वाक़े से दर्स मिला कि ज़िंदगी के बहुत से रास्ते हमारे बंद नज़र आते हैं, उस रास्ते से गुज़रने के लिए दो काम करना है, याद हुसैन में मसरूफ़ होते हुए आंसू बहा लेना है, और क़ातिल हुसैन पे लानत भेजना है। मुश्किलात खुद रास्ते से हट जाएंगी। यही नहीं, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का गुज़र भी करबला की तरफ से हुआ और आपको ठोकर लगी, खून जारी हो गया और आप ज़मीन पे गिरे तो पेशानी टकराई। अज़ीज़ाने गिरामी, आपने भी खुदा से फरियाद की तो खुदा ने वही फरमाई, इब्राहीम ये ज़मीन करबला है, हमने चाहा कि तुम्हारा भी खून का ख़तरा यहाँ पे बहे। पूछने लगे कि यहाँ ये ज़मीन करबला की, यहाँ कौन शहीद होगा, ये वो ज़मीन है, अल्लाह ने कहा जहाँ पे हुसैन, कौन हुसैन, आपको बताया गया नबी का नवासा। तो जनाब इब्राहीम ने वो सब पूछते रहे और आखिर में जब पूछा, जुल्म की दास्तान सुनी तो रोने लगे, और जब रोए और उसके बाद जनाब इमाम हुसैन के कातिल पे लानत भेजी तो खून कदमों से रुका और आपको राहत मिली और आप आगे बढ़े। ये है करबला की ज़मीन जहाँ से अनबिया गुज़रे और हर एक ने इमाम हुसैन की याद में आंसू बहाए और हर एक ने इमाम के दुश्मन पे लानत भेजी। आज़ादारान ने सैयदुश्शहदा, ये वो ज़मीन करबला है जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बड़ी बड़ी क़ुरबानियाँ दीं, जिनमें से जनाब हुर खुद आए और शहादत की भीख मांगी और गए और आप क़ुरबान हो गए। और उसमें किस तरह से क़ुरबानी, वो हुर के जिन्हें रात भर टहलते हुए बेचैन देखा तो बेटे ने कहा, ग़ुलाम ने कहा, बाबा आखा ये क्या कर रहे हैं आप, तो सिपह सालारे का ना, आज मैं परेशान हूँ और जन्नत और जहन्नम के दरमियान टहल रहा हूँ। कहा आप तो लश्कर के सिपह सालार का ना, एक तरफ जन्नत है एक तरफ जहन्नम है। वो वक्त भी आया कि हुर ने सुबह फ़ैसला किया रोज़े आशूरा और इमाम हुसैन के तरफ जब जाने लगे तो अज़ादारो आवाज़ दी गई जालिमों ने, अरे तुम क्या लश्कर छोड़ के जा रहे हो, बहती दरिया ठंडा पानी छोड़ के जा रहे हो, प्यासों की तरफ जा रहे हो, कत्ल के तरफ जा रहे हो। हुर ने कहा ये मख्तसर सी ज़िंदगी।

0: आखरत पर हमारी जाने हुसैन पे जाने क़ुरबान, ये ज़िंदगी आखरत के लिए है। अज़ीज़ाने गिरामी, जनाब हुर अलैहिस्सलाम जो अभी तक कुछ और थे इमाम हुसैन के तरफ जब चले तो उधर भी इस्तक़बाल हुआ। रास्ते में हुर अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे हाथों को पीछे बांध दिया जाए ताकि मैं हुसैन की खिदमत अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाऊँ तो एक असीर के तरह से जाऊँ, और उसके बाद सर पर एक कपड़ा डाल लिया ताकि ये चेहरा दिखाने के लायक नहीं है। आप आए जब करबला के इमाम हुसैन की खिदमत में तो जनाब अली अकबर वाले जनाब आउन मोहम्मद और अब्बास अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, लेके आए कदमों पे जनाब हुर अलैहिस्सलाम गिरे, इमाम ने उठा के सीने से लगाया, और उसके बाद यहाँ तक वो मंजिल आई। बहुत सारी बातें छोड़ रहा हूँ वक्त की वजह से, कि जनाब हुर ने कहा आका सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा आप पर क़ुरबान हो, मेरे सामने क़ुरबान होता हुआ देखूं। इमाम ने मना किया, कहा कि आका ने पहले मेरा बेटा शहीद होगा। हुर का बेटा गया नरगे आदा में, कई को वासिले जहन्नम किया। वह वक्त भी आया कि जालिमों ने घेर के शहीद का डाला। हुर का बेटा जब ज़मीन पे आया, हुर उठा अपने बेटे के तरफ जाने के लिए, इमाम ने बाजू पे शाने पे हाथ रख के बिठाया, कहुर जवान बेटे पे बाप नहीं जाता। आज़ादारा ने सैयदुश्शोहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए तारीख ने लिखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद गए और लाशे पर उसके ज़ख्मों को साफ़ किया। मैं कहूँगा हुर खुश नसीब हो कि तुम्हारे लिए हुसैन जैसा आका मिल गया कि जिसने बेटे के लाश में तेरा सहारा दिया। लेकिन आए हुरा वो वक्त तुम होते और अपने आँखों से देखते। आज़ादारा ने सैयदुश्शोहदा के जहाँ जवान बेटा है और बाप लाशे पे बैठे हुए हैं। बस अलमख्तसर वो वक्त भी आया कि हुर ने इजाज़त मांगी और मैदान में आए, और वो वक्त भी आया कि हुर को जालिमों ने घेर के कत्ल कर डाला। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, हुर जब शहीद हो के ज़मीन पर आए, इमाम हुसैन ने ज़ख्मों को साफ़ किया, और उसके बाद एक ऐसा ज़ख़्म था जिस पे खून नहीं रुक रहा था। इमाम हुसैन ने जेब में हाथ डालकर एक रुमाल निकाला। तारीख़ ने बताया कि ये वो रुमाल था जो माँ जहरा ने दिया था। अज़ादारों वो रुमाल को कस के उस ज़ख़्म पे पेशानी पे तीर के वजह से जो खून जारी था उस पेशानी पे रुमाल को बांधा। तारीख़ ने लिखा कि उस रुमाल के बांधने से खून रुक गया। मैं यहीं पर गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। ऐ हुर खुश नसीब हो कि तुम्हें एक तुम्हारा एक ज़ख्म हुसैन को इतना अजीब दिखा कि खून नहीं रुक रहा था तो इमाम ने रुमाल बांध दिया, इसलिए कि और भी ज़ख्म थे मगर ये ज़ख्म से खून तेज़ी से बह रहा था। ये रुमाल मिल गया और तुम्हारा खून रुक गया, मगर तुम्हारी शहादत के बाद हुसैन को जालिम ने घेर कर इस तरह से मारा कि सारे बदन में तीरों तलवार, और हुसैन जो है ज़ख्मों पे ज़ख्मे खा रहे थे। और तुम्हें रुमाल मिला, हुसैन के लिए कोई पुरसा नहीं।
1: मौज़ सामीन, अभी आप समात फरमा रहे थे मौलाना अली अकबर साहब की ज़ुबानी एक बयान। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। बेटी रुकैया, बीवी ताजमून, दामाद समीर और नवासे नवासियां सुमैरा और रुमैसा और सुमैया, मरहूम वालिद रफ़ीक गुलामन जिनकी आज तीसरी बरसी है, उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। इसके अलावा हमें आसिया ने एक पैगाम भेजा है जिसमें वो मुहर्रम की मुबारकबाद पेश कर रही हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों की مغفرت فرمائے اور ہم پر اپنی رحمتیں عطا کرے. اس کے علاوہ وہ تمام مرحومین کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک تمام مرحومین کو عذاب قبر سے بچائے. اور اسی کے ساتھ ہمیں موصول ہوا تھا ایک پیغام بندو اور کومالی فیملیز, اور محسن نے بھی ہم سے ایک کلام کی فرمائش کی تھی. اس کے علاوہ نیو خوف کی فاطمہ بھی جمعے کی

मुबारकबाद पेश कर रही हैं। इसी के साथ हमारी उर्दू मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। आप तमाम सुनने वालों को मुहर्रम का पहला जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

घड़ी मिला लीजिए दोस्तों, इस समय स्टूडियो की घड़ी में बिल्कुल 2:30 बज चुके हैं। ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का रेडियो मॉरिशस यानी AM2 प्रसारण है। मीडियम वाट्स 19 किलोहर्ट्ज़ पर से हमारा ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं। अभी से लेकर 4:15 बजे तक आपकी का पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद को लेकर उपस्थित हो चुकी है रत्ना। हमारा सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें और आशा करते हैं कि आप जहाँ कहीं से भी साथ देंगे बहुत ही प्यार से साथ निभाएंगे और इस खूबसूरत से दिन को, खूबसूरत से मौके को और भी तरोताज़ा और भी स्पेशल बनाने के लिए आपके पसंदीदा गीतों को हम तक ज़रूर पहुंचाइए। 4028085 हमारा नंबर है और मैसेज के लिए 5251700 पर। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज के इस सफ़र में ज़रूर हमारा साथ दीजिए और 90s के ज़माने का ये हसीन गाना और इस फिल्म में नज़र आई थी एक ऐसी प्यारी सी जोड़ी जो दर्शकों को बेहद पसंद आई थी, सनी देओल और जूही चावला की, और विलन के रोल में नज़र आए थे शाहरुख खान। किरण, बिल्कुल डर फिल्म का ये गाना। आइए करते हैं एक बहुत ही प्यारी सी रोमांटिक सी शुरुआत।

आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखेंगे। और आज की ये पहली पसंद आई है श्यामा जी की ओर से। श्यामा जी ने मांगा है एक बहुत ही प्यारा सा पुराना सा गीत, मदर इंडिया फिल्म से लिया हुआ और ये बहुत ही मज़ेदार लाजवाब सा गाना लता जी की प्यारी सी आवाज़ में। तो चलिए ये गाना हम करेंगे सभी रघुनंदन परिवार के लिए, खासकर उनके भैया जयप्रकाश, भाभी है नम्रता, केशव और युधीश उनके दो भगिना, और साथ ही साथ उनकी दो प्यारी सखियां विश्वानियों और वीना रामफल और सभी सुनने वालों के नाम। बिल्कुल इस फिल्म में नजर आई थी नरगिस और राजकुमार साहब।

0: आपकी पसंद।
1: आपकी पसंद कार्यक्रम जारी रखते हुए अनीता जी त्रियोले से साथ दे रही हैं। वे भी कह रही हैं ठंड बढ़ रही है, तो चलिए इस ठंडे ठंडे मौसम में प्यार भरे गीतों की गर्मी और यही से आगे बढ़ते हुए बादल फिल्म का ये अगला गीत मन्ना डे साहब की आवाज में आपने चुना है। अंजू और वेद आपकी बेटी और दामाद, बेटा है सचिन, बहू है पूजा, साथ है पोता आपका कियांश और पोती है सिया और आपके सभी परिवार के नाम।

इसी को तो कहते हैं जिंदगी, जिए तो दूसरों के लिए जिए, खुद के लिए जिए तो क्या जिए। और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी परछाइयां ये फिल्म उदय जी के नाम करेंगे रिवेज पोस्ट से। वे साथ दे रहे हैं उनकी प्यारी पत्नी संगीता, साथ है बेटी स्मृति और उनकी प्यारी बेटी कीर्ति, दामाद है नागेश और बौशेरी से साथ दे रहे हैं उनकी समधन ज्योति, समधी है सुनील और प्यारा सा नानू केयान और सभी लखन परिवार के नाम जो हैं बौशेरी के रहने वाले। फिल्म है आपकी परछाइयां, मोहम्मद रफी साहब की प्यारी सी आवाज, यही नाम यही गाना हम करेंगे रूमा जी, आरती और इंदिरा के लिए, भाई हैं राकेश और धीरज, बेटा है नमलेश और बेटी कीर्तिना के लिए।

नहीं, प्यार हो तो ऐसा हो, किसी भी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। और चलिए इसी के साथ अगले गीत को लेते हैं, और ये जो गाना है फिल्म बेईमान से लिया हुआ। जी हाँ, रेहाना जी ने इस गीत की फरमाइश की है नॉर्थ-ए-दम से उनकी प्यारी सखी माला फाउदा और सुरेखा जी के लिए लता जी की प्यारी सी आवाज़। ओहो, ये तो है एक अगला गीत। चलिए इस गीत को हम करेंगे शिवरानी जी के लिए जो है लॉन्ग माउंटेन से, और आज जन्मदिन मना रही है उनकी प्यारी बहन संगीता पिचगाफे से, और उन्होंने ये गीत की फरमाइश की थी। चलिए फिलहाल ये गाना सुनते हैं और इसके बाद बेईमान का गाना रेहाना जी आपके लिए।

जितने भी लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, बिल्कुल अपनों का प्यार, अपनों का आशीर्वाद, ये सबसे बड़ी ताकत होती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और यही आपको हमेशा मिलती रहे, यही हमारा बूस्टर डोज है। और चलिए इसी के साथ यहाँ पर 2:56 हो चुके हैं, अगले गीत को लेते हैं। जी हाँ, बेईमान का ये गाना हम चलाएंगे अभी थोड़ी ही देर में, क्योंकि गाना काफ़ी लंबा है तो हम ज़रूर इस गाने को काटना नहीं चाहेंगे, इसीलिए आपके लिए बस थोड़ा सा इंतज़ार आपको करवाएंगे। अभी थोड़ी ही देर में इस गीत को हम आगे बढ़ाएंगे, पर उससे पहले लेते हैं ये गाना। फिल्म है इंतकाम से लिया हुआ, विश्वानी दुमन के नाम, जो वाकवा से साथ दे रही हैं शारदा, इंदिरा, नीला, प्रतिभा, शोभा जी और गीता गजाधर के लिए। और यही गाना हमें जोड़ेगा 3:00 के समाचारों के साथ। लता जी की प्यारी सी आवाज, 1969 के दौर का ये गीत, और यही गाना बिल्कुल 3:00 के समाचारों की ओर हमें ले चलेगा। समाचारों के बाद कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, सुपहर के ठीक 3 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं 3 बजे के समाचारों के साथ।

0: तीन बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। आज देश की निगाहें राज्यसभा पर टिकी हुई हैं, जहां प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम शाम 5 बजे वर्ष 2026-2027 का बजट पेश करेंगे। आर्थिक चुनौतियों और बढ़ती जीवन यापन लागत के बीच प्रस्तुत किए जाने वाले इस बजट से आम जनता, व्यापार जगत, निवेशकों, किसानों, युवाओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों को काफी उम्मीदें हैं। महंगाई, क्रय शक्ति, आवास, रोजगार के अवसर, कृषि सेक्टर की मजबूती तथा आर्थिक विकास को नई गति देने वाले कदमों पर विशेष ध्यान रहने की संभावना है। वहीं सामाजिक सेक्टर से जुड़े संगठन और गैर सरकारी संस्थाएं भी ऐसे ठोस प्रावधानों की अपेक्षा कर रही हैं जो जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। आज सुबह RM1 के कार्यक्रम में कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल ने बजट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी। बातचीत के दौरान उनसे ये पूछा गया कि ये बजट जनता के लिए राहत लेकर आएगा या कठिन फैसलों का संदेश देगा। नई पेंशन व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों पर भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। तो बजट भाषण का सीधा प्रसारण शाम 5 बजे से MBC 1, MBC 7 और MBC Play पर किया जाएगा। साथ ही क्रियोल, भोजपुरी और अन्य माध्यमों से भी दर्शकों तथा श्रोताओं के लिए विशेष अनुवाद की व्यवस्था की गई है। बजट प्रस्तुति के बाद विशेष विश्लेषण कार्यक्रमों में राजनीतिक नेताओं, अर्थशास्त्रियों और विभिन्न सामाजिक आर्थिक सेक्टरों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रमुख घोषणाओं पर चर्चा की जाएगी तथा उनके संभावित प्रभावों का आकलन किया जाएगा। संगीत की कोई सीमा नहीं होती और यही संदेश लेकर MBC में इस वर्ष भी म्यूजिक डे मनाया जा रहा है। इस खास अवसर पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने अपने रोजमर्रा के कार्यों से थोड़ा समय निकालकर अपनी एक अहम पहचान दिखाई है। किसी के लिए संगीत एक जुनून है तो किसी के लिए दिल की अभिव्यक्ति का माध्यम, और इसी भावना के साथ सभी एक बड़े कहाव के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उत्साह, मित्रता और संगीत का सुंदर संगम देखने को मिला। प्रतिभा, मेलजोल और संगीत के प्रति प्रेम को समर्पित ये विशेष कार्यक्रम दर्शकों के लिए इस शनिवार 8:30 बजे MBC 2 पर प्रसारित किया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली प्रत्यक्ष वार्ता का नया दौर फिलहाल टाल दिया गया है, क्योंकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD Vance ने अपनी स्विट्जरलैंड यात्रा स्थगित कर दी है। व्हाइट हाउस के अनुसार वार्ता की तैयारियां अभी पूरी नहीं हो सकी हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देशों के बीच हाल ही में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से एक समझौता हुआ था और अमेरिका ने ईरान पर लगाया गया नौसैनिक नाकाबंदी भी हटा दी थी। हालांकि समझौते में लेबनान में हिंसा रोकने की बात भी शामिल है, लेकिन दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों और जारी तनाव के कारण वार्ता की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
1: On the hour, every hour, radio marches.
2: घड़ी मिला लीजिए, समय बिल्कुल 3:04 हो चुके हैं। और ये आगे बढ़ने से पहले कुछ विज्ञप्तियों पर नज़र डालते हैं। ये विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई है। बेजुतोंबो के आसपास के इलाके जिनमें हैं मौसलमा फोंसिंग, मौसलमा स्वान, डॉकर्स विलेज, स्कूल लेन और कुछ इलाके लाहौद कुछ ये के निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 21 जून को सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 3 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। साथ ही साथ गौंद खतखत के आसपास के इलाके जिनमें है बुनाकेई, लापुस, SSS, जिमनास, इस्कॉन और कुछ इलाके साचुकुलन रोड के निवासियों को भी सूचित किया जाता है कि रविवार

21 जून को सुबह 8:15 बजे से लेकर दिन के 4 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती रहेगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए इसी के साथ आगे का कार्यक्रम

0: आपकी पसंद कार्यक्रम जो चलता है रोज इसी समय और 3:05 हो चुके हैं, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए अगले गीत को लेते हैं। जैसे हमने बताया था, फिल्म है बेईमान और ये गाना नोत्रदाम से रिहाना जी हमारा साथ दे रही हैं और ये गाना ये मांगती हैं माला फाउदा और सुरेखा जी के नाम, जो उनकी प्यारी खास दो सखियाँ हैं। और इस गीत को बिल्कुल फिल्माया गया था मनोज कुमार साहब पर।
1: बोलो बेईमान की।

0: आपकी पसंद।
1: आपकी पसंद कार्यक्रम जारी रखते हुए और अगला गाना जो है फिल्म माँ बाप से लिया हुआ, माला सुमारू जी की पसंद पर काठोबोन से वे साथ दे रही हैं, उनके पति हैं सूर्यदेव जो हमेशा साथ देते हैं, और सभी सुनने वालों के नाम और खासकर माला सुमारू जी अपने सभी सुमारू परिवार के नाम ये गाना डेडिकेट करना चाहती हैं।

0: आपकी पसंद।
1: आपकी पसंद बहुत ही प्यार से इस कार्यक्रम को हम सजा रहे हैं आप ही के पसंदीदा गीतों के साथ। और यहाँ पर चलिए, तायाक के लिशनव का बर्थडे है आज, और उनकी प्यारी दादी मामा देवीना, पापा है अश्विन, भैया रक्षित, साथ है नाना नानी ऑस्ट्रेलिया से, और पुपू वर्षा, पुपा है विमल, सभी कजन्स के नाम निया, वीर, मालेंगा से है दीदी, अनुषा, किरण, केशनी, कृषाई, प्रनीता, वंश, वैभव, सभी राम रतन, राम गुलाम और कुआरू परिवार, साथ है गुरन सिंह परिवार के नाम। तो चलिए, ये पैगाम आई मिलन की बेला से लिया हुआ एक आशीर्वाद के रूप में गाना आपके नाम करेंगे।

चलिए कार्यक्रम को जारी रखते हैं और संबंध को और भी गहरा बनाता हुआ ये अगला गीत। फिल्म है संबंध और कमला जी हमारे साथ जुड़ी हुई है मौत अब्बास से और ये अगला गाना हम करेंगे उनके नाम। साथ है आरोही और उनकी खास सखी सीता बोगू और उनका नाती रियांश और सभी दीनू और रामधनी परिवार के लिए। तो बस सुनते रहें आपकी पसंद कार्यक्रम।

पैगाम। और ये गाना जाएगा गायत्री जी के लिए, गायत्री जी का पसंदीदा गीत। और सैपिया से भी हमारा साथ दे रही हैं उनकी प्यारी बहन अमृता, साथ है उनकी तीन प्यारी बेटियां नेहा, क्षिति, दिव्या, भाभी है मीरा, साथ है गिरीशा और मेधा, उनकी दो प्यारी बेटियां, बेटा है सुधीर, कमलेश और बहू सुधा के लिए।

कुछ ऐसे ही लाजवाब गीतों का सिलेक्शन आप चुनकर लाए हैं हमारे लिए और हमारी कोशिश है जारी आपका दिल खुश करने की। और चलिए इसी के साथ ये गाना है शीला जी की पसंद पर, जो दीपी ने से इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं, और बहुत ही अनसुना सा गीत मिट्टी और सोना से, मिट्टी में सोना बिल्कुल लैस फिल्म से लिया हुआ गीत है। आशा ताई की आवाज़ में।

ऐसे ही लाजवाब गीतों का सिलेक्शन जारी है आपकी पसंद कार्यक्रम में। और अगला गीत फिल्म है उजाला और 1959 के दौर का ये अगला गीत हम करेंगे आपके नाम। और जी हाँ, इस गीत की फरमाइश कर रही हैं लीलो जी घोंबुआ से, उनकी चार बहनों के नाम, एक भाई और एक भाभी जो इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं। आवाज़ है मन्नाडे साहब की।

गाने का हर लफ्ज हमें आज की तस्वीर दिखाता है। और चलिए इसी के साथ आपकी पसंद कार्यक्रम के ओर हम आगे बढ़ते हुए निकलते जा रहे हैं। मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, जी हाँ, ये फिल्म का गीत मांगा है श्रीमान कुलन जी ने, जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं हनवल फॉन्स से, उनके सभी दोस्तों के लिए, सभी परिवार के लिए। और आवाज़ें हैं लता जी और किशोर कुमार की।

0: इस खूबसूरत से सफर के समाप्ति तक हम आ पहुंचे हैं, पर जरूर आप सभी के हम नाम जोड़ेंगे। यहाँ पर नसरीन हमारे साथ वाकवा से जुड़ी हुई हैं, अपनी प्यारी दोस्त बबीता के नाम डेडिकेट करना चाह रही थी एक गाना, पर अफसोस गाना समाप्त होने को है, टाइम समाप्त होने को है। पर चलिए, आपके लिए हमेशा हम कोशिश करते रहते हैं दिल से साथ देने की। मुकेश साहब हमारे साथ है, मुकेश मोहन साथ है, दिव्यानी और ये सारे हैं, और ये था वाकवा से हमारा साथ देते हुए। और
1: आपकी पसंद
0: बिल्कुल बंधु परिवार जुड़ा हुआ है हमेशा की तरह। त्रियोले से सरिता जी गुडलैन से साथ दे रही हैं, शकुंतला जी हमारा साथ दे रही है मोताइलोंग से, उनकी प्यारी ननंद गायत्री के साथ बेटा है अजय, और साथ ही साथ अनीता जी हमारा साथ दे रही हैं, अनीता लाल जी, और जुड़ी हुई है करुणा अमृता विनीता और उनके सभी दोस्त, और इसी के साथ आशा जानू हमारे साथ कोटेज से जुड़ी रही, ममा कुमारी और उनकी प्यारी बहन आरती, जीजा रहे राज, और साथ ही साथ शुभम और ऋषभ हमेशा की तरह साथ देते हुए सभी को हैप्पी म्यूजिक डे विश करती हैं आशा जी और सभी जानू परिवार कॉटेज से। और सुनीता जी हमेशा की तरह कॉन्गोप से भजिया बनाते हुए हमारे साथ बात कर रही है और कहती हैं पास होती तो ज़रूर आपको गर्मा गर्म भजिए खिलाते और कॉफ़ी पिलाते, पर चलिए आपने हमें याद किया, सोच लिया, यही हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और चलिए इसी के साथ विमला अमृता वीना जी आपकी तीन प्यारी बहनों का नाम जोड़ते हैं आज के इस प्रोग्राम में। नोवेल फोंस से मानती जी भी हमारा साथ दे रही हैं, अनंती आरती साथ है, आपकी प्यारी बहुएं अनुषा उर्वशी गिरिशा और मितिशा, और पाकिजा का ये गाना आपके नाम करते चलेंगे। और इसी गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। हमारे बाद गुलदस्ता उर्दू कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं निसार अख्तर, ज़रूर आप उनका साथ दीजिएगा और हमें दीजिए इजाज़त, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।

0: वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू ज़बा आए। मोहतरम मोहतशम सामईन, निसार अख्तर की तरफ से आदाब अर्ज हैं। गुलदस्ते उर्दू प्रोग्राम में हम आप तमाम लोगों का दिले बेकरां से इस्तकबाल करते हैं। सामईन, उर्दू स्पीकिंग यूनियन की जानिब से इमसाल कौमी उर्दू मुकाबले 2026 मुनाकिद हुए थे, जिनमें स्केच, न्यूज़ रीडिंग, स्पीच और बैतबाजी जैसे मुकाबले शामिल रहे। पीर 15 जून को इस्लामिक कल्चरल सेंटर में फिनाले मुकाबला हुआ। इस अजीमुशान तकरीब में उर्दू स्पीकिंग यूनियन की सदर मोहतरमा आबिदा ज़ैनब अलादी ने अपनी इस्तकबालिया तकरीर में इन अल्फाज से तमाम तलबा व तालिबात की हिम्मत अफजाई की।
1: मैं इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तमाम तलबा व तालिबात को मुबारकबाद पेश करती हूँ और उन उम्मीदवारों को खराज तहसीन पेश करती हूँ जिन्होंने अपनी काबिलियत और मेहनत के बल पर फाइनल मरहले तक रसाई हासिल की है। आज आप में से हर एक अपनी मेहनत और लगन का नुमाइंदा है। पूरे एतमाद और हौसले के साथ अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पेश कीजिए और इस यादगार मौके पर भरपूर इस्तफादा कीजिए। मेरे अजीज़ तलबा व तालिबात, ज़िंदगी में कामयाबी का सफ़र आसान नहीं होता, रास्ते में मुश्किलात आते हैं, लेकिन हौसला और इस्तकामत इंसान को आगे बढ़ने की ताकत अता करती है। और याद रखिए कि हर तजुर्बा इंसान को कुछ न कुछ सिखाता है, तो अपने आप पर यकीन रख कर मुस्कुराते जाएं और हर हाल में आगे बढ़ने का अज़्म कायम रखते जाएं।
0: खबर खानी यानी न्यूज़ रीडिंग के मैदान में 6 उम्मीदवारों ने अपने अपने अंदाज से सबको मुतासर किया। बिलाखिर कौचे मिलते एसएसएस से गुमजुन हानिया पहली पोजीशन पर आई।
2: मोहतरम नासरीन आदाब, आज का रोज पीर 11 में है और आप देख रहे हैं सदाए वतन। मॉरिशस और बीरुन मुल्कों की ताज़ा खबरों के साथ आज मैं हानिया हाजिर हूँ। आगाज करते हैं। मॉरिशस ने इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के शोबे में नुमाया कामयाबी हासिल की है। हुकूमत की जानिब से मुल्क के दूर दराज इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट की फराहमी के बाद अब मॉरिशस अफ्रीका का एक अहम डिजिटल हब बनकर उभर रहा है। माहिरीन का कहना है कि इंटरनेट के उस वसी इस्तेमाल से न सिर्फ कारोबार में आसानी पैदा हो रही है, बल्कि नौजवानों के लिए घर बैठे रोजगार के नए मौके भी पैदा हो रहे हैं। तालीमी मैदान से भी ये खबर शामिल करते हैं कि वजारत तालीम ने 9वीं जमात के तलबा के लिए नया डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उस इंटरनेट पोर्टल के जरिए तलबा वीडियो लेक्चर्स और ई बुक्स तक मुफ्त रसाई हासिल कर सकेंगे। इस कदम का मकसद तालीम को हर बच्चे के लिए आसान और दिलचस्प बनाना है। नाज़रीन, खबरों को जारी रखते हैं। हुकूमत मॉरिशस ने क्लीन मॉरिशस मुहिम के तहत स्कूलों

0: में एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक यानी सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी पाबंदी लगाने का फैसला किया है। उसका मकसद हमारे खूबसूरत साहिलों और समंदरी जिंदगी को आलूगी से बचाना है। अब तलबा को हौसला दिया जा रहा है कि वो कपड़े के थैले और स्टील की बोतलें इस्तेमाल करें। अगली अहम खबर है ज़राअत में नौजवानों की शमूलियत। वज़ारत ज़राअत ने एग्रो एकोलॉजिकल फार्मिंग के हवाले से नौजवानों के लिए नए प्रोग्राम का ऐलान किया है। उसका मकसद तलबा और नौजवान नस्ल को जदीद और कुदरती तरीकों से खेती बाड़ी करने की तरफ रागब करना है ताकि मुल्क गिज़ा में खुद कफील हो सकें। नाजरीन, अब रुख करते हैं आलमी हालात हाजरा की जानिब। एक बैन अक्वामी क्रूज शिप पर हंटा वायरस के केसर सामने आने के बाद कनाडा और अमेरिका में मुसाफिरों को आइसोलेट कर दिया गया है। आलमी इदारा सेहत WHO का कहना है कि अगर छः सूरत हाल काबू में है लेकिन एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना लाजमी है। अगली खबर ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखती है जहां जानवरों की हिफाजत के लिए नए फैसले किए गए हैं। जानवरों को नुकसान पहुंचाने से रोका जाएगा और उनके लिए महफूज जगहें बनाई जाएंगी। अब जानवरों को कॉस्मेटिक्स के तजुर्बागाहों में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हुकूमत का कहना है कि जो लोग जानवरों को नुकसान पहुंचाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। माहिरों के मुताबिक जानवरों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये माहौल के तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं। नाजरीन, खेलकूद की दुनिया में कदम रखते हैं। मॉरिशस की जूनियर फुटबॉल टीम ने अफ्रीकन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वजीर खेल जनाब देवन नगालिंगम ने खिलाड़ियों के लिए खसूसी इनामात का ऐलान किया है और ये उम्मीद भी जाहिर की है कि फाइनल की ट्रॉफी मॉरिशस की आएगी। आइए आखिर में नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मॉरिशस में आज मौसम मजमूई तौर पर खुशगवार रहेगा। मशरिकी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है जबकि समंदर में लहरों की शिद्दत मामूल के मुताबिक रहेगी। नाजरीन मोहतरम, ये थी अब तक की अहम खबरें। अगली मुलाकात तक अपनी मेजबान हानिया को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।
1: सामईन, गुलदस्ते उर्दू प्रोग्राम में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। तकरीर के मुकाबले में भी 6 उम्मीदवारों ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया, मगर बेहतरीन खिताब धूपनाथ गामफल स्टेट कॉलेज से एदू सबीहा बीबी का रहा और उन्होंने अव्वल मकाम हासिल किया। आइए सर शिवसागर राम गुलाम पर मबनी उनकी तकरीर समाप्त कीजिए।
2: तमाम हाजरीन को मेरा सलाम। मैं बीबी सबीहा इदू हूँ। मैं धूपनाथ गामफल स्टेट कॉलेज की 10वीं जमात की एक तालिबा हूँ। मैं यहाँ उर्दू स्पीकिंग यूनियन के ज़ेर एहतमाम मुनाकिदा तकरीरी मुकाबले में शिरकत करने आई हूँ। मुकाबले का मौजू है सर शिव सागर राम गुलाम की जिंदगी, खिदमत और कारनामे। वो रहनुमा था सच्चा, वो सबका सहारा था। वो रहनुमा था सच्चा, वो सबका सहारा था। अंधेरों में रोशनी वो चमकता सितारा था। ना दौलत ना शोहरत ना कोई गुरूर था, वो सादा सा इंसान मगर बावकार था। मोहतरम मेंबरानी जूरी, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस अजीम हस्ती के बारे में लबकुशाई करने का सुनहरा मौका मिला वो कोई और नहीं बल्कि सर शिव सागर राम गुलाम हैं, जिन्हें हम फख्र और मोहब्बत से बाबाए कौम, फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं। सर शिव सागर राम गुलाम चाचा राम गुलाम के नाम से भी मशहूर हुए। अहले मॉरिशस के दरमियान ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक मोहब्बत है, एक जज्बा है जो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। दर हकीकत सर शिव सागर राम गुलाम की लाजवाब खिदमत से कौम को नई जिंदगी मिली, मायूसी

0: और उम्मीद के रोशन किरने दिल में जाग उठी। हाजरीन महफिल, अगर आज हम इस जन्नत नुमा मुल्क में आजादी और अमन सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं तो इसके पीछे बिला शुबह सर शिव सागर राम गुलाम की अनगिनत मेहनत और कुर्बानियां हैं। जजीरा मॉरिशस 12 मार्च 1968 को आजाद हुआ और चाचा राम गुलाम ही इस मुल्क के पहले वजीर आजम हुए। सर शिव सागर राम गुलाम ने बड़ी जिम्मेदारी से मॉरिशस की क़यादत संभाली और मुसलसल जद्दोजहद के बाद मॉरिशस को तरक्की की राह पर गामजन किया। ख़वातीन हज़रात, सर शिव सागर राम गुलाम जो पूरी दुनिया में मशहूर हुए वो दरअसल एक सादा घराने से ताल्लुक रखते थे। वो केवल नगर का एक होनहार बाशिंदा था और मजदूर की औलाद थी। उनकी पैदाइश 18 सितंबर 1900 को हुई। पहले कैप्टनाइज स्कूल में अपनी तालीम शुरू की, फिर उन्होंने रॉयल कॉलेज क्यूबिक में सातवीं तालीम हासिल की। आला तालीम के लिए वो लंदन गए। इंग्लिस्तान में अपने क्याम के दौरान उन्होंने सियासत में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। जब सर शिव सागर राम गुलाम मॉरिशस वापस आए तो ये दिलचस्पी मॉरिशस वालों के लिए एक नियामत साबित हुई। सर शिव सागर राम गुलाम का वजीर आजम बनना अवाम के लिए एक बड़ी बात थी। उन्होंने न सिर्फ मुल्क को आजाद किया बल्कि अवाम के लिए तालीम और सेहत जैसी अहम खिदमात को मुफ्त किया और तरक्की के कई दरवाजे खोले। मिसाल के तौर पर उन्होंने सन 1974 में बेसिक रिटायरमेंट पेंशन स्कीम को एक बाकायदा कानून करार दिया जिसके बदौलत हमारे बड़े बुजुर्ग मुस्तफीद हो रहे हैं। यही नहीं, मजदूरों और गरीबों को अपने हुकूक का एहसास दिलाया। बिल्यकीन ये तमाम कारनामे बाबाए कौम की दूरंदेशी का नतीजा है। इलावा अजीम चाचा राम गुलाम ने सिर्फ एक अजीम रहनुमा थे बल्कि एक सच्चे मुहिब वतन भी थे। वो चाहते थे कि हर इंसान खुशहाल रहे। उनके नज़दीक तालीम ही कामयाबी की कुंजी है। हर बच्चे को तालीम हासिल करने का पूरा पूरा हक है। उनका मानना था कि इल्म को हथियार बनाने से ही कामयाबी हासिल होगी। ख़वातीन हज़रात, ये एक नाकाबिले तर्दीद हकीकत है कि आज दुनिया के कई ममालिक आपस की लड़ाइयों में उलझे हुए हैं, लेकिन मॉरिशस एक कसीरुल मजहब मुल्क की रोशन मिसाल है जहाँ सर शिव सागर राम गुलाम ने भाईचारे इत्तेहाद और अमन को फरोग दिया। वहाँ उन्हीं के काविश का नतीजा है कि आज मॉरिशस में अमन अमान मोहब्बत और हम आहंगी हैं। ताहम आज मैं खुद से और आप सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या वाकई आज की नई नस्ल तालीम को अहमियत दे रही है? क्या हम सर शिव सागर राम गुलाम के ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं? क्या हम उस अजीम रहनुमा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? अगर जवाब नहीं है तो हमें इस पर गौर करने की जरूरत है। आइए हम सब मिलकर अहद करें कि हम सर शिव सागर राम गुलाम की विरासत को आगे बढ़ाएं, उनकी खिदमत और कुर्बानियों को याद रखें और मॉरिशस को अमन सुकून का गहवारा बनाएं। हमारे दिलों में सदा जिंदा रहेगा उसका नाम, हमारे दिलों में सदा जिंदा रहेगा उसका नाम। बाबाए कौम राम गुलाम, तुमको हमारा सलाम। Long live the father of the nation, long live the republic of Mauritius. आपकी तवज्जो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: सामईन, बिलयकीन तमाम उम्मीदवार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उर्दू स्पीकिंग यूनियन की तरफ से तमाम तलबा व तालिबात और असातिज़ाए कराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी मेहनत रहनुमाई और शमूलियत से ये मुकाबला कामयाब हुआ। सामईन, इसी के साथ गुलदस्ते उर्दू प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचता है। निसार अख्तर अब इजाज़त का तलबगार है। अगले जुम्मे को फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।

और मुहर्रमुल हराम इस्लामी नया साल आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज मुहर्रमुल हराम की तीसरी तारीख है। आइए नए साल की दुआ एक साथ समाप्त करते हैं।

وجوارهم من الشيطان اللهم أدخله على

बिलयकीन सामीन, नया साल है, मगर ये नया साल हमको उस वाक़े की तरफ इशारा भी करता है जो इस्लाम का मरकज़ भी है, वाक़ियाते करबला। सामीन, करबला हमें ये सिखाती है कि हक, सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता, मगर यही रास्ता इंसान को सरबुलंद करता है। इमाम हुसैन रदल्लाहु ताला ने हमें बताया कि बातिल के सामने खामोश रहना भी जुर्म है। आज भी अगर इंसान अपने किरदार में हुसैनी रंग पैदा कर ले तो मुआशरा अमन और इंसाफ का गहवारा बन सकता है।

Evil of this new year. Allah Jalla Majdahu ne apne Habib Sallallahu Alaihi Wasallam ke tufail tawassul o tasadduq aur barkat se saal e guzashta ko amn o aman सुकून और इत्मीनान सलामती और पीस से गुजारा और इंशाअल्लाह उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल तसद्दुक वसीला और बरकत से ये साल भी अमन व आश्ती अमन और पीस का साल हो हमारे लिए आपके लिए और पूरी उम्मा के लिए पूरी दुनिया के लिए। हम अहले हक हैं, हम अल्लाह जल्ल मजदहू का अदब और अल्लाह से मोहब्बत, उसके हबीब का अदब और उसके हबीब से मोहब्बत, तमाम नबीहीन से, सिद्दीकीन से, शुहदा और सालिहीन से, अहले बैते मुअज़्ज़मीन से और अस्हाबे मुकर्रमीन से, उलमाए रब्बानीहीन और औलियाए कामिलीन से मोहब्बत करते हैं और उनका अदब करते हैं। आला हजरत ने फरमाया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नाजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। वी लव द कंपेनियंस ऑफ रसूलुल्लाह and we respect them. We love the family members of Rasulullah, Ahlul Bayt, and we respect them. Hamare aqaid ki tamam kitabon mein iski tashreeh maujood hai, isko mention kiya gaya. Chunanche Al Aqeedatut Tahawiyya mein hai कि नहनु नुहिब्बु अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वी लव द कंपेनियंस ऑफ अल्लाह मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अल्लाह के हबीब के अस्हाब से और आल से मोहब्बत करते हैं। फिर अल अकीदतुत तहावीया में मजीद ये मौजूद है कि हुब्बुहुम दीनुन व ईमानुन व एहसान, कि सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत दीन है, ईमान है, एहसान है। व बुग्ज़ुहुम कुफ्रुन व निफाकुन व तुगियान, और उनका बुग्ज़ ये कुफ्र है, निफाक है, दजल है और सरकशी। अल्लाह जल्ल मजदहू ने हमें ये साफ सुथरा अकीदा अता किया। हम हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं और अहले हक अहले सुन्ना वल जमात नमाज के बाहर भी बेशुमार ऐसे मौके हैं कि जिनमें सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। हर नमाज के बाद अल फातिहा का माना होता है इकराऊ अल फातिहा। ओ पीपल प्लीज रीड रिसाइट सूरतुल फातिहा। लोगों सूरह फातिहा पढ़ो। उसके बाद उस दुआ में शरीक लोग सूरह फातिहा पढ़ते हैं।

सूरह फातिहा में हम अल्लाह से ये दुआ बार बार मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधी राह चला, हमें सीधी राह चला। अब वो सीधी राह क्या है, वो सीधा रास्ता क्या है? वो सीधा रास्ता अहले हक के अकायद है, अल अकायदु सहीहा, हिया सिरातुल मुस्तकीम, द राइट बिलीव्स, द गुड बिलीव्स आर सिरात मुस्तकीम, द राइट पाथ, द राइट वे। अहले हक के सही अकायद, यही सिरात मुस्तकीम है, जिसकी दुआ हम जब भी सूरह फातिहा पढ़ते हैं उसमें अल्लाह से मांगते हैं। और ये दुआ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सूरह फातिहा को हर नमाज में, वो फर्ज हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, नफल हो, यहां तक के बाज फिकही मसालिक में, नमाज जनाजा में और फिकह हनफी में भी बनियत दुआ सूरह फातिहा की इजाजत है। इससे मालूम होता है कि अकायद का सही होना, अकायद का दुरुस्त होना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रात के खिताब में मैंने बताया कि एक मैसेज वो है जो अल्लाह ने हमें अऊज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम में अता किया, एक वो है जो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में अता किया। तआव्वुज़ का, अऊज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम का मैसेज ये है कि आपको शैतान से और जो जो शैतान को फॉलो करे उससे डिस्कनेक्ट होना। और बिस्मिल्लाह का मैसेज ये है कि आपको अल्लाह से, उसके हबीब से, अंबिया सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन अस्हाबे मुकर्रमीन अहले बैते मुअज़्ज़मीन उलमाए रब्बानीन और औलियाए कामिलीन और जो जो उनको फॉलो करे उनसे कनेक्ट होना। इस कनेक्शन का बेनिफिट आपको दुनिया में भी मिलेगा, इस ताल्लुक का फायदा आपको बरज़ख में भी होगा, कब्र में भी होगा और हशर में भी होगा। और उसका फैजान आपको जन्नत और जन्नत के मरातिब में, मदारिज में भी नसीब होगा। अल्लामा जलालुल मिल्लत वद्दीन इफ्तिखारुल मुफस्सिरीन व मुख्तारुल मुहद्दिसीन अल मुहक्किक अल मुदक्किक सैयदुना जलालुद्दीन अस्सुयूती नबरल्लाहु मरकदहु ने शरहुस सुदूर में लिखा, कि एक बयान करने वाले ने बयान किया कि उनके उस्ताज़

और ज्यादा करीब। एक शख्स का आदमी का इंतकाल हो गया, दुनिया से गुजरने के बाद फराहु फिल मनाम, उस गुजर जाने वाले और मर जाने वाले साथी को ख्वाब में देखा और पूछा, मा फअलल्लाहु बिक, अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या किया, क्या हुआ, क्या मामला कब्र में पेश आया। उसने कहा, गफर अल्लाह ली, अल्लाह ने मेरे गुनाह मिटा दिए और मुझे बख्श दी। फिर पूछा कि नकीरैन के साथ क्या मामला पेश आया। नकीरैन का सलूक आपके साथ कैसा रहा। दो फरिश्ते जो कब्र में आएंगे सवाल पूछने, उनका क्या रवैया था, क्या सलूक था। तो उस शख्स ने बताया कि जब नकीरैन दो फरिश्ते मेरे पास आए, मुझसे कब्र के सवाल पूछने के लिए, तो उस वक्त मेरे दिल में आया कि मैं इनके सामने सैयदुना अमीर मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु और सैयदुना फारूक आजम उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु का वसीला पेश करूं। सो मैंने फरिश्तों के सामने शेखैन करीमैन मुअज्जमैन मुकर्रमैन का वसीला पेश किया और उन्होंने शेखैन मुकर्रमैन मुअज्जमैन के वसीले से, उनकी बरकत से मुझे छोड़ दिया, यानी उनकी बरकत से कब्र में सवाल और जवाब न हुए। यह है सहाबा अहले बैत अहले हक से कनेक्ट होने का फायदा, क्योंकि अगर कनेक्शन ना होता वो आलो असहाब से कनेक्ट ना होते तो फिर वसीले के कायल कैसे होते, वसीले का ख्याल कैसे आता। वसीले वाले फकत वो हैं जो कनेक्टेड हैं और वसीला भी एक कनेक्शन। वसीला क्या है, एक कनेक्शन। औलिया उलमा अस्हाबे मुस्तफ़ा और अहले बैत मुस्तफ़ा के थ्रू अल्लाह से कनेक्ट होना, ये वसीला। तो मोहब्बत ना होती, अदब ना होता तो फिर वसीले का ख्याल। और ये जो नजात हुई वो वसीला शेखैन से हुई है, तो फिर नजात कैसे। इस जमाने में दुनिया में जितने चैलेंजेस हैं, इसको फेस करने की अहले इस्लाम के पास एक ही सूरज है, नई नस्ल, नौजवान नस्ल, जिस तबाही बर्बादी की तरफ सुबह शाम रवा दबा है, उनको बचाने की फकत एक ही सूरत।

एक ही सभी सके कि वो अच्छों से कनेक्ट हो, बुरों से डिस्कनेक्ट हो। ये कब होगा? जब उनके बड़े अच्छों से कनेक्ट होंगे और बुरों से डिस्कनेक्ट होंगे। यही पैगाम है सूरह अल फातिहा। सूरह फातिहा में दो तरह के लोगों का तज़किरा है, अल्लाह वालों का, सालिहीन का, और वो जो अल्लाह रसूल के मुनकिर है, मुनकिरी का। तो ये कोई नया मैसेज है, ये वो मैसेज है जो सदियों से आ रहा है। कुरान का आगाज, कुरान स्टार्ट ही सूरह फातिहा से है। पहली सूरा में पहला मैसेज कुरान में यही है। सो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, अपने बच्चों को बचाना है, बेटों को बचाना है, बेटियों को बचाना है, औलाद को बचाना है, अपनी नस्लों को बचाना है, नौजवानों को बचाना है, तो उनकी प्रोटेक्शन की फकत एक ही सूरत है, सोहबते सालिहीन, द कंपनी ऑफ द पायस पीपल, नेक लोगों की सोहबत, अच्छों की सोहबत। वो अच्छे किसी भी शक्ल में हो, किसी भी नाम से, अच्छे अच्छे होते हो, बुरे किसी भी नाम से हो, बुरे बुरे होते हो। आरिफ रूमी ने इसलिए मसनवी शरीफ में फरमाया कि सोहबत सालिह तुरा सालिह कुनत, सोहबत तालिह तुरा तालिह कुनत। नेक की सोहबत तुम्हें नेक बना देगी और बद की सोहबत, बुरे की सोहबत तुम्हें बुरा बना। आप देखेंगे सुबह शाम पूरी जिंदगी में, आपका भी एक्सपीरियंस है, हमारा भी, कितने अच्छे थे जो बुरों की वजह से, उनके साथ उठने बैठने की वजह से बुरे हो रहे, कितने बुरे हो रहे, कितने बुरे हो रहे। जो अच्छों के साथ उठने बैठने से अच्छे अच्छे, ये अल्लाह का एक अजीम इनाम है जो अल्लाह जल्ल मजदूह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में हमें अता फरमाया। हुज़ूर सलाम ने इसलिए फरमाया, खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम। फरमाया सबसे बेहतरीन जमाना मेरा है, फिर वो जो उससे करीब है, फिर वो जो उससे करीब है। जो जो आम हुजूर के दौर के करीब होते जाएंगे तो खैर का गलबा होता चला जाएगा, और जो जो हम दौरे नबवी से दूर होते जाएंगे तो शर का गलबा होता चला जाएगा। उस सोहबत का फैजान आज तक जारी है और इंशाअल्लाह सुबह कियामत तक उसका वो अजीम फैज जारी है। तो सोहबत की बहुत बड़ी बात है। सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदुना फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदुना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदुना इमाम अल मशारिक वल मगारिब अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु का ये मुकाम, ये अफजलियत बितरतीब, ये इसी सोहबत का फैजान। सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदतुन्निसाई अहलिल जन्ना फातिमतुज़ज़हरा रज़ियल्लाहु

0: का ये मुकाम, हुजूर की दीगर शहजादियों और शहजादियों का ये मुकाम, उसी सोहबत का फैजान। आपके दो अजीम शहजादे जो बजाते खुद हक का मियार, सैयदुना इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह अन्हु, सैयदुना इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु, उनका मुकाम भी इसी सोहबत का फैजान है। वाक़े करबला क्या है? वाक़े करबला असल में एक बुरी सोहबत और उसका अंजाम है, और एक अच्छी सोहबत और उसका अंजाम है। रंगे हुसैन क्या है? ये अच्छी सोहबत का फैजान है, और रंगे यजीदी क्या है? ये बुरी सोहबत की लानत है। हुसैनियत सोहबत सालिहा है, और यजीदियत सोहबत तालिहा सोहबत बद है। अल्लाह पाक हमें हुसैनी रंग अता फरमाए, हुसैनी नूर अता फरमाए, हुसैनी फैजान अता फरमाए, और हुसैनी ईकान व इज़ान मन व इम्तिनान अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।
1: सामीन, अभी आप जुमे के मुबारक मौके पर हज़रत क़िबला लामा मुफ्ती मोहम्मद इसा क़ादरी रज़वी दामत बरकतुहुम अलैह की ज़बानी सोहबत सालेहीन यानी नेक लोगों की सोहबत पर ये ईमान अफरोज़ बयान फरमा रहे थे। इस वक्त हम रेडियो मॉरिशस सबसे मुखातिब हैं, 4:43 हो रहे हैं।

बेशक सामीन, मुश्किल हालात और गैर यकीनी की घड़ियों में हमें याद रखना चाहिए कि हमेशा हक और सच्चाई पर कायम रहें और दुरुस्त अमल इख्तियार करें, अल्लाह ताला के सिवा किसी से न डरें और कभी भी गलत काम के आगे सर झुकाकर अपने उसूलों पर समझौता न करें। सामीन, बज़्मे नूर का मुकर्रर वक्त यहाँ पर इख्तिताम को पहुँच रहा है। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। एक बार फिर आप तमाम लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये नया साल हम तमाम लोगों के लिए खुशगवार बनाए, और दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम सबको अच्छे से

अच्छे अमाल ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको ख़ात्मा बिल खैर नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अगली मुलाकात तक नूर को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: आप तमाम सामीन को ये शाम मुबारक। आप साथ दे रहे हैं रेडियो मॉरिशस की लहर पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हसीन प्रोग्राम। जी हाँ मज़े सामीन, गीत और गज़ल का ये हसीन प्रोग्राम जहां से भी आप साथ दे रहे हैं आपका खुशामदीद है। तो चलिए ये पहला तराना आपके नाम करते हैं।
1: नाजों से पली गुले गुलफाम, हुस्न का आगाज इश्क का अंजाम, आ रही है आपकी खातिर बनारस की सुबह लखनऊ की शाम, चढ़ती जवानी उभरता शबाब करेगा जमाने की नीयत खराब, कयामत उठेगी गिरे बिजलियां उठेगा जो चेहरे से इस

हुस्न की शम्मा जलने लगी है, बच के रहना परवानों, होश उड़ाने आई है ये, होश में रहना दीवानों।

मोहब्बतों के चराहों से दिल मुनव्वर रहे, ये महफिल सुखन और नखमा यूं ही रोशन रहे। एक बार फिर हमारा सलाम है, मोहब्बतों खुशबुओं नखमगी और दिल की धड़कनों से सजे हुए इस

की जानिब पे चलते हैं, जहाँ हवाओं में नखमगी हैं, फ़जा में मस्ती हैं और यादों के झरोकों से खुशबुएं आ रही हैं, आशा भोंसले और दिलराज कौर की आवाज़ों में समात फरमाइए।

वैसे मुझे सामीन दिल की बाज़ कैफियतें लफ्ज़ों में बयान नहीं होती, वो सिर्फ़ नगमों और गज़लों के सहारे इजहार पाती हैं। फूलों की खुशबुओं में कोई राज छुपा हुआ, हर शाख पर किसी की मोहब्बत का नाम था। ये रेडियो मॉरिशस हैं, परवीज़ा का साथ हैं शाम के 6 बजे तक महफिल गीत और गज़लों में। इसी कैफियत को समेटते हुए पेश खिदमत हैं ये अगला तराना, दिलों को छू लेने वाला तराना है, आशा भोंसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में।

यकीनन इंतज़ार की रात जितनी तवील होना महबूब की ख़बर उतनी ही कीमती महसूस होती है। बुझते हुए चिराग भी फिर जगमगा उठे, यार की खबर मिली तो दुआएं असर में आ गई।

यूं ही साथ देते रहे और अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहे। वैसे तो ज़िंदगी के सफ़र में मौसम बदलते रहते हैं, वक्त करवटें लेता रहता है और इंसान के जज्बात भी इन्हीं मौसमों के साथ रंग बदलते रहते हैं। कभी दिल में बहार उतरती हैं तो कभी यादों की बारिश बरसते लगती हैं।

वज़ी सामीन, ज़माना लाख बदल जाए, वफा नहीं बदलती, दिलों में बसने वालों की अदा नहीं बदलती। ये रेडियो मॉरिशस है, गीतों और गज़लों का हसीन सफ़र फ़कत आपके साथ। छोटी सी बात थी मगर दिल में उतर गई, इससे मुस्कुराहट उम्र भर की रोशनी बन गई। वैसे तो मोहब्बत का हुस्न ये है कि वो मामूली लम्हों को भी यादगार बना देती है। फारूक कैसर का कलाम आशा भोसले और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में मुलाहिजा कीजिए।

कुछ मुलाकातें वक्त की जीनत बनती हैं और कुछ यादें बरसों बाद भी ताज़ा रहती हैं। सच्ची मोहब्बत और खालिस दोस्ती वक्त की मोहताज नहीं होती। बरसों बाद भी वो पहली मुलाकात जैसी ताजगी रखती हैं, है ना। देखते ही देखते हमारी महफिल गीत और गज़ल अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है। मज़ीद सामेईन, मौसीकी ख़त्म हो जाती हैं मगर उसके जगाए हुए एहसासात देर तक दिल में जिंदा रहते हैं। ये आखिरी गज़ल आपके नाम। गाइए, गुनगुनाइए, खुश रहे, प्यार बांटते रहे। परवीज़ और अंजू को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: 800 and 19 kilohertz. This is Radio Mauritius.
1: नमस्कार, ये रेडियो मॉरिशस है। इस समय घड़ी की सुइयां शाम काल के ठीक 6 बजे का संकेत दे रही है। जैसा कि आप जानते हैं, आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम द्वारा बजट 2026-2027 प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका लाइव प्रसारण एमबीसी टीवी 1, एमबीसी सैट, ओरएम 1 तथा ओरएम 2 पर किया जा रहा है। वहीं एमबीसी टीवी 3 तथा ओरएम 3 पर बजट का भोजपुरी अनुवाद उमा गुरबिन जी और अभी उदय जी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। आपको बता दें कि समाचार बुलेटिन बजट के तुरंत बाद प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए आइए रेडियो मॉरिशस पर सुनते हैं कुछ सदाबहार गीत।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

और समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आज का ये बुलेटिन मुख्य रूप से बट

0: 2027 का बजट पेश करते हुए इसे एक जिम्मेदार बजट करार दिया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि सरकार ने आसान रास्ता चुनने के बजाय कठिन लेकिन आवश्यक निर्णय लेने का विकल्प चुना। प्रधानमंत्री ने आज स्पष्ट कहा है कि यह बजट केवल अगले बारह महीनों के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों में मॉरिशस की दिशा तय करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। उनके अनुसार देश ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, तकनीकी बदलावों और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच नई सोच और नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण के दौरान कहा कि कई बार उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक वृद्धि दर्ज करना नहीं, बल्कि ऐसी वृद्धि सुनिश्चित करना है जो टिकाऊ हो और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। तो यशना मिश्रा हमारे साथ हैं। इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई महत्वपूर्ण कदमों को बजट में शामिल किया है।
1: तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉरिशस को बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनुरूप स्वयं को ढालना होगा। उनके अनुसार आने वाले वर्षों में नवाचार, ज्ञान, टेक्नोलॉजी और उत्पादकता आर्थिक सफलता के प्रमुख आधार होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पारंपरिक क्षेत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी, लेकिन साथ ही नए अवसरों और नए विकास क्षेत्रों को भी अपनाना आवश्यक होगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने निवेश, ठेकेदारी, कौशल विकास और आर्थिक आधुनिकीकरण को विकास रणनीति के प्रमुख तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया। भाषण में भविष्य की तैयारी पर विशेष बल दिखाई दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है जो नई तकनीकों का लाभ उठा सकें, युवाओं के लिए अवसर पैदा कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉरिशस की स्थिति को मजबूत बना सकें। कई अन्य क्षेत्रों को लेकर कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए, इस पर ज़्यादा विस्तार आस्था देंगी।
0: जी, आप नज़र डालते हैं उन प्रमुख कदमों पर जिसकी घोषणा आज बजट भाषण में प्रधानमंत्री ने की। उन्होंने एक जिम्मेदार और भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया बजट, इसकी घोषणा की है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को नई गति देना, निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और मॉरिशस को AI के युग के लिए तैयार करना है। उन्होंने कहा कि सरकार की रणनीति 7 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। इनमें AI और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना, स्टार्टअप और SMEs को मजबूत करना, अर्थव्यवस्था का विस्तार करना, पारंपरिक क्षेत्रों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना, समुद्री अर्थव्यवस्था की क्षमता का लाभ उठाना तथा निवेश में आने वाली बाधाओं को दूर करना शामिल है। तो भारत के सहयोग से चैंपियन ऑफ AI प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। साथ ही 25 मिलियन रुपए लागत से नेशनल AI लर्निंग प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा जो प्रशिक्षण, प्रमाणन और AI आधारित स्टार्टअप कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान करेगा। सरकार ने अगले वर्ष 25,000 लोगों को AI से जुड़े कौशलों का प्रशिक्षण देना है। इनमें ठेकेदार, पेशेवर डेवलपर्स और विभिन्न सेक्टरों के कर्मचारी शामिल होंगे। इसके अलावा 5,000 सरकारी कर्मचारियों को भी AI के जिम्मेदार उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा के सेक्टर की बात करें तो AI के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए MyGPT प्रोग्राम का विस्तार किया जाने वाला है और अगले वर्ष लगभग 8,000 अध्यापकों को AI आधारित शिक्षण उपकरणों का प्रशिक्षण मिलेगा, जबकि 12,000 ग्रेड 9 के छात्रों को भी AI समर्थित शिक्षण साधनों तक पहुंच प्रदान की जाएगी। स्टार्टअप के क्षेत्र को नई गति देने के लिए सरकार स्टार्टअप एक्ट को 2 में स्टार्टअप हब, पब्लिक प्राइवेट स्टार्टअप काउंसिल और EDB के माध्यम से एक्सेलरेटर स्कीम शुरू करेगी। स्टार्टअप कंपनियों को संचालन शुरू करने की तारीख से 10 वर्षों की इनकम टैक्स हॉलीडे भी दी जाएगी। इनोवेशन की जहां तक बात है, उसको बढ़ावा देने के लिए 10 यूनिवर्सिटी छात्रों को 5,00,000 रुपए तक की इनोवेशन स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी ताकि वे अपने विचारों को व्यवसायिक परियोजनाओं में बदल सके। और SMEs के लिए सरकार SME बिल लाएगी। पात्र SMEs को उपयोगी वाहनों पर सीमा शुल्क छूट का लाभ मिलेगा और योजनाओं, ग्रांट तथा वित्तीय सुविधाओं की जानकारी के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच स्थापित किया जाएगा। निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 2 में 83 बीघा भूमि पर हाईटेक स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित की जाएगी। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में वस्तुओं के निर्यात को 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 3 बिलियन अमेरिकी

0: डॉलर तक पहुंचाना है। और बंदरगाह क्षेत्र में यूएसडी जो 1 बिलियन USD मूल्य की आयरन कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट उसको लागू कर दिया जाएगा। वहीं मोशे स्पोर्ट्स अथॉरिटी और कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन द्वारा लगभग 7 बिलियन रुपये के निवेश प्रोग्राम पर भी काम चल रहा है। हवाई अड्डों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 2.7 बिलियन रुपए का निवेश है। इसमें बायोमेट्रिक ई गेट सहित डिजिटल सीमा नियंत्रण प्रणाली लागू की जाएगी। सड़क मूल ढांचा को मजबूत करने के लिए फोबाग से एयरपोर्ट तक M4 मोटरवे प्रोजेक्ट हेतु 2 बिलियन रुपए प्रदान किए जाएंगे। कृषि क्षेत्र में वर्ष 2030 तक चीनी उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य के तहत अगले 3 वर्षों तक हर वर्ष 100 मिलियन रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे छोटे और मध्यम उत्पादकों की 500 हेक्टेयर भूमि का पुनर्वास किया जा सके। चाय उत्पादन उसको बढ़ावा देने के लिए छोटे उत्पादकों को पुनः रोपण लागत पर 50% ग्रांट दिया जाएगा। अधिकतम 25,000 रुपये प्रति बीघा तक दिया जा सकेगा। इससे वर्ष 2029 तक चाय उत्पादन में 50% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए फॉरेस्ट बिल लाया जाएगा और एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। पशुपालन क्षेत्र के लिए फार्मों के विकास, पशु आहार सहायता, पशु खरीद प्रोत्साहन और पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए पैसे उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही 50 मिलियन रुपए की लागत से एक आधुनिक अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र में सुधार के तहत इस वर्ष के अंत तक नया बैंक ऑफ मॉरिशस बिल, नया बैंकिंग बिल और एक नया रेजोल्यूशन रेजिम पेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेक्टर को अधिक मजबूत, सुरक्षित और आधुनिक बनाना है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, निर्माण क्षेत्र में सरकार ग्रीन बिल्डिंग कोड लागू करने के लिए कानून में संशोधन लाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य की इमारतों को ऊर्जा की खपत करने के साथ साथ ऊर्जा उत्पादन में भी योगदान देना होगा। अन्य कदमों पर नजर याचना आपके साथ।
1: पर्यटन क्षेत्र को लेकर नए वैश्विक रुझान और उभरती हुई चुनौतियां हमारे पारंपरिक मॉडल को प्रभावित कर रही हैं। विविधता और टिकाऊ विकास की बात की गई, लगूनों का संरक्षण और बायोडायवर्सिटी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, जैसे कि ब्लूप्रिंट में उल्लेख किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लगून, समुद्र तट, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा पर्यटन रणनीति के केंद्र में रहनी होगी। साथ ही पारंपरिक तटीय मॉडल से आगे बढ़कर नए पर्यटन अनुभवों के विकास का समर्थन किया जाएगा। प्राकृति आधारित पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन और सामुदायिक पर्यटन पर अधिक जोर दिया जाएगा, ताकि विकास पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और आर्थिक रूप से समावेशी हो। एक पर्यटन स्थल के रूप में रोड्रिग्स की विशिष्टता को संरक्षित किया जाएगा और साथ ही नए रनवे के निर्माण के माध्यम से इसे गंतव्य के रूप में और महत्व दिया जाएगा। पर्यटन उत्पाद में विविधता लाने और स्थानीय भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार मॉरिशस के विभिन्न क्षेत्रों में इको इंटीग्रेटेड टूरिज्म के विकास का समर्थन करेगी। ये गांव देश की सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय व्यंजन, इतिहास, कृषि और प्राकृतिक आकर्षणों को प्रदर्शित करेंगे। डेस्टिनेशन मार्केटिंग में निवेश किया जाएगा। प्रमोशन कैंपेन के दौरान टिकाऊ विकास, पर्यावरण प्रिय पर्यटन पर ध्यान दिया जाएगा। सी सैंड एंड सन की नीति के परे देश को वैश्विक पर्यटन का केंद्र बनाने की योजना बनाई जा रही है। इन सभी के समर्थन के लिए 1 बिलियन रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें मॉरिशस टूरिज्म पोर्ट्स एंड अथॉरिटी को 490 मिलियन रुपए दिए जाएंगे। सगायतों जुवाल संस्था को रिवैम्प करके खामियों को पूरा किया जाएगा। एक डिजिटल प्रणाली बनाई जाएगी, जिसके जरिए विदेशी मॉरिशस का दौरा करने के लिए ई वीज़ा के लिए अर्जी दे पाएंगे। इससे एयरपोर्ट पर वेटिंग टाइम कम होगा और सुरक्षा बढ़ेगी। और शिक्षा क्षेत्र को लेकर भी कई कदमों का ऐलान किया गया है, ताकि इस क्षेत्र को और आधुनिक बनाया जाए और बच्चों की के पूर्ण विकास पर ध्यान केंद्रित हो। इस पर ज्यादा विस्तार आप इस रिपोर्ट में सुन पाएंगे। विवरण सुमेहरा अकबर अली का है।
2: शिक्षा को और ज्यादा कारगर बनाने और सबका एक्सेस बढ़ाने के लिए क्षेत्र के बजट को 2.6 बिलियन रुपए से बढ़ाया जा रहा है। एक भी बच्चा पीछे ना रहे, इसके लिए किताबों और शैक्षिक सामानों में 133 मिलियन रुपए निवेश किए जाएंगे। 3 नए MITD सेंटर्स को कायम किया जाएगा, ताकि ग्रेड 7 से

0: ग्रेड 9 के बच्चों को प्रशिक्षित किया जा सके। इसके अलावा ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के बच्चों के लिए एक बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी प्रोग्राम की स्थापना की जाएगी। प्रधान एवं वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि सैन स्कूलों के लिए एक खास इंटरवेंशन इकाई को कायम किया जाएगा। सरकार ग्रेड 10 और ग्रेड 11 के बच्चों के वास्ते एक टेक्निकल एजुकेशन अप्लाइड पाथवे की शुरुआत करने का मकसद रखती है और स्कूलों में बुलिंग के मसले से निपटने के लिए सरकार एंटी बुलिंग अभियानों में 10 मिलियन रुपए निवेश करेगी। उच्च शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय सतह वाली तालीम का दर्जा देने के लिए एक नए ढांचे को विकसित किया जाएगा। बजट 2026-2027 में एक स्टडी इमर्सिव पोर्टल को लॉन्च करने का भी प्रावधान है, जिसके जरिए मकामी और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दाखिले की प्रक्रिया कर सकें। पूर्व प्राथमिक से तृतीय शिक्षा संस्थाओं के मूल ढांचों को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा 824 मिलियन रुपए निवेश करने का प्रावधान है।
1: सरकारी खर्चों में कटौती और फिजूल खर्चे कम करने पर जोर दिया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए विशेष समिति बनाई जाएगी और सभी मंत्रालयों के खर्चों पर फिर से गौर करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि सांसद अब पूरे कार्यकाल में केवल एक ड्यूटी फ्री कार्ड पात्र होंगे। सिगरेट और शराब पर उत्पाद शुल्क में 10% की वृद्धि लाई जाएगी। अधिक चीनी वाले उत्पादों पर कर बढ़ाया जाएगा, उस पर टैक्स बढ़ाया जाएगा और इसका दायरा अन्य मीठे उत्पादों तक भी बढ़ेगा और सभी प्लास्टिक बोतलों पर 2 रुपए का शुल्क लागू होगा। 1 जनवरी 2027 से सामान्य जो इंश्योरेंस पॉलिसियों पर 5% इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्स लागू होगा। और विशेष या व्यक्तिगत जो गाड़ियां पंजीकरण नंबर रखने वालों पर वार्षिक शुल्क लगाया जाएगा। 1 मिलियन से 12 मिलियन तक की कर योग्य आय पर 20% टैक्स लगेगा। 12 मिलियन से अधिक की आय पर 35% टैक्स लगेगा और VAT में कोई बढ़ोतरी नहीं लाई जाएगी। टैक्स व्यवस्था पर फिर से गौर करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। याचना अन्य कदमों पर नजर आपके साथ।
2: खरीद शक्ति को बरकरार रखा जा सके, खासकर मध्य और निम्न आय वाले परिवारों के लिए, इसके वास्ते स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बड़ी मात्रा में मूलभूत सामान खरीदेगा जिनका दाम नियंत्रित होगा। प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड को लेकर पिछली बार निर्धारित 10 बिलियन रुपए के अलावा इस बजट में 2 बिलियन रुपए जोड़े जा रहे हैं। कोन मटन, कांचूना, बच्चों के खाने, मैकरोनी, काली दाल, तूर की दाल, राजमा, लंचन मीट आदि पर इस जुलाई महीने से दाम में कमी लाई जाएगी। एक नया ई कॉमर्स बिल भी पेश किया जाएगा। 2035 तक आयात पर निर्भरता कम करने के वास्ते एक नई परियोजना चलाई जाएगी। खाद्य पैदावार के लिए और खेती के लिए 25,000 एकड़ जमीन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन बिल पेश किया जाएगा और कर्मचारियों की भर्ती फास्ट ट्रैक पर किया जाएगा। 11,000 परिवारों के लिए 175 मिलियन रुपए की रकम निर्धारित की गई है पानी के टैंक्स की खरीद के लिए। अगले 3 सालों के लिए पानी जमा करने के स्थलों के विकास के लिए 6.4 बिलियन रुपए की रकम निर्धारित की गई है। 2035 तक रिन्यूएबल ऊर्जा पैदावार बढ़ाने के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाई जा रही है और मकानों और व्यवसायों से सौर्य ऊर्जा में निवेश करने की मांग की जा रही है। जिन मकानों में सौर्य ऊर्जा पैदावार की जाती है उनकी एक्सपोर्टिंग ग्रिड को 4.20 रुपए से 4.84 रुपए तक बढ़ाया जा रहा है। मिठाइयां, जैम, क्रिस्टलाइज्ड फल, बिस्किट, कई अन्य मीठे खाद्य पदार्थों का दाम भी 1 अक्टूबर से बढ़ाया जाएगा। पेंशन को लेकर बजट में कदमों का ऐलान किया गया। बेसिक पेंशन सिस्टम में कई खामियां थीं जिनकी फाइनेंसिंग पूर्ण रूप से करदाताओं द्वारा किया जाता था। 60 साल की उम्र वालों को पेंशन दिया जाता था जो अन्य देशों में है ही नहीं। पूरी पेंशन प्रणाली में सुधार की दिशा में पेशेवरों द्वारा एक गहन अध्ययन किया जाएगा। एक पेंशन रेगुलेटरी केंद्र की स्थापना की जाएगी। BOP में सुधार जनवरी 2027 से अमल में लाया जाएगा। मात्र उम्र को लेकर ही पेंशन दिया जाएगा, यानी यदि कोई नौकरी भी कर रहा हो तो 65 साल की उम्र तक पहुंचने पर उसे उसका पेंशन दिया जाएगा। 4,000 रुपए की सीमा, 14,000 रुपए की सीमा विश्व बैंक द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा

0: हैं जो 2025 में 28,000 रुपये की मध्य आय को का 50% हैं। वास्तव में ये इस सीमा से कम आय वाले प्रत्येक योग्य व्यक्ति को उनका पूरा SAP प्राप्त होगा और कृषि सेक्टर पर ज़्यादा विस्तार आस्था दे रही है।
1: जी हाँ, कृषि सेक्टर में कई कदमों का ऐलान किया गया है, जैसे कि वर्ष 2030 तक चीनी उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य के तहत अगले 3 वर्षों तक हर वर्ष 100 मिलियन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे छोटे और मध्यम उत्पादकों की 500 हेक्टेयर भूमि का पुनर्वास किया जा सकेगा। विधि मासीपुरन
2: 2030 तक 2,50,000 टन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चीनी उत्पादन बढ़ाने हेतु छोटे और मध्यम किसानों की 500 हेक्टेयर भूमि के पुनर्वास के लिए अगले 3 वर्षों में सालाना 100 मिलियन रुपए प्रदान किए जाएंगे। चाय के उत्पादन को बढ़ाने के लिए छोटे चाय उत्पादकों को 25,000 रुपए प्रति औपौं की अधिकतम सीमा तक पुनर्वरोपण लागत का 50% अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इससे वर्ष 2029 तक चाय के उत्पादन में 50% की वृद्धि होनी चाहिए। हमारे जंगलों के लिए जलवायु लचीलापन बनाते हुए एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एक फॉरेस्ट बिल पेश किया जाएगा। एक कृषि वानिकी परियोजना लागू की जाएगी। ये शोधकर्ताओं और किसानों के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करेगा, साथ ही स्थानीय बाजार के लिए सुरक्षित भोजन का उत्पादन करेगा और हमारी खाद्य सुरक्षा नीति को और मजबूत करेगा। हमारे कृषि क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए सरकार पशुधन उत्पादन बढ़ाने में निवेश कर रही है, जैसे कि फार्म भवनों, बकरी प्रजनन फार्मों के उन्नयन के लिए 45 मिलियन रुपए और प्रजनन स्टॉक की आपूर्ति बढ़ाने के लिए मवेशी और भेड़ प्रजनन फार्मों को स्केल अप किया जाएगा। प्रजनकों द्वारा पशु आहार की खरीद पर सब्सिडी देने के लिए 75 मिलियन रुपए प्रदान किए जाएंगे। पशुओं की खरीद, उपकरणों और पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए सहायता हेतु प्रोत्साहन के लिए पशुधन विकास योजना के तहत 27 मिलियन रुपए दिए जाएंगे और एक अत्याधुनिक पशु चिकित्सा अस्पताल के निर्माण के लिए 50 मिलियन रुपए निवेश किए जाएंगे।
1: बजट 2026-2027 में सरकार की कुल आमदनी 235.5 बिलियन और कुल खर्च 266.7 मिलियन रहने का अनुमान है और बजट घाटा GDP के 3.7% रहने का अनुमान है। सार्वजनिक कर्ज को जून 2027 तक GDP के 85.5% और जून 2029 तक 80% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है, कहा प्रधानमंत्री ने। और सरकार का कहना है कि कर्ज का स्तर अभी भी ऊंचा है और क्रेडिट रेटिंग में गिरावट से आयात और कर्ज की लागत बढ़ सकती है। बात करते हैं आवास के सेक्टर के बारे में। आवास नीति पर बात करते हुए प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि एक सम्मानजनक घर केवल रहने की जगह नहीं बल्कि गरिमा और सामाजिक सुरक्षा की नींव है। उन्होंने कहा कि निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से 8,000 सामाजिक आवास परियोजना के पहले चरण के लिए आवश्यक भारी बुनियादी ढांचों के के लिए 2 बिलियन रुपए का प्रावधान है। साथ ही हाईलैंड्स और खिष्टे में महत्वपूर्ण पानी निकासी व्यवस्था के निर्माण के लिए 25 मिलियन रुपए निर्धारित किए गए हैं इस बजट में। करुणा लालू,
3: सामाजिक मजबूती को बढ़ावा देने के लिए एक निष्पक्ष आवास नीति अपनाई जा रही है। एक उचित मकान गरिमा का आधार है। ये गरिमा सभी निम्न और मध्य वर्गीय परिवारों के लिए एक हकीकत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री ने कहा कि कम आय वाली सोशल हाउसिंग के लिए बजट में 2 बिलियन रुपए का प्रावधान है, जो 8,000 आवास परियोजना के पहले चरण के लिए हैं। हाईलैंड्स और रिश्तेया में नहर प्रणाली के लिए 25 मिलियन रुपए दिए जाएंगे। सरकार और प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी से निजी ज़मीनों पर मिक्स्ड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स चलाई जाएंगे। इसका एक हिस्सा निम्न और मध्य वर्गीय आयु वाले परिवारों के लिए निर्धारित होगा। नेशनल हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और न्यू सोशल लिविंग डेवलपमेंट लिमिटेड के माध्यम से मध्यम आय वाले परिवारों के लिए करीब 1,000 आवासों के निर्माण के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। 150 मिलियन रुपए मध्य वर्गीय परिवारों के लिए मूलभूत सुविधाओं के साथ 100 प्लॉट जमीन को तैयार करने के लिए निर्धारित किए जाएंगे। पहली बार जमीन खरीदने वालों के लिए प्रथम 3 मिलियन रुपए की लागत पर रजिस्ट्रेशन ड्यूटी की छूट होगी। इसके अलावा पहली बार एक अपार्टमेंट अथवा घर खरीदने वाले के लिए प्रथम 6 मिलियन रुपए की लागत पर भी छूट होगी।

0: कृषि जमीन के धारक के लिए भी ये लागू होगी।
1: कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट 2026-2027 में 14.2 बिलियन रुपए का प्रावधान है और पुलिस की गाड़ियों के आधुनिकीकरण के लिए 125 मिलियन रुपए निर्धारित किए गए हैं। इस बजट में पुलिस बल की क्षमता को बढ़ाने के लिए उपकरणों की खरीद के लिए प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि 531 मिलियन रुपए निवेश किए जाएंगे। नेशनल क्राइम एजेंसी की स्थापना के लिए 200 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया है। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था को नया रूप दिया जाएगा ताकि पुलिस और नागरिकों के बीच भरोसा और सहयोग और बढ़े। सेफ सिटी निगरानी प्रणाली का विस्तार भी किया जाएगा। साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में अभियान शुरू किए जाएंगे। और जहां तक ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई की बात है तो प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संघर्ष को तेज किया जाएगा और ये सरकार की प्राथमिकता है। सरकार नशीले पदार्थों के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज करेगी और रोकथाम, तस्करी के नेटवर्क को तोड़ना तथा उपचार और पुनर्वास पर खास ध्यान दिया जाएगा। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल को अतिरिक्त 80 मिलियन रुपए प्रदान किए जाएंगे। इस राशि का उपयोग नशीले पदार्थों के खतरों, तस्करी के दुष्परिणामों और उपलब्ध उपचार एवं पुनर्वास सेवाओं के बारे में जन जागरूकता फैलाने के लिए किया जाएगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित की जाएगी जिससे नए प्रकार के ड्रग्स के शीघ्र पहचान की जा सकेगी। सरकार को उभरते ड्रग्स के रुझानों पर समय पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि आवश्यक कदम तेजी से उठाए जा सके। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में पुलिस, सरकारी संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों की संयुक्त भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। सभी मंत्रालयों और सार्वजनिक संस्थानों द्वारा अपनी नीतियों और कार्यों में नशीले पदार्थों की रोकथाम को शामिल करने के लिए 50 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया है। अदालतों, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। देश भर में सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने और आवश्यक सुविधाओं के लिए की योजना इस पर तैयार की जाएगी और इस प्रोजेक्ट में, इस परियोजना में 10 मिलियन रुपए निवेश किए जाएंगे। और अब चले जानते हैं कि स्वास्थ्य के सेक्टर में बजट 2026-2027 में कौन कौन से कदमों का ऐलान किया गया है। ज्यादा जानकारी हमें दे रही हैं सुमेरा अकबर अली।
2: हर साल टैक्स से प्राप्त बिलियन रुपए स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च किए जाते हैं। मरीजों और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 2,220 मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी। इनमें नर्सों की भर्ती भी शामिल होगी। 40 मिलियन रुपए निवेश करके सरकार विजिटिंग डॉक्टर स्कीम को लागू करने का मकसद रखती है। अब से हॉस्पिटल मैनेजर्स अस्पतालों की कार्यकुशलता का आश्वासन रखेंगे। मधुमेह की रोकथाम और इलाज के लिए बजट 2026-2027 में 40 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य मूल ढांचों को आधुनिक बनाने के वास्ते 1.5 बिलियन रुपए निवेश किए जाएंगे। नए SSRN अस्पताल का निर्माण, आयुष केंद्र, एक आधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, ENT अस्पताल में एक डायलिसिस केंद्र आदि का निर्माण शामिल है। मोटापे से निपटने के लिए एक कार्डियो मेटाबॉलिक केयर एंड रिसर्च केंद्र की तामीर भी की जाएगी।
3: और अंत में बजट के कुछ मुख्य कदमों में ये भी शामिल हैं, 2,63,200 पेंशन प्राप्त लोगों का 90% हिस्सा अभी भी स्टेज एज पेंशन से लाभ उठा पाएगा। इनमें 75% लोगों को पूरा पेंशन मिलेगा। केयर्स अलाउंस को 3,500 से 4,250 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। पंजीकृत पूर्व प्राथमिक स्कूलों में विकलांगता की अवस्था वाले बच्चों के लिए टैक्सी शुल्क का भुगतान सरकार करेगी। स्पेशल एजुकेशन नीड्स लर्नर्स के बजट को 562 मिलियन रुपए से 619 मिलियन रुपए तक बढ़ाया गया है। अस्पतालों में डिसलेक्सिया और ऐसी बीमारियों से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए 15 साइकोलॉजिस्ट की भर्ती की जाएगी। 90 साल से ज़्यादा उम्र वालों को घर पर डॉक्टरों से कंसल्टेशन का लाभ दिया जाता है। इस उम्र को 85 साल का किया गया है। मैटरनिटी लीव की बात करें तो 12 महीनों तक इसे बढ़ाया जा रहा है। 6 महीने तक पूरा पगार यानी फुल पेड लीव होगा और बाकी 6 महीने हाफ पे होगा। पैटर्निटी लीव को 4 से 6 हफ्तों तक बढ़ाया जा रहा है और यदि कोई पब्लिक हॉलीडे किसी शनिवार को पड़ रहा है तो उसके अगले दिन सोमवार का दिन पब्लिक हॉलीडे करार दिया जाएगा।

0: वोकेशनल स्ट्रीम के नौजवानों के लिए दो अतिरिक्त स्कॉलरशिप भी जोड़े जा रहे हैं। अब चलिए अंत में जानते हैं मौसम का हाल आस्था के साथ।
1: अंत में जानते हैं मौसम का हाल स्थानीय स्तर पर। हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर है। आज रात को देश भर में मौसम सुहाना रहेगा और कल सुबह के दौरान भी देश भर में धूप खिली रहेगी। केवल दोपहर बाद देश के दक्षिण में कुछ वर्षा हो सकती है, अन्य जगहों पर मौसम सुहाना रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं जाने की अपील की जाती है। तापमान न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 12 से 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान अन्य इलाकों पर 17 से 19 और अधिकतम साहिली इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्यास्त 5:38 पर हो गया है। सूर्योदय कल सुबह 6:44 मिनट पर होगा।

0: तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे शिव, उनको हम धन्यवाद देते हैं। ये बुलेटिन मुख्य रूप से बजट 2026-2027 के मुख्य कदमों पर केंद्रित रहा। अभी के लिए बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर यशरा मिश्रा के साथ। धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

शोक समाचार सुनिए। कानपुर लेन नोवेल फॉन्स में 85 साल के 85 ईयर्स ओल्ड के श्री दीनदयाल रामबाजू जो जगदीश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 उनकी बेटी बबीता मंडप के मकान कानपुर लेन नोवेल फॉन्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घोंबुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11:30 AM। नंबर 5 जन केनेडी स्ट्रीट थोंगबा पोटली में 68 ईयर्स ओल्ड के श्री रामजीत हरिमन सिंह जगदेव जो रामगीत के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1:00 उनके मकान नंबर 5 जन केनेडी स्ट्रीट थोंगबा पोटली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। नंबर 23 वेंकटासामी शिबेल बुबासे में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री विनोद रामसामी जो गौसों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10:00 उनकी पत्नी चिंता रामसामी के मकान नंबर 23 वेंकटासामी शिबेल बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। ब्रांच रोड न्यू ग्रोव में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती दाउमत ओरी जो कुमारी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10:00 उनके बेटे विशाल ओहे के मकान ब्रांच रोड न्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गोबियो ओही लेन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। सवान रोड नोवेल फॉन्स में 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड के श्री गौकरण मंघा जो कस्टेलो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 उनके मकान सवान रोड नोवेल फॉन्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माहिशानी रोसबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11:30 AM। रिजर्वर रोड सचीज खांबे में 42 साल के 42 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुमिता रामचंद पैदाशी नाम बंधु और जो श्वेता के नाम

ज्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी, कल सुबह 10 बजे उनके पति रिशाल रामचरण के मकान गजियाबाद रोड सुचीज घोंबे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घोंबे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 8:10 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: सत्यार प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस शनिवार 20 जून को मौलाशो आर्य समाज में शाम के 4 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार प्रकाश पर प्रवचन देंगे।

भजले प्रभु का नाम। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जो भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले अपने अहंकार को मिटाना पड़ता है। ये जो अहंकार है ना, ये व्यक्ति से बहुत गलत कार्य करवा लेता है। मनसा वाचा कर्मणा हम लोग बदले की भावना से भर जाते हैं, और इस भावना को जब मन में उतार लेते हैं तो बस हमारा दिन केवल दूसरे को नीचा दिखाने में ही बीतता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भजले प्रभु का नाम, ताकि आप किसी को नीचा ना दिखाएं, किसी के प्रति वैर भाव ना रखें। वक्त आता है, कुछ चीज़ें बुरी अच्छी लगती हैं, लेकिन जो क्षमा का भाव है यह हमें प्रभु से जोड़ता है। आप देखिए, प्रभु श्री राम की शरण में जो भी आया, प्रभु श्री राम ने उसे गले से लगाया, उसका उद्धार किया। तो हृदय को उदार करना, हृदय को बड़ा करना, यही हमें प्रभु का नाम जब जपते हैं तो वह सिखाता है। आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।

श्रुतम एक मूर्तिकार था, बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था। जब उसकी मूर्ति बन जाती थी तो ऐसे लगता था कि बस कोई उसमें प्राण डाल दे तो सचमुच वह मूर्ति चल पड़ेगी, बोलने लग जाएगी। लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे कि इतना सुंदर इसका हाथ, इतनी सुंदर मूर्तियां, और उसकी प्रशंसा में लोग पुल बांधा करते थे। धीरे धीरे मूर्तिकार में एक अहंकार आने लगा। उसको लगा कि विष्णु के बाद मैं ही दुनिया में सब कुछ हूँ। केवल मैं प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं जिसकी भी मूर्ति बनाऊँ, जो भी संकल्पना करूँ, बस वह सचमुच दिखती है। श्रोताओं, अहंकार पलता रहा उसके अंदर। पैसा भी उसको बहुत मिला, लेकिन अहंकार बढ़ता रहा। अब मृत्यु तो सभी की आनी है। एक दिन उसने स्वप्न में काल को देखा। काल ने कहा, देखो कल तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हारे प्राण लेने आ रहा हूँ। अचानक उसकी नींद खुली, डर गया वह। इतना अहंकार, लेकिन डर गया। तो श्रोताओं, डर से मुक्ति पानी है तो प्रभु का नाम जपना बहुत ज़रूरी है। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, काल की वाणी उस मूर्तिकार के दिमाग में लगातार गूंज रही थी। परेशान था वह। उसने सोचा, कल काल आएगा ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तब इंतजार करता रहा। शाम को उसने सोचा, कहाँ छिप सकता हूँ मैं। कुछ समय पहले उसने अपनी ही एक मूर्ति बनाई थी। बस उसने अपनी मूर्ति रखी और स्वयं वहाँ भी खड़ा हो गया। खड़ा रहा, लेकिन काल नहीं आया। जब रात को सोने गया तो फिर से सपने में काल उसे दिखाई दिए। उन्होंने कहा, डर गए? अभी तो पहला ही इन्विटेशन था। चिंता मत करो, इस काल को तुम्हें कुछ वक्त देना है, तो चलो हम दोनों तुम्हें मिलकर यह वक्त तय करते हैं कि आज से 15 दिन बाद मैं तुम्हारे द्वार पर आऊँगा। बहुत खुश हो गया मूर्तिकार। और श्रोताओं, अगले दिन सुबह उठते ही उसने ठीक अपने जैसी मूर्तियाँ बनानी शुरू कर दी। आइए सुनते हैं इस भजन को।

मूर्तियां बनती गईं और उसने 15 दिन में 15 मूर्तियां बना डाली, बिल्कुल उसके जैसी। बस प्राण ही उसमें डलने थे। आज 15वें दिन काल को आना था। अब मूर्तिकार उन मूर्तियों के बीच में जाकर खड़ा होकर देखने लगा कि क्या उस मूर्ति और उसमें कोई फर्क है। जब उसने देखा शीशे में तो बराबर थी। बस उसने सोचा आज जब काल आएगा तो धोखा खाएगा। सचमुच वही हुआ। काल ने अपने यमदूत भेजे। यमदूत उसके घर पहुंचे तो वह मूर्तियों के बीच में खड़ा हो गया। अब यमदूत ने सोचा कहाँ गया ये व्यक्ति, यहाँ तो 15 मूर्तियाँ और हैं, बिल्कुल उसके जैसी हैं। अफसोस यमदूत सही व्यक्ति को नहीं पकड़ पाया और वह लौट गया। उसने यमराज से कहा, महाराज कैसे ढूंढें, आपने कहा एक व्यक्ति होगा, वहाँ तो 15 व्यक्ति खड़े हैं, किसको पकड़ कर लाए हैं और सब मूर्तियाँ हैं। यमराज ने कहा, नहीं चलो मैं चलता हूँ आपके साथ। बस यमदूत, चित्रगुप्त और यमराज चले मूर्तिकार के घर। तो आइए इस गीत को सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

श्रोताओं, यमराज, चित्रगुप्त, यमदूत तीनों पहुंच गए। अब एक एक मूर्ति को देख रहे हैं। मूर्तिकार भी 16वीं मूर्ति बनकर उनके बीच में खड़ा हो गया। बार बार यमराज देख रहे हैं, छू रहे हैं, सब मूर्ति है। तब यमराज को लगा कि कुछ तो बात है। उन्होंने हंसते हुए कहा, चित्रगुप्त देखो जरा इधर, इस मूर्ति में कुछ कमी है। ये कमी जो है ना, वो इस मूर्ति में कुछ खलल डाल रही है, तो देखो क्या करें। श्रोताओं, इस बात को सुनकर मूर्तिकार चौंक गया, उसके अहंकार को ठेस पहुंची, झट से बोला, कहाँ कमी है? यमराज ने उसी समय यमदूत से कहा, इसे पकड़ो, बस यही कमी थी। तो श्रोताओं, ये जो अहंकार है ना, उसमें आदमी रुकता भी नहीं है, लड़ने के लिए, बोलने के लिए, दूसरे पर दोषारोपण करने के लिए, और फिर खुद भी परेशान होता है, अपने आसपास को भी परेशान करता है। तो बस इस अहंकार से मुक्ति पाना आसान नहीं है, पर प्रयास तो करना होगा ना। तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ मुझे और शिव को अनुमति दें, नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये रेडियो मॉरिशस है। परवीज आपसे मुखातिब है। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन और नबी रहमत शफाए महशर मालिक दो जहां जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आप तमाम सामीन खैर व आफियत से हैं। जहां से भी आप हमारे साथ निभा रहे हैं, आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। तो आइए मज़ीद सामीन, उर्दू नशरियात बनाम महफिल शब का आगाज़ करते हैं एक खूबसूरत हमद कलाम के साथ, जो हमारे दिलों को रूहानियत और सुकून से भर दे।

भटके हुओं को सीधा रास्ता दिखाने वाला है तू, करम से अपने गुनाहों से बचाने वाला है तू। फकत तुझ पे ही भरोसा है मौला, हर दुख दर्द में काम आने वाला है तू। आप तमाम अहले इस्लाम को माँ है मुहर्रमुल हरम बहुत बहुत मुबारक। मज़े सामीन, कुरान मजीद ने जिन चार महीनों को हुरमत वाला करार दिया है, मुहर्रम उनमें से फहरिस है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम को अल्लाह का महीना फरमाया। इस्लामी साल का आगाज़ किसी जश्न, शोर गुल या दुनियावी कामयाबी की याद से नहीं, बल्कि एक मुकद्दस महीने से होता है। ये हमें याद दिलाता है कि मुसलमान की ज़िंदगी का असल मकसद अल्लाह ताला की रज़ा के हुसूल है।

लेशब आप समात फरमा रहे हैं, जहाँ से भी आप साथ दे रहे हैं आपका खुश आमदीद। शामिल महतरम, रिवायात के मुताबिक मुहर्रम की 10वीं तारीख से मुतालिक कई अजीम वाक़यात का ज़िक्र हुआ है। कहा जाता है कि उस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर ठहरी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से निजात मिली, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हुई, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा मिली, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से निजात मिली। मुहर्रम 61 हिजरी में करबला का मैदान इस्लाम का अजीम तरीन इम्तिहान गाह बन गया, लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके जानिसार साथियों ने सब्र और इस्तिकामत का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने दिखा दिया कि मुसलमान मुश्किलात में भी अपने उसूलों पर कायम रहता है। अल्लाह ताला हमें मुहर्रम की बरकतें अता फरमाएं और हमें दीन इस्लाम की सही खिदमत करने वाला बना दे, आमीन। हमें भी अपनी दुआओं में शरीक करें। तकनीकी मदद अंजू की रही है, शुक्रगुजार हैं हम। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक परवीज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।

भोजपुरी तड़का में तुहार स्वागत करत हैं जा नमस्ते। अभी 10:11 ठुलवा बल्कि 12 हो गल और ये हमने के कार्यक्रम अभी शुरू हुआ था भोजपुरी तड़का। अब आज के हमने के साल 2026 साल 2027 के बजट के सीधा प्रसारण हुआ था हल ई खातिर हमने के कार्यक्रम में थोड़ा बहुत आगा पीछा हो गल बा और ये हमने के कार्यक्रम तनि देरी से शुरू हुआ था। तो चला अभी से 11 लेक तोहर साथ तो रहबे करी भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में तोहर खातिर हमने प्रस्तुत करते हैं जा पहिल का गाना संजय सिगुलाम जी के गावल गाना है। चला सुनी जा इजहारे मोहब्बत।

चले मीठा मीठा बोले के जो सलाह देवत हवन स्वीटी जी के आवाज में सुनी जाई और ये मिठास पर जरा ध्यान दे रहा जा विदुला जी सुने जतवानी गाना मोहताबाद से ये गाना विदुला जी निमिषा खातिर और प्रिया खातिर बजवाओ अथवन

यह अभिदानंद बिजन जी के गावल गाना कैसे बनी चटनिया कैसे बनी, इमली बिना चटनी कैसे बनी। चला ये गाना हमने सुने जा विश्वानी दुमन जी के पसीन पर, वाकवा से मंगले हवन विश्वानी जी। गाना अपन बहन इंदिरा और शारदा खातिर, अपन सहेली नीला और प्रतिभा खातिर, शोभा जी और गीता गजाधर जी खातिर।

अरे गुनी बुलाने से क्या होगा, जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा, अरे गंदे पानी पीकर पी

क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा। जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से

गीतवा जन सुना था जाए कर फरमाइश कर ले हवन फ्लिक ऑफ लाख से अनीता जी, और ये गाना हमने की पूरा टीम के नाम कर ले हवन, बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी, और ये गाना तो हर पूरा परिवार और सब संगत यालो के नाम।

और अब चला सुनी जा हमने गिरीश रूपचंद जी के गावल सुंदर परी गाना है और सुंदर परी गाना गलगत साल हमने के बेस्ट ऑफ द सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिस्ट में रहा।

हमने के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में चले एक रोमांटिक गाना और सुनी जा हमने प्रकाश दुखित से और चला सुने जाई गाना हमने मालिनी जी के पसंद पर मालिनी जी के नाम करे थे जाई गाना सैं चिलैया से और सैं चिलैया के मालिनी जी गाना अपन पति विक्रम के नाम करे थे वन

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: तड़का तो लगाते हैं जा, चला तड़का लगाया जा अभरी को हमने लाज कमल चिंतामणि जी के गावल गाना संगे चला। ये गाना हमने तो लगे सुनवावत है जा अंतिम है, और अंतिम गाना के संगे संगे हमने के मुलाकात भी समाप्त हो जाए। सुनिया जा आज के सुनहरे पल कार्यक्रम 11 बजे से 12 बजे ले गिनीशा से। तो आवत हला फिर मिलब जा, तब तक खातिर शुभरात्रि, नमस्ते।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: बॉलीवुड के सुनहरे दौर के लाजवाब गीत, दिल को छू लेने वाली आवाजें और यादों से भरा सफर, ये सब कुछ लेकर हाजिर है सुनहरे पल सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनीशा का प्रणाम। सारे म्यूजिक लवर्स का बड़े प्यार से हम स्वागत करना चाहेंगे इस खूबसूरत से शो में, इस एक घंटे के इस सफर में। बस हमारा हम सफर बने रहे ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पर।

पुरानी फिल्मों के गीत, पुरानी यादें और वही पुराना एहसास। चलिए कुछ पल के लिए वक्त को पीछे ले चलते हैं। बिल्कुल जी, जहाँ पे आपकी खूबसूरत यादों के साथ साथ आपकी मुस्कुराहट भी वापस लेके आएंगे हम। तो चलिए जी, ये अगला नगमा खासकर उन तमाम सुनने वालों के नाम जो गिनिशा का साथ बड़े शिद्दत से दे रहे हैं सुनहरे पल में।

आज की रात को और भी खास बनाइए उन गीतों के साथ जो कभी आपके होंठों की मुस्कान हुआ करते थे। रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल में आपका हार्दिक स्वागत तो हमने कर लिया है। वैसे जब भी पुराने बॉलीवुड गीत बजते हैं ना, तो दिल अपने आप मुस्कराने सा लग जाता है, और इसी मुस्कान के साथ हम लेकर आए हैं सुनहरे पल। तो साथ यूं ही निभाते रहे, अगला गाना आपके नाम।

साथ रहिए और गीतों का लुफ्त उठाइए। दोस्तों, यादों का सफर शुरू हो चुका है और उन मधुर गीतों के साथ जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुके हैं, ये है सुनहरे पर रेडियो।

जिस पर हर उम्मीद करते हैं कि हर एक गाने को आप दिल से एंजॉय कर रहे हो और मुस्कुराते मुस्कुराते गुनगुना रहे हो और अपने उन खास दिनों को फिर से दोबारा जी रहे हो इन खूबसूरत गीतों के जरिए।

ये है सुनहरे पल सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। चलिए जी, आंखें बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए वो जमाना जब गीतों में सच्चा प्यार, दोस्ती और जज्बात हुआ करते थे। बिल्कुल, आज हम सजाएंगे गीतों की एक ऐसी महफिल जहां हर सुर एक नई याद जगाएगा। ये है आपका सुनहरे पल सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर, तो आप बैठ के आनंद ले लीजिए।

पुरानी कैसेट, पुराना रेडियो और पुराने गीत, याद आ गया ना वो जमाना, बिल्कुल आ जाना चाहिए। तो चलिए फिर से जीते हैं वो लम्हे सुनहरे पल के साथ। बॉलीवुड के अमर गीत और उनकी मिठास लेकर गिनेशा हाजिर हैं। बिल्कुल, जिंदगी की भागदौड़ में हमें पता है कि इतना वक्त नहीं होता है हम लोगों के पास कि हम जाके चुन चुन कर फिर से एक एक नगमे को दोबारा जी सके, साथ में सुन सके और मुस्कुरा सके। इसीलिए हम ये काम आप लोगों के लिए करते हैं ऑन रेडियो मॉरिशस, रोज रात को रात के 11 बजे से लेकर 12 बजे तक लेकर आते हैं आपके मनपसंद गीत।

0: तो चलिए जी, सुनाते सुनाते कब इस खूबसूरत से शो का अंत पहुंच गया है हमें पता ही नहीं चला। आप हमें इजाजत दीजिए, फिर से आएंगे आपका साथ देने के लिए एक और सुनहरे पल के खूबसूरत से कार्यक्रम में। तब तक आगे निशा को इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि, शब खैर।
1: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ NBC रेडियो, हर पल आपके साथ।

0: हाँ तो मैं क्या कह रहा था?
1: हाँ तो
0: मैं कुछ कह रहा था,
1: बोलो ना, भूल गए?
0: अरे हाँ भूल गया। चलो चलो घर चले।
2: MBC Radio, your music companion.